एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की छठी तिथि, तदनुसार 26 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 50 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताज़ा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई SOP जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, PPE किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। IPL क्रिकेट के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना

0: गुजरात टाइटन से होगा। मैच धरकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और भारत ने कल गोवा में होगा और भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को।
1: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन इसमें प्रकाश भरा है, वो चमकता अवश्य है। आपकी गरिमा और निष्ठा

दिखने लगते हैं। जब आप भीतर के प्रकाश को हर विपरीत परिस्थिति में भी जन्मों वर्षों लगे तो भी यदि समझ में आ जाए तो सौभाग्य है, और यदि तब भी न समझ जन्मों वर्षों लगे तो भी यदि समझ में आ जाए तो सौभाग्य है, और यदि तब भी न समझ सके

ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा, समर्पण और प्रेम ही भक्ति का वास्तविक आधार है। जब मनुष्य सांसारिक चिंताओं को छोड़कर ईश्वर की शरण में जाता है, तो उसे परम शांति की प्राप्ति होती है।

जब मन पवित्र और इच्छाओं से रहित होता है तो ईश्वर वहाँ पर स्वयं निवास करते हैं। आप अपनी हर चिंता को भगवान को सौंप दें तो वे आपकी सारी मुश्किलें संभाल लेते हैं।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सुबह के 6:40 हुए हैं, लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

शिव के धनुष भंग और उसके ऊपर लक्ष्मण के कौतुक भरे वचन सुनकर परशुराम जी का क्रोध सीमा पार कर रहा है। उसके ऊपर लक्ष्मण का ये वचन सुनकर कि शूरवीर तो युद्ध में करनी कर दिखाते हैं, मात्र कहकर डींग नहीं मारते, ऋषिवर ने अपना फरसा संभाल लिया। बोले, अब लोग उन्हें दोष ना दें, ये मूर्ख बालक मारे जाने के ही योग्य है। बात बढ़ते देख मुनि विश्वामित्र ने अपने शिष्य के अपराध की क्षमा याचना की। कहा, बालकों के दोष गुण को साधुजन नहीं गिनते। मन ही मन वो हंसे कि परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है। सर्वत्र विजयी होने के कारण वो राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। उन्हें कदाचित ये नहीं मालूम कि ये दो कुमार फौलाद की खांड हैं, ईक की खांड नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाए। परशुराम की धमकियों के प्रत्युत्तर में लक्ष्मण ने एक बार फिर कटाक्ष किया कि माता पिता के ऋण तो मुनिवर चुका ही चुके हैं, अब गुरु के ऋण से भी उऋण हो जाएं, ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, अब हिसाब करने के लिए यदि किसी को बुला लें तो वो थैली खोल दें। मुनि की क्रोधाग्नि में लक्ष्मण के वचन को आहुति समान जानकर श्री राम ने अनुज को शांत होने का इंगित किया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस कान, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारी केंद्र से आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण। सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात, और कार्यक्रम में आज विशेष के साथ ही हम बात करेंगे काजी नजरुल इस्लाम की जयंती के बारे में। साथ ही आपको जानकारी देंगे पर्यटन स्थल तत्ता पानी के बारे में, और पर्यावरण के अंतर्गत जानकारी का विषय रहेगा बत्तख पक्षी। लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग सुनिएगा सुबह 7:40 पर, और सुबह 8:30 का समय है पहाड़ी नाटक नोखे लोग नोखियां गल्लादा का। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि हम आपके लिए लेकर आएंगे सुबह 9:00 और प्रातः 10:00 आनंद उठाइए फिल्मी गीतों का। हिमाचली गीत और लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे सुबह 10:30 पर और 11:05 पर। 11:30 पर सुनिएगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। प्रादेशिक समाचार आप सुना करते हैं आकाशवाणी के शिमला केंद्र से सुबह 9:20 पर, 11:00, दिन में 3:00 और शाम 6:00 और 7:45 पर। समाचार प्रभात 8:00, मॉर्निंग न्यूज 8:15 पर, समाचार संध्या 8:45 पर, और न्यूज़ एट 9 रात 9:00 आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। सैनिकों के लिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे।

दिन में 12 बजे। दोपहर 12:30 का समय है कार्यक्रम घर परिवार का। विविध भारती के कार्यक्रम दिन में 1:10 पर आकाशवाणी मुंबई से रिले किए जाएंगे।

0: भजन सुनिएगा शाम 5:10 पर, और शाम 5:30 का समय है कार्यक्रम युवा मंच का। कार्यक्रम में आज बात करेंगे उद्यमिता युवाओं के लिए स्वर्णिम अवसर इस विषय पर। सदाबहार संगीत का आनंद उठाइए शाम 6:06 पर, और 6:30 का समय रहेगा कार्यक्रम मौजा गराइंदिया का। शाम 7:10 पर आप सुनेंगे किसान व बागवान भाइयों और बहनों का कार्यक्रम किसान वाणी, और कार्यक्रम में जानकारी देंगे नर्सरी प्रबंधन परीक्षण के उपरांत इस विषय पर। मिले जुले गीतों का कार्यक्रम सबरस रात 8:00, और रात 8:30 का समय है देशगान का। एक ही कलाकार इस कार्यक्रम में गायिका ममता शर्मा के गाए हुए गीत हम आपको सुनवाएंगे। रात 9:15 पर, रात्रि 9:30 पर सुनिएगा लोकगीतों का कार्यक्रम धाम गीतांदी, और रात 10:30 पर प्रसारित करेंगे कार्यक्रम चित्रपट संगीत। तो ये था कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू ह्यः राष्ट्रपति भवने आयोजिते नागरिक अलंकरण समारोहे 66 प्रमुखाग्रगण्य विभूतिभ्यः पद्म पुरस्कारान् प्रादात्। एतेषु द्वाभ्यां विभूतिभ्यां पद्म विभूषणम्, षड्भ्यः पद्म भूषणम्, सहैव 58 विभूतिभ्यः पद्मश्रीः प्रदत्ताः। कलाक्षेत्रे विशिष्ट योगदानार्थं सुप्रसिद्धः चलच्चित्र अभिनेता धर्मेन्द्र सिंह देओल महोदयः मृत्योपरान्तं पद्मविभूषण सम्मानेन अलंकृतः। अभिनेतुः भार्या हेमा मालिनी एतं पुरस्कारं स्वीकृतवती। प्रख्यातः भारतीय सारंगी वादकः डॉ एन राजम् अपि पद्मविभूषण सम्मानेन सुपूजितः। अस्मिन् अलंकरण समारोहे उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय मंत्री अमित शाहः, गजेन्द्र सिंह शेखावतः, एचडी कुमारस्वामी च उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य आरभ्य सिक्किम राज्यस्य त्रिदिवसात्मिकां यात्रां विधास्यति। सिक्किम प्रवासकाले सा विविधेषु कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति, अनेकानि स्थानानि च द्रक्ष्यति। राष्ट्रपति महोदया सायंकाले गंगटोक नगरे स्थिते नाइमनॉल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी इति संस्थां प्रति गमिष्यति। सिक्किम सर्वकारेण तस्याः स्वागताय विपुलाः प्रबन्धाः विहिताः। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो अथ युगांडा देशेषु इबोला संक्रमणम् अंतर्राष्ट्रीय चिंतायाः सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालत्वेन घोषितम्। एतदनन्तरं नगर विमानन महादेशालयेन विमान विपणीनां कृते एका मानक संचालन प्रक्रिया प्रसारिता। अत्रावधेयस्पदं वर्तते यत् विमानेषु अनिवार्यरूपेण पदक्षेपाः विहितव्याः भविष्यन्ति। यथा इबोला संकटं दृष्ट्वा यदि कस्यापि यात्रिणः ज्वरः, दौर्बल्यं, पीडा, शिरोवेदना, कंठदाहः, वमनमित्यादीनि लक्षणानि

0: दृश्यन्ते तर्हि सः सद्यः एव विमानकर्मचारिभ्यः आगमानन्तरं चिकित्साविभागेभ्यः सूचयेत्। महानिदेशालयेन स्पष्टीकृतं यत् भारते आगमनात् एकविंशतिदिनानां मध्ये यदि एतादृशानि लक्षणानि उत्पद्यन्ते तर्हि यात्रिणः निर्दिष्टचिकित्सालयेभ्यः चिकित्सासाहाय्यं प्राप्नुयुः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य यावत् मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, विदर्भ क्षेत्रेषु उष्ण स्थितिमुद्दिश्य रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीय संचेतना प्रसारिता। विभागेन आगामी द्वित्री दिनेषु हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान राज्येषु तीव्र उष्ण तरंगस्य पूर्व सूचना प्रख्यापिता। एतादृशी एव स्थितिः अद्य यावत् छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड राज्येषु अपि भवितुं संभाव्यते। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधवः अवदत् यत् सर्वकारः योग प्राकृतिक चिकित्सा माध्यमेन कृत्स्नेहि देशे निवारक स्वास्थ्य सेवाः सुदृढीकरोति। नवदिल्ल्याम् आयुष मंत्रालयस्य संसदीय परामर्शदात्री समित्याः चतुर्थ उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्री जाधवः अवचत् यत् योगः प्राकृतिक चिकित्सा च समग्र निवारक स्वास्थ्य सेवायै भारतस्य शाश्वतं योगदानं वर्तते। अस्मिन् उपवेशने भारते योग प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्रस्य विस्तारे, स्वास्थ्य संवर्धन संबद्धेषु प्रयासेषु च तथा च पारंपरिक चिकित्सा पद्धतीनां वैश्विक प्रसारे च विस्तरेण चर्चा अभवत्। सः अग्रे सूचितवान् यत् सम्प्रति विश्वस्य 90+ देशेषु अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः समारोहः आचर्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों के समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह का 29 मई को गुजरात जाने का भी कार्यक्रम है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई SOP जारी की है।

महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रूपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरमिरल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। रिजर्व बैंक ने शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए नए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत लगातार 10 वर्ष तक बोर्ड में रहने वाले निदेशकों के लिए विराम अवधि लागू की गई है। इन संशोधन निर्देशों में आरबीआई शहरी सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 और ग्रामीण सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 शामिल हैं। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर वन मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कार्यक्रम सुप्रभात के आज के इस अंक में मैं हूं वंदना रैना आपके साथ, और इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं तरह तरह की जानकारियां और साथ ही आपका मनोरंजन करेंगे गीत संगीत के साथ। जी दोस्तों, हर सुबह एक नया मौसम लाती है, पुरानी यादों को पीछे छोड़कर नए दिन का स्वागत मुस्कुराकर करना चाहिए, क्योंकि जैसे पतझड़ के बाद बहार का आना तय है, वैसे ही दुखों के बाद सुख का मौसम भी जरूर आएगा। इसलिए सुबह की धूप की तरह हमेशा एक समान चमकते रहना चाहिए।

और श्रोताओं, अब कार्यक्रम सुप्रभात में इस खूबसूरत से गीत के बाद पलटते हैं इतिहास के पन्ने, बात करते हैं आज विशेष की। साल 1906 से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो आज ही के दिन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पहले निदेशक बेंजामिन पीरीपाल का जन्म हुआ और भारतीय धार्मिक नेता और इस्लाम में अहमदिया आंदोलन के संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद का निधन हुआ साल 1908 में। और केरल में जन्मे राजनीतिक कार्यकर्ता और क्रांतिकारी चंपक रमन पिल्लई का निधन हुआ 26 मई सन 1934 को। और आज ही के दिन साल 1957 में मुंबई में पहली बार जनता बीमा पॉलिसी की शुरुआत की गई।

जी श्रोताओ, इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से हम बात करने जा रहे हैं आज विशेष की। तो साल 1999 में इसरो ने भारत के ओशन सेट वन के साथ जर्मनी और दक्षिण कोरिया के उपग्रहों को सफलतापूर्वक उनकी कक्षा में स्थापित किया और नासा के अपोलो 10 अंतरिक्ष यान के यात्री चंद्रमा की कक्षा का चक्कर लगाकर धरती पर सुरक्षित वापिस आए साल 1969 में। और साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी 26 मई यानी कि आज के दिन। और साल 1723 में आज ही के दिन इटली के प्रसिद्ध वायलिन वादक और संगीतकार एंटोनियो बिबल्डी का बहुचर्चित संगीत कार्यक्रम द फोर सीजन्स पहली बार दुनिया के सामने पेश किया गया।

श्रोताओ, आपने ट्यून किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप सुप्रभात। कार्यक्रम में अगली जानकारी की तरफ बढ़ते हैं और हम बात करने जा रहे हैं काजी नजरुल इस्लाम के बारे में, जो कि बांग्ला साहित्य के महान कवि और बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि थे। उन्होंने लगभग 400 गीतों की रचना की, जिन्हें नजरुल गीति कहा जाता है, और उनकी लिखी कविता विद्रोही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान काफ़ी लोकप्रिय हुई थी और अपनी क्रांतिकारी और साम्राज्यवादी विरोधी कविताओं के कारण ही उन्हें विद्रोही कवि का उपनाम भी दिया गया। और उनके सम्मान में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आसनसोल में काजी नजरुल विश्वविद्यालय और अंडाल में काजी नजरुल इस्लाम हवाई अड्डे की स्थापना भी की गई है।

श्रोता परिणीतियाँ फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत आपने सुना सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। और बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। जैसा कि सभी सुनने वाले जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो एक शांत पर्यटन स्थल है और इसे देवभूमि भी कहा जाता है। और यहाँ की खूबसूरती है इसके प्राकृतिक नज़ारों में और इसके पर्यटन स्थलों में। जी श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले में सतलुज नदी के तट पर स्थित पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल तत्ता पानी के बारे में। ये स्थान अपने प्राकृतिक गर्म पानी के झरनों और रिवर राफ्टिंग के लिए जाना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ के जो गर्म पानी के झरने हैं उसमें सल्फर होता है और उसके काफ़ी औषधीय गुण भी होते हैं। और यहाँ पर स्नान करने से त्वचा संबंधी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं और इन झरनों को सल्फर स्प्रिंग्स भी कहा जाता है। इसके साथ ही तत्ता पानी में शिव गुफा भी है और सतलुज नदी के तट पर होने के कारण इस स्थान को काफ़ी पवित्र माना जाता है। तत्ता पानी सुकून और रोमांच और आध्यात्म की तलाश में आने वाले यात्रियों के लिए एक ताजगी से भरा हुआ विकल्प है।

श्रोताओं, कार्यक्रम सुप्रभात के अंतिम पड़ाव में पर्यावरण के अंतर्गत आज हम बात करेंगे बत्तख पक्षी के बारे में, जिसे कि अंग्रेजी में डक भी कहा जाता है और ये मीठे पानी के तालाबों, झीलों और समुद्र के खारे पानी में पाई जाती है। इसके पंखों पर मोम जैसी प्राकृतिक परत होती है जिससे ये भीगते नहीं हैं, और खास बात यह है कि बत्तख के पैर पतवार की तरह जालीदार होते हैं और इन्हें पानी में तेजी से तैरने में मदद करते हैं। इनकी आंखों में 3 पलकें होती हैं जो पानी के अंदर आंखों को सुरक्षा देती हैं। बत्तख सर्वाहारी पक्षी होते हैं और ये पानी के पास ही अपना घोंसला बनाते हैं। एक बार में 5 से 12 अंडे देते हैं और बच्चों को डकलिंग कहा जाता है और इनका जीवन काल 8 से 10 वर्ष होता है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम सुप्रभात में जानकारियों और गीत संगीत के साथ हम बहुत दूर तक निकल आए हैं और अब समय है रुकने का, थमने का और विराम लेने का। तो आपको सुनवाते हैं ये गीत और साथ ही मिलते हैं अगले कार्यक्रम में।

कार्यक्रम सुप्रभात श्रोताओं, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सुबह के 7:40 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए अब लोक गीतों का कार्यक्रम शुभ प्रयाग।

श्रोताओं, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिले की जाएंगी।

0: रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। DGCA ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम CNG की कीमत 2 रुपये बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और IPL क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का

0: दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटोक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटोक।
1: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह दो दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, PPE किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: दिल्ली में CNG के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में CNG की नई कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। NDRF, SDRF, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मतों की गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति

0: खान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे, जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
1: अमरीकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमरीका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है, जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61 करोड़ 75 लाख अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए, प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाइड 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स्ड डबल्स में तनीषा क्रस्टो, ध्रुव कपिला और रोहन कपूर, रुथविका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है, पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री के तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्मपत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देशबंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार, अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं, ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नव भारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, NTA ने कोई सबक नहीं सीखा। लोकसत्य ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के

रेडियो सिर्फ एक डब्बा नहीं है, ये तो यादां दा खजाना है। ये आवाज़ है भरोसे दी, साथी है सुख दुख दा। 90 साल ते हर घरे हर दिले तक पहुँचता है, जिंदगियां सौगी जुड़ता है आकाशवाणी।

0: get sound effects like this.
1: Bang.
2: क्या आप अपनी next video के लिए
3: दादी जी सुना दे ना दादी जी मुझे ए दसा ए पुराना डब्बा दे तोहा कहे रखे संभाली के आज भी इक्का ने इसी लाई रख दे ऐ क्या इस च
4: ओ कुड़िए जार वरी तिजो गलाया मिये डब्बा मत बोला कर ए ता मेरे दिले दी धड़कन मेरे प्राण बस दे इस डब्बे च ए ता मेरी जान है मिये कुड़िए
3: दादी जी मुझे ए समझ नहीं आंदी ऐ क्या इस डब्बे च आजकल फोने दा जमाना है सब कुछ होंदा फोने च गाने होंदे भजन भी होंदे खबरां पॉडकास्ट सब कुछ फोने च होंदा
4: मुंड तेरा होंदा फोने च आई इयां सखाना तोहां पुराने जबरे आई कुड़िए फोन ना जानकारी दे सकदा गीतां सुनाई सकदा नोया नोया पर रेडिया जिसियो तू डब्बा गला दी ए तमिये दिले दा एहसास है
3: एहसास
4: हां एहसास मिये मेरे दिले दे सारे तार जुड़े इसने एक एक गल मेरी सरेड़िए न जुड़ियो कने रेड़िए या सारीया गल्ला मेरे दिले च ता सुन जरा करिया मिये जालू मैं सरेड़िए सुन दी तेरे दादे दी बड़ी याद आंदी मिंजो बड़ा भारी रेड़िया सुन दे थे से ए डब्बा जिसियो तू गला दी तीना दिया यादा दा संभाली के रखिया मिये जालू इसियो दिख दी सुन दी बड़ी फर याद ओंदी मिंजो तीना दी जालू बिजली नहीं ओंदी थी ना कोई टीवी ओंदा था तालू ए रेड़िये ही हाड़ा संसार ओंदा था सह जमाना ओहो है ता जमाना ही कुछ और था इस जमाने दी क्या गल लाणी क्या तंजो समझाना जालू आहा सारे कठे होई करिया मैं बहन दी थी तेरे दादा बहन दे थे तेरे पापा चाचू तेरी बुआ कने तेरी चाची भी जालू आहा सारे कठे होई के बहन दे थे खबरां सुन दे थे लोक गीतां सुन दे थे क्या नजारे होंदे थे तिना टैमा दे ए रेडियो ही साड़ा संसार होंदा था मिये इक हिस्सा बनी या था हाड़े परिवारे दा पूरे ग्राएं च केड्डा बड्डा ग्रां ए दिख्या कदी अंडिया कदी इस सारे ग्राएं च ए इक रेडिया था मिये जेड़ा तेरे दादा लंदिया था ए नसाणी है तिना दी ए मेरियां यादा ने आज भी मैं तिना टैमा याद कर दी कने पता नहीं याद कर दी कुतू जाए रहंदी
3: ओ सुना आओ चाटवा चाची ताई अम्मा बाबा भी गलाने हो उन्हें आने को तां गए तुसा आवा खबर शुरू होने आ रही है न
5: ग्राएं दे चौपाल च एक रेडियो होंदा था कने सारे ग्राएं दा सा उसी रेडियो कने चलदा था
6: ये आकाशवाणी है अब आप समाचार सुनेंगे
4: ओए न्याणियो हाँ बड़ा भारी अल्ला पांदे खबरां दा टाइम जी होंदा ता बड़े भारी बकदे चुप भी है सारे खबरां लगने आलियां हुण खबरा सुना और मन चित लाई करिया ओ चुप करा मेओ ओ न्याणियो लाड़िए चुप करिया ओ लगी पईया खबरा मैडम बे ये यो रेडिए च बस करा हुण
5: फिर आया सह टैम जाली मुल्क मुश्किलां च था। सरहदा विच जंग लगी हुई थी कने घरां विच चिंता।

0: बस मेरे घरे वाले की सलामती की खबर मिली आए।
1: रो मत बच्चा, वो रेडिया लगाओ रेडिया, क्या अब तक कोई खबर ही आई आए।
2: हमारे वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं और देशवासियों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं।
3: उस बेले रेडियो सिर्फ खबर नहीं, हिम्मत होंदा था, दिलासा होंदा था, उम्मीद होंदी थी।
2: बच्चा, लड़ाइया टाइम में जालू रेडियो च देशभक्ति दे गीत बजदे थे ना, तालू दिलां च जोश भरू जांदा था, तालू दिल बड़ा बड़ा हो जांदा था।

रेडियो च खेतीबाड़ी दे कार्यक्रम, सेहता दी सलाह, बच्चियां दे नाटक, सब कुछ सिखाया इन्नी रेडियो असायो। कने इस रेडियो च ता बड़े छैल छैल गीत होंदे, कने मैं ता केई गीत जेड़े से याद भी करी लियो, कने बड़े छैल लगदे से गीत, गीत भी लगी रहंदे, कने मैं अपने कम्मे भी कमांदी रहंदी।

0: दादी जी, मैं समझी गई दादी जी। ए रेडियो सिर्फ एक मशीन ही नहीं थी, ए तो सचमुच परिवार का हिस्सा था।
1: आ कुड़िए, आया ना समझ? जिस हिसाबे ने अजे दी दुनिया दौड़ियो है, रेडियो तो मिये तिसा दौड़ा बीच भी साढ़े दिले ने गल्ला करा दा।

सह टैम अज भी सारिया जो याद है। जाली सड़कां सुनसान थियां, दरवाजे बंद थे, लोग घरां अंदर कैद थे, कने हर पासे एक डर दा माहौल था, डर, कोरोना दा डर।

0: चाचा जी, चाचा जी।
1: अंजीत, ये क्या भैया?
0: चाचा जी, क्या करा दे तुसा? बाहर दिखा ना, कोरोना लग गया। ना मैं स्कूले जाई सकदी, ना मैं खेलना जाई सकदी, ना मैं घूमना जाई सकदी। मैं तो बड़ी बोर होआ दी। कने रेडियो च तुसा क्या सुना दे?
1: हरियां जानकारियां जरा सा इत्थों मिलना कर दियां।
0: पर खबरां ता टीवी च भी हो दियां। तुहा टीवी क्या नहीं लगाया? टीवी दिखा वाला कितना कुछ दसा दे कोरोना दे बारे च।
1: इना टीवीया च क्या होदा कि खबर ता ओ कर दी ना, लेकिन मरिया डरा दे बड़े बारी। कने तू भाई सीधी सीधी गल गला दे कि भाई इन्या करा, इतनी देर तक हाथ धोवा, ज्यादा कुछ ने मत मिलला। कने थोड़ी थोड़ी देर बाद इस रेडियो च पता क्या होदा, जी मन बड़ा दास हो जादा, ताँ बिच बिच ना गाने भी आ जाते। कने जलू अहां दे पहाड़ी गीत बजा दे, हिमाचली लोक गीत, तो मैं चार फराटियां भी लै लिया करदा। कने इस तो बाद फिर ते कोरोना दे समाचार आ जाते।
0: चाचा जी, चाची कुथू है?
1: वो चाची तेरी मियर सालू में बैठी हो ब्याह का दी। कने ते सही पता है कि जलू मैं घर रेडियो कने बेही आ ना, तो मुझे बाकिया छैल छाल गोल गोल गोरियां गोरियां रोटियां चाहदी होनी, तो असें रोटियां बना कर दी ना। अख पाई के दिखी लै, क्या पता आई आए।
0: अच्छा था मैं चाची जो अख पाए होंदी। चाची जी, चाची जी,
2: आईया आईया,
0: बनाई बैठे रोटियां?
2: ए दिख तू।
0: अच्छा चाची, ए छड्डा, चाचा कुछ रेडियो च सुना कर दे ना। चला सुन दे ना, रेडियो च क्या लग गया है?
2: खबरा लगी है रहनी 24 घंटे, खबरा सुनी सुनी मिये मन डरी आंदा कुड़िये। हाँ, बड़ा भारी मन घबरांदा मेरा।
1: मैं तो तुहानू यही गलांदा दुनियो की घबरा मत, है ना, सीधा रेडियो लगा के ना रेडियो दे टक्के बेहिया।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। सारे श्रोताओं से विनती है कि घर के अंदर रहें, मास्क पहने, एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखें, घबराएं नहीं और सावधानी रखें।
2: सुनिया सुनिया सुनिया कुड़िए, तय दिख भला तेरे चाचा में ये बिल्कुल सही गलांदे। रेडिया सच गला दा, सच डर ता लगा दा, पर इन्हें खबरा सुनी हौसला भी मिला दा। कोई अफवाह नहीं फैलांदा ता तू।
3: कोरोना से बचने के लिए हाथ साबुन से 20 सेकंड के लिए धोएं।
0: चाची जी, हुण मैं टाइमर लगाई के 20 सेकंड तक अपने हाथ रगड़ी रगड़ी के छैल कीती मली मली के धोने हैं। सारा कोरोना ही नसाई देना है।
2: घड़ी बन्नी लैनी कथे, घड़िया दिख दे रे कना थमल दे रे।
1: ओ मिये ते ये ते जदो होनी पता लगा, मैं जालू ते रेडियो सुना दा ना, मैं तालू ते बिया सिकंटा ते कर जड़ा सा पूरा हाथा धोआ दा मली मली धोआ दा।
4: लॉकडाउन च लोग एक दूजे ते दूर होई गए, पर रेडियो हर घरे च पूजी गया।
2: बोबो बोबो, सुना दिए? आंजी आंजी, ओवा ओवा बोबो, ओवा बिया। रेडियो च आज ना बड़े पुराने पुराने गीत ओवा देन, आइया मिली के सुन देन, मन कुछ अलका होयांगा।

0: रेड़िया गलांदा रहंदा तइया लगदा कोई अपना बैठिया घरे ही बैठिया कने गल्ला लगया।
1: अब सुनिए डॉक्टर साहब की सलाह।
2: क्योंकि कोरोना कई राज्यों में बढ़ रहा है और इसका खतरा भीड़भाड़ वाली जगहों में ज्यादा होता है, इसलिए ऐसे स्थानों पर जाने से बचें। मास्क लगाना, हाथों की स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग या फिर गर्भवती है तो अतिरिक्त सावधानी बरतें। उनसे मिलने से पहले हाइजीन का विशेष ध्यान रखें और खास तौर पर कहीं बाहर से आने के बाद अपने हाथों को सैनिटाइज करें।
1: सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि इस मुश्किल घड़ी में बताए गए सभी नियमों का पालन अगर अच्छे से करेंगे तो ये मुश्किल घड़ी भी आकर चली जाएगी। जरूरत है तो इस समय धैर्य और संयम की। आकाशवाणी हमेशा आपके साथ है।
3: हां जी चाचा जी, ए रेडियो गीतां भी सुनांदा, कहानियां भी सुनांदा, कने रोज नईयां नईयां उम्मीदां भी जगांदा।
4: साबास मेरा बच्चा साबास, तू समझिए इसका मतलब है ना जी, तो रेडियो पढ़ांदा भी कने रेडियो सिखांदा भी।
5: कोरोना दे तिना कठिन दिना च जाली दुनिया रुकी गई उथी, कोरोना दे तिना कठिन दिना च जाली दुनिया रुकी गई उथी, रेडियो चलदा रहा खबरां लेके सलाह लेके हिम्मत लेके, 90 साला ते हर मुश्किल च साथ निभांदा आकाशवाणी साढ़े दिलां दी आवाज।
6: आकाशवाणी दे 90 साल पूरे होने दे मौके च सारियां श्रोतियां दा बड़ा बड़ा धन्यवाद।
5: 90 साल, अनगिनत आवाजां, लखां कहानियां, टाइम बदलिया, साधन बदले, पर एक रिश्ता आज भी कायम है, रेडियो कने साढ़े श्रोतियां दा। आकाशवाणी जड़ी बोलदी रही कने सांझो जोड़दी रही।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 साल इस विषय पर ये विशेष नाटक, और इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता थे डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: हो गया इंतजाम।
4: किसका?
3: गुड्डी की फीस का।
4: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले, और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
5: RBI कहता है,
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। श्रोता लीजिए, सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। श्रोताओं नमस्कार, 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस समय मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त वंदना रैना आपके साथ, और आप जुड़े हैं कार्यक्रम गीतांजलि के माध्यम से मेरे साथ। तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में खूबसूरत सफर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब कंक्रीट के जंगलों में थककर दिल सुकून ढूंढता है तो कदम अपने आप प्रकृति की ओर बढ़ जाते हैं। और किसी ने क्या खूब कहा है, पेड़ पौधे नदियाँ और ये बहती हवाएं प्रकृति से बढ़कर कोई भी दवा नहीं है। तो चलिए आज कार्यक्रम के खूबसूरत से सफर की शुरुआत करते हैं इस बेहद खूबसूरत और ताजगी भरे गीत के साथ।

जी श्रोताओ, इस गीत को सुनकर बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि हम वादियों में घूम रहे हैं। और वैसे भी दोस्तों, क्या आपने कभी सुबह की पहली किरण को महसूस किया है? जब ओस की बूंदें घास पर मोतियों की तरह चमकती हैं, तो प्रकृति मानो हमें बिना मांगे ही कितना कुछ दे देती है। लेकिन आज की इस भागदौड़ में हम इस खूबसूरती को देखना भूल ही गए हैं। तो चलिए, बंद कीजिए आंखें और महसूस कीजिए इस अगले गीत को और इसके बोलों को।

जी श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतांजलि 103.4 मेगाहर्ट्ज पर वंदना रैना के साथ। जी दोस्तों, पहाड़ों से निकलती हुई नदियां, कलकल बहते हुए झरने हमें सिखाते हैं, रास्ता चाहे कितना भी पथरीला क्यों ना हो, बस आगे ही बढ़ते जाना है, और पानी की हर एक बूंद में जीवन है। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं एक ऐसा गीत जो पानी की खूबसूरती को बयान करता है बारिश के रूप में।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीतांजलि का ये सफर जारी रहेगा 9:30 पर। थोड़ी ही देर में आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के शिमला स्टूडियो, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार सुबह 9:20 पर।

0: को 3 चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
1: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
0: इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।

0: टॉक स्टूडियो। नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण के चुनाव में आज 1293 पंचायतों में डाले जा रहे हैं वोट। मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से जारी। राज्य में 28 मई को दूसरे चरण के होने वाले पंचायत चुनाव के लिए आज दोपहर बाद 3 बजे थमेगा खुले में प्रचार। उम्मीदवार केवल व्यक्तिगत रूप से ही कर सकेंगे जनसंपर्क। डीजल के दामों में बढ़ोतरी से परिवहन लागत बढ़ने के चलते मिल्क फेड ने दूध के दामों में की 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को जोड़ने वाली प्रदेश की सबसे लंबे रूट वाली एचआरटीसी की दिल्ली केलंग लेह बस सेवा आज से शुरू। और आईपीएल क्रिकेट में क्वालिफायर वन मुकाबले में आज धर्मशाला के सामने होंगे रॉयल्स चैलेंजर बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस। अब समाचार विस्तार से। पंचायत चुनाव प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण के लिए आज सुबह 7 बजे शांतिपूर्ण तरीके से मतदान शुरू हो गया है। पहले चरण के तहत प्रदेश की 1293 पंचायतों में वोट डाले जा रहे हैं। मतदान दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगा। पंचायत प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्यों के लिए डाले जा रहे वोटों की गिनती मतदान के तुरंत बाद शुरू हो जाएगी और शाम तक इनके नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन अधिकारी संजीव महाजन ने बताया कि मतदान कार्य को पूर्ण रूप से संपन्न करवाने के लिए 8198 मतदान दल कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाने के उद्देश्यों से मतपेटियों में स्कैनर की सुविधा शुरू की है, जो मतों की गणना तक निगरानी में सहायक सिद्ध होगी।
1: देखिए, आज प्रातः 7 बजे से यह मतदान शुरू हो चुका है। आज हमारा प्रथम चरण में 1293 पंचायतों में चुनाव जारी है। इस बार आयोग ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए काफी स्टेप उठाए हैं। सभी बेल्ट बॉक्सेस के ऊपर जो है वो स्कैनर लगाया है, तो कोई भी बेल्ट बॉक्स जो है वो जब पोलिंग स्टार्ट हुई है तो वो स्कैन किया गया है। स्कैन करने उसकी एक आईडी आ गई और वो जब काउंटिंग पे जाएगा तो वहाँ फिर स्कैन किया जाएगा, ताकि बेल्ट बॉक्स पोलिंग स्टेशन पे यूज हुआ है वही बेल्ट बॉक्स काउंटिंग के केंद्र पे पहुंचा है। जहां तक काउंटिंग का सवाल है, हर काउंटिंग सेंटर की 100% जो है वो सीसीटीवी कवरेज की जाएगी, ताकि काउंटिंग के किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी का कोई चांस ना रहे और पूरी पारदर्शिता के साथ काउंटिंग हो और परिणाम जो है समय पर घोषित।
0: इस बीच 28 मई को दूसरे चरण के लिए होने वाले मतदान को लेकर आज शाम 3 बजे खुले में प्रचार बंद हो जाएगा। इसके बाद उम्मीदवार केवल व्यक्तिगत रूप से ही जनसंपर्क कर सकेंगे। जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती 31 मई को होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन अधिकारी संजीव महाजन ने कहा है कि प्रदेश में कुल 3754 पंचायतों के लिए 3 चरणों में वोट डाले जा रहे हैं। पहले चरण में आज मतदान हो रहा है, जबकि दूसरे चरण के तहत 1274 पंचायतों में 28 मई को वोट डाले जाएंगे, जबकि तीसरे और अंतिम चरण में 1187 पंचायतों में चुनाव होगा। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश में निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव के लिए 21678 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 3554 मतदान केंद्र संवेदनशील, जबकि 1585 मतदान केंद्र अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के सभी लोगों से जनगणना कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आग्रह किया है। जनगणना निदेशालय की निदेशक दीपशिखा शर्मा ने शिमला में मुख्यमंत्री से भेंट की और उन्हें जनगणना 2027 के विभिन्न पहलुओं से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि लोगों को इस बार स्वगणना का भी विकल्प दिया गया है और 1 से 15 जून तक स्वगणना पोर्टल पर जानकारी दर्ज करवाई जा सकती है। प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई के बीच करवाया जाएगा। डीजल के दामों में बढ़ोतरी से परिवहन लागत बढ़ गई है, जिसके चलते राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ यानी मिल्क फेड ने दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। बढ़ोतरी के बाद मिल्क फेड का खुला दूध 51 से बढ़कर 53 रुपए और पैकेट बंद दूध 55 से बढ़कर 57 रुपए प्रति लीटर हो गया है। मिल्क फेड ने पिछले 7 नवम्बर से दूध के दाम 3 से 4 रुपए तक घटाए थे। मिल्कफेड हिमाचल में सबसे बड़ा सरकारी दुग्ध उत्पादक संघ है। रोजाना हजारों लीटर दूध की सप्लाई मिल्कफेड के जरिए होती है। दाम बढ़ने से अब दूध से बनने वाले सभी उत्पाद भी महंगे हो सकते हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। हिमाचल को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाले सबसे लंबे रूट पर हिमाचल पथ परिवहन निगम की दिल्ली केलंग लेह बस सेवा आज से एक बार फिर शुरू हो गई है। क्षेत्रीय प्रबंधक केलंग अंशित शर्मा ने कहा है कि 990 किलोमीटर लंबा ये रूट स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रहती है। ये बस लाहौल स्पीति के प्रमुख पर्यटन स्थलों जिस्पा, दारचा, बारालाचा और सचू से होती हुई लेह तक पहुँचेगी।
2: HRTC केलोंग अपना सबसे लंबा रूट दिल्ली केलोंग ले इसको रिज्यूम करने जा रहा है। ये रूट हमारा दिल्ली से स्टार्ट होगा, दिल्ली से 12:20 का समय रहेगा और ये केलोंग पहुंचेगा 5 बजे सुबह। केलोंग से मॉर्निंग 5:30 गाड़ी निकलेगी और वो बारालाचा पास, नकीला पास, तंगलंगला पास होते हुए लेह पहुंचेगी। ये जो पूरा सफर रहेगा दिल्ली से 990 किलोमीटर का रहेगा और इसका किराया जो है वो 1840 रुपये रहेगा। टूरिस्ट काफ़ी मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है, ये पब्लिक के लिए, टूरिस्ट के लिए एक बहुत अच्छा अवसर रहेगा कि वो इस रूट का आनंद लें।
0: नशा तस्करी के नेटवर्क को खत्म करने के अभियान में शिमला पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने जानकारी देते हुए बताया कि बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर पंजाब के तरनतारन, मोगा और हरियाणा के अंबाला से 3 मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया गया है। ASP ने बताया कि शिमला पुलिस ने इस साल अब तक नशा तस्करी के अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 32 नेटवर्क को ध्वस्त किया है, जिसमें NDPC एक्ट के तहत 134 मामले दर्ज हुए हैं और 286 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। IPL क्रिकेट में क्वालिफायर 1 मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना आज गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से HPCA स्टेडियम धर्मशाला में खेला जाएगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे IPL 2026 के फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। पंजाब किंग्स पर जीत के बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु पहुंचने वाली पहली टीम बनी थी। टीम ने 14 मैचों में 18 अंक हासिल कर बेहतर रन रेट के आधार पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। IPL के इस मैच को लेकर HPCA ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है और इस मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के साथ ही आने वाले दिनों में लू की संभावना को देखते हुए मंडी जिला प्रशासन ने सभी विभागों को सतर्क रहते हुए जरूरी तैयारियां पूरी करने के दिशा निर्देश दिए हैं। इन विभागों ने मुख्यतः स्वास्थ्य, स्कूल, कृषि व वन विभाग शामिल है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
3: भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान ने जिला प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पूरे मंडी जिला में अलर्ट जारी कर दिया है। सुंदरनगर में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जबकि यह तापमान मंडी शहर में 38 डिग्री हो गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में लू और कम बारिश की चेतावनी दी है। प्रशासन ने सभी विभागों को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से बचने के लिए तैयारियां की गई हैं, जबकि स्कूलों में बच्चों के लिए ठंडे पानी और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। वहीं सार्वजनिक स्थानों में पेयजल सुविधाएं शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। वन विभाग को जंगलों में आग की घटनाओं पर नजर रखने और कृषि विभाग को किसानों को फसलों को गर्मी से बचाने के उपाय बताने के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है सीधी धूप से बचें और बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
0: अब एक नजर अखबारों की।

0: सुर्खियों पर। आज अधिकतर अखबारों ने पंचायत चुनाव से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण की सुर्खी है 1293 पंचायतों को आज मिलेंगे प्रतिनिधि। अमर उजाला ने शीर्षक दिया है हिमाचल में 1293 पंचायतों में चुनाव आज, 16 लाख मतदाता चुने गए गांव की सरकार। दिव्य हिमाचल बतौर मुख्यमंत्री लिखता है देश में सर्वश्रेष्ठ बनेंगे हिमाचल के स्कूल। हिमाचल दस्तक की एक खबर है सर्दियों के लिए बिजली बोर्ड ने खरीदी एडवांस बिजली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण के चुनाव में आज 1293 पंचायतों में डाले जा रहे हैं वोट। मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से जारी। राज्य में 28 मई को दूसरे चरण में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए आज दोपहर बाद 3 बजे थमेगा खुलेंगे प्रचार। उम्मीदवार केवल व्यक्तिगत रूप से ही कर सकेंगे जनसंपर्क। डीजल के दामों में बढ़ोतरी से परिवहन लागत बढ़ने के चलते मिल्कफेड ने दूध के दामों में की 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को जोड़ने वाली प्रदेश की सबसे लंबे रूट वाली HRTC की दिल्ली केलंग लेह बस सेवा आज से शुरू। और IPL क्रिकेट में क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज धर्मशाला में आमने सामने होंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम गीतांजलि।
2: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना
3: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार।
5: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कहानी। छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना।
2: जी श्रोताओ, 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला, और इस समय प्रसारित किया जा रहा है कार्यक्रम गीतांजलि। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त वंदना रैना। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रकृति की, पंछियों की, पर्वतों की, नदियों की। और प्रकृति ही हमारा घर है, और आज जहां हम तरक्की की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी नदियों को मैला कर रहे हैं, जंगलों को कम कर रहे हैं। तो याद रखिए दोस्तों, अगर प्रकृति सुरक्षित है तभी हम

भविष्य भी सुरक्षित है। तो आज इस कार्यक्रम गीतांजलि के मंच पर हम खुद से एक वादा जरूर करें कि हम पेड़ पौधे लगाएंगे और अपनी इस प्रकृति को बचाएंगे।

जी श्रोताओ, जब भी हम बात करते हैं खूबसूरत वादियों की, नज़ारों की, तो पर्वत जो हैं वो भी इन नज़ारों की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। इसके साथ ही पर्वत हमें सिखाते हैं कि मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, हमें अपने असूलों से, अपनी ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए। और साथ ही ये पर्वत ही हैं जो हौसले, स्थिरता और सुकून की मिसाल हैं।

जी श्रोताओ, प्रकृति का सबसे रोमांटिक और सबसे खूबसूरत रूप तो बारिश में ही दिखता है, जब मिट्टी की वो सौंधी खुशबू सीधी रूह को छू जाती है, मोर नाचने लगते हैं, दिल झूम उठता है, तो ऐसे में एहसास और भी गहरा जाते हैं।

जी दोस्तों, बारिश के बाद प्रकृति अपनी अलग ही खूबसूरती, अलग ही छटा चारों ओर बिखेर देती है और अपनी एक नई तस्वीर हम सबको दिखाती है। तो यही कहेंगे कि प्रकृति को महसूस करिए, थोड़ा वक्त निकालिए, इन पेड़ों से बातें कीजिए, इन खुले आसमान को देखिए और साथ ही पंछियों की मीठी आवाज़ को महसूस कीजिए और सुनिए।

जी श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में बस यही कहेंगे, अपने आसपास सफाई रखिए, पेड़ों को बचाइए, प्रकृति को बचाइए और इस अमूल्य संपदा को सहेज कर रखिए। आज के गीतांजलि कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह और अब अपनी रेडियो दोस्त वंदना रैना को दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए आकाशवाणी धर्मशाला 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

फिल्म संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं बॉबी जासूस फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है श्रेया घोषाल और साथियों ने।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं तुम मिले फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है नीरज श्रीधर ने। प्रीतम का संगीत निर्देशन है और बोल हैं कुमार के।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य है और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।

फिल्म संगीत का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में मैं हूं आपकी हमसफर सीमा। लीजिए अब सुनिए खट्टा मीठा फिल्म से ये गीत, जिसे गाया है के और सुनिधि चौहान ने।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

विशाल मिश्रा और साथियों को अभी आपने सुना, फिल्म थी नोटबुक। शब्द रचना अक्षय त्रिपाठी की और संगीत निर्देशन गौरव वासवानी का। और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 10:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं हिमाचली गीतों और लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं विक्रांत और साथियों के गाए इस लोकगीत के साथ।

हिमाचली लोकगीतों का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के संग। और ये रहा कार्यक्रम का अगला लोकगीत, जिसे गाया है सुनील राणा और साथियों ने।

प्रेम सिंह और साथियों के गाए इसी लोकगीत के साथ हिमाचली गीतों और लोकगीतों पर आधारित ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 11 बजने को है, कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण के लिए आज मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। पहले चरण के तहत प्रदेश की 1293 पंचायतों के लिए सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है, जो दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगा। पंचायत प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती मतदान के तुरंत बाद शुरू हो जाएगी और शाम तक इनके नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव अधिकारी संजीव महाजन ने कहा कि इस बार आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से मत पेटियों में स्कैनर की सुविधा शुरू की है, जो मतों की गणना तक निगरानी में सहायक सिद्ध होगी।
1: देखिए, आज प्रातः 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। आज हमारा प्रथम चरण में 1293 पंचायतों में चुनाव जारी है। इस बार आयोग ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए काफी स्टेप उठाए हैं। सभी बेल्ट बॉक्सेस के ऊपर जो है वो स्कैनर लगाया है, तो कोई भी बेल्ट बॉक्स जो है वो जब पोलिंग स्टार्ट हुई है तो वो स्कैन किया गया है। स्कैन करने उसकी एक आईडी आ गई और वो जब काउंटिंग पे जाएगा तो वहाँ फिर स्कैन किया जाएगा, ताकि तय हो बेल्ट बॉक्स पोलिंग स्टेशन पे यूज हुआ है वही बेल्ट बॉक्स काउंटिंग के केंद्र पे पहुंचा है। जहां तक काउंटिंग का सवाल है, हर काउंटिंग सेंटर की 100% जो है वो सीसीटीवी कवरेज की जाएगी, ताकि काउंटिंग के किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी का कोई चांस ना रहे और पूरी पारदर्शिता के साथ काउंटिंग हो और परिणाम जो है समय पर घोषित।
0: इस बीच आज पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। खासकर पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के अलावा बुजुर्ग मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान कर हिस्सा लिया और अन्य लोगों से भी बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील की।
2: नमस्कार, मेरा नाम अंबिका जम्भाल है और मैंने आज फर्स्ट टाइम पंचायत का इलेक्शन जो हो रहे हैं उनमें अपना वोट दिया है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस वोट के लिए। और मैं अपने युवा साथियों को भी यही बोलना चाहूँगी कि वोट दें और अपने लोकतंत्र को मजबूत करें। धन्यवाद।
0: इस बीच प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से सुबह 9 बजे तक की मतदान प्रतिशतता भी सामने आ रही है। ऊना जिला के 5 ब्लॉकों की विभिन्न पंचायतों में 20% मतदान हो चुका था, जबकि कुल्लू विकास खंड में 20 और शिमला जिला के रोहड़ू विकास खंड में 17.46% मतदान सुबह 9 बजे तक हो चुका था। इधर 28 मई को दूसरे चरण के लिए होने वाले मतदान को लेकर आज शाम 3 बजे खुले में प्रचार बंद हो जाएगा। इसके बाद उम्मीदवार केवल अब व्यक्तिगत रूप से ही जनसंपर्क कर सकेंगे। हिमाचल को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाले सबसे लंबे रूट पर हिमाचल पथ परिवहन निगम की दिल्ली केलंग लेह बस सेवा आज से एक बार फिर शुरू हो गई है। क्षेत्रीय प्रबंधक केलंग अंशित शर्मा ने कहा है कि 990 किलोमीटर लंबा ये रूट स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रहती है। ये बस सेवा लाहौल स्पीति के प्रमुख पर्यटन स्थलों जिस्पा, दारचा, बारालाचा और सरचू से होती हुई लेह तक पहुँचेगी।
3: HRTC केलोंग अपना सबसे लंबा रूट दिल्ली केलोंग ले इसको रिज्यूम करने जा रहा है। ये रूट हमारा दिल्ली से स्टार्ट होगा, दिल्ली से 12:20 का समय रहेगा और ये केलोंग पहुंचेगा 5 बजे सुबह। केलोंग से मॉर्निंग 5:30 गाड़ी निकलेगी और वो बारालाचा पास, नकीला पास, तांगलंगला पास होते हुए लेह पहुंचेगी। ये जो पूरा सफर रहेगा दिल्ली से 990 किलोमीटर का रहेगा और इसका किराया जो है वो 1840 रुपये रहेगा। टूरिस्ट काफी मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है, ये पब्लिक के लिए, टूरिस्ट के लिए एक बहुत अच्छा अवसर रहेगा कि वो इस रूट का आनंद लें।
0: IPL क्रिकेट में क्वालिफायर 1 मुकाबले में मौजूदा चैंपियंस रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का सामना आज गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच आज शाम 7 बजे से HPCA स्टेडियम धर्मशाला में खेला जाएगा। इस मुकाबले को विजेता टीम सीधे IPL 2026 के फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। IPL के इस मैच को लेकर HPCA ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है और इस मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। डीजल के दामों में बढ़ोतरी से परिवहन लागत बढ़ गई है, जिसके चलते राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ यानी मिल्कफेड ने दूध के दामों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। बढ़ोतरी के बाद मिल्कफेड का खुला दूध 51 से बढ़

0: बढ़कर 53 रुपए और पैकेट बंद दूध 55 से बढ़कर 57 रुपए प्रति लीटर हो गया है। दाम बढ़ने से अब दूध से बनने वाले सभी उत्पाद भी महंगे हो सकते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3 बजे। नमस्कार।
1: FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिमाचली गीतों और लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस लोक भजन के साथ।

मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से।

0: एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for rupees 10.99 lakh with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric. Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for rupees 10.99 lakh with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
0: मैं हूँ एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ, एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: हिमाचली लोकगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और ये रहा कार्यक्रम का अगला लोकगीत जिसे गाया है शेर सिंह जरियाल ने।

रीता, सपना और लक्ष्मी के मिली जुली सुरों में अभी ये लोकगीत आपने सुना। और ये रहा कार्यक्रम का अगला लोकगीत, राजकुमार और साथियों का गाया हुआ।

इसी गीत के साथ हिमाचली गीतों और लोक गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 11:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सबदंग। सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। आज को ही मौका बना लीजिए।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। वो लिखते हैं,
3: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार। आज उमंग कार्यक्रम में दो बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित किए गए। पेड़ की बात शीर्षक से जगदीश चंद्र बसु पर केंद्रित कार्यक्रम ने संवाद के माध्यम से उनके कार्यों, उपलब्धियों, प्रयासों और विज्ञान जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान को बहुत सरलता से चर्चित किया।
2: जी।
3: योगेश ठाकुर जी आगे लिखते हैं,
2: ये कार्यक्रम बच्चों को बसु जी के कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त झलक प्रदान करता है। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल पर आधारित कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक था। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरला ठकराल के द्वारा प्राप्त की गई अभूतपूर्व सफलता की गाथा का पता चलता है। इतने सुंदर कार्यक्रम को श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
3: योगेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रतिक्रिया देने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
2: चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा
3: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत, परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
2: धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे कार्यक्रमों की इस श्रृंखला को सराहा है,
3: क्योंकि इस श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेर सारी मनोरंजक और रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी इस सप्ताह हम क्या जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे दुनिया के कुछ प्रसिद्ध फूलों पर।
3: जी मुझे याद आया, इसी श्रृंखला में हम भारत के कुछ प्रसिद्ध फूलों की चर्चा भी तो कर चुके हैं।
2: बिल्कुल।
3: तो आज किस फूल की चर्चा की जाए?
2: अजीत जी आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध फूल चेरी ब्लॉसम की।
3: तो क्यों ना शुरुआत की जाए आपसे।
2: जी श्रोताओ, चेरी ब्लॉसम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फूलों में से एक है। इसका मूल है जापान, यानी इसकी उत्पत्ति जापान से मानी जाती है। जापानी भाषा में इसे सुकुरा कहा जाता है। यह फूल जापान की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान माना जाता है।
3: जी विमलेश जी, ठीक वैसे ही ना जैसे भारत की राष्ट्रीय पहचान फूलों के संदर्भ में कमल है।
2: बिल्कुल सही। जब ये फूल खिलते हैं तो लगभग पूरा देश गुलाबी और सफेद रंगों की मनमोहक छटा से भर जाता है। पूरा वातावरण बेहद खूबसूरत हो जाता है। इसके खिलने के समय में बहुत से पर्यटक खास तौर से जापान आते हैं।
3: विमलेश जी आपने इन फूलों के खिलने के बारे में कहा।
2: जी।
3: तो ये हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने का समय कब होता है।
2: अजीत जी, चेरी ब्लॉसम के फूल सामान्यतः मार्च और अप्रैल माह के बीच वसंत ऋतु में खिलते हैं। हालांकि स्थान और तापमान के अनुसार इसके खिलने के समय में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है।
3: विमलेश जी एक और बेहद रोचक बात मैंने इन फूलों के विषय में पढ़ी थी, और वो ये कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ों पर इस मौसम में पहले फूल खिलते हैं, बाद में पत्तियां निकलती हैं।
2: जी बिल्कुल सही। और इसके कारण पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। श्रोताओं आपको बता दें कि जापान में चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने के समय त्योहार जैसा माहौल होता है। इस समय जापान में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे हनामी कहते हैं। अजीत जी अब आपकी बारी।
3: जी श्रोताओं, हनामी को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहा जाता है।
2: जी
3: आइए जानते हैं कि इस उत्सव के दौरान वहाँ लोग क्या करते हैं।
2: इस समय शहरों, गाँव और कस्बों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें चित्रकारी, गीत संगीत और जापानी संस्कृति की झांकियाँ दिखाई देती हैं। लेकिन हनामी परंपरा की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि
3: इस समय लोग चेरी ब्लॉसम पेड़ों के नीचे बैठकर परिवार, मित्रों और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं।
2: जी
3: वे एक साथ बैठकर चेरी ब्लॉसम फूलों की अनोखी छटा का आनंद लेते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं।
2: जी दूर दूर शहरों में रहने वाले परिवार के लोग इस समय एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं।
3: जी
2: और स्वादिष्ट भोजन करते हैं, जिनमें विशेष है सकुरा मोची, ये मीठे चावल का केक होता है।
3: और दूसरा व्यंजन है डांगो, जिन्हें हनामी डांगो भी कहते हैं। ये पिसे हुए चावल के बने हुए गोल आकार के पकवान होते हैं। एक और व्यंजन है खास, उसका नाम है टेम्पुरा
2: जी।
3: इसमें तली हुई सब्जियां और मिठाई और विशेष जापानी चाय परोसी जाती है।
2: ऐसा नहीं है कि चेरी के फूल सिर्फ जापान में ही है, इन फूलों को विभिन्न देशों ने अपनाया, जैसे कोरिया, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इन देशों ने जापान से इसके पौध को लेकर अपने देशों में विकसित किया है।
3: एक और खास बात आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम के फूल बहुत कम समय के मेहमान होते हैं
2: जी।
3: ये एक से दो सप्ताह तक ही अपनी पूरी सुंदरता में रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक और खास बात आपको बता दें श्रोताओं कि चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ों में जो चेरी के फल लगते हैं ना, वो बहुत छोटे और खट्टे होते हैं। इन पेड़ों में वो चेरी के फल नहीं लगते जो सामान्य तौर पर खाए जाते हैं।
2: खाने वाले चेरी के फलों के पेड़ अलग होते हैं। दरअसल चेरी ब्लॉसम के पेड़ सजावटी पेड़ माने जाते हैं। इनकी प्रजाति चेरी फल वाले पेड़ की प्रजाति से अलग है
3: जी।
2: इनका उद्देश्य सिर्फ सफेद और गुलाबी रंगों की अद्भुत छटा को बिखेरना है।
3: और इन फूलों के द्वारा ये संदेश मिलता है कि जीवन भी क्षणिक है, इसीलिए जब तक जीवन है इसे हम सुंदरता से बिताएं और समय का मूल्य समझें
2: जी।
3: शायद चेरी ब्लॉसम फूलों के हनामी उत्सव का ही प्रभाव है कि जापान में सौंदर्य और कला पर बड़ा जोर दिया जाता है, और हाँ, वहाँ समय की बड़ी प्रतिबद्धता है
2: जी। बिल्कुल। तो श्रोताओ, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
3: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
3: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी आप अपने संदेश और हमारे प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ,
2: आप एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे कार्यक्रमों की, सुनते हैं कार्यक्रम।
3: हमारा पहला कार्यक्रम है वी आर गोइंग टू द जू। सिंगिंग द पोएम श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत इस गीत में मजेदार ढंग से बच्चों की चिड़ियाघर की यात्रा का वर्णन है। पशु पक्षियों की आवाजों को शामिल करके गीत को और भी अधिक रोचक बनाया गया है।
4: चिल्ड्रन, हैव यू एवर विजिटेड अ जू?
5: अ जू?
4: यस, अ जू।
5: Oh yes.
4: All right. So tell me, what do you see in a zoo?
5: Tiger. Lion.
4: Yes.
5: Monkey. Birds of different kind.
4: Very nice.
5: Camel. Giraffe. And so on.
4: Oh wow. So, here is a child like you. Who wants to go to a zoo? Now, let's recite this poem. And you all repeat after me. Ready?
5: Ready!
4: The poem goes like this. We are going to the zoo to see a kangaroo.
5: We are going to the zoo to see a kangaroo.
4: And a lion too.
5: And a lion too.
4: We are going to the zoo.
5: We are going to the zoo.
4: The monkeys swing and climb.
5: The monkeys swing and climb.
4: They know it's feeding time.
5: They know it's feeding time.
4: The polar bear and seals.
5: The polar bear and seals.
4: Enjoy their fishy meals.
5: Enjoy their fishy meals.
4: Yes, we are going to the zoo.
5: We are going to the zoo.
4: The snakes all slide along.
5: The snakes all slide along.
4: The skunk just makes a pong.
5: The skunk just makes a pong.
4: The tiger gives a roar.
5: The tiger gives a roar.
4: He wants to eat some more.
5: He wants to eat some more.
4: We are going to the zoo.

0: Dear friends, you have just heard the sounds of different animals in this song. Now, listen to the sounds again and try to identify them by yourself. This was elephant. This was monkey. And this was tiger. This was polar bear. And this was skunk. And this was kangaroo. And friends, do you know that pets and animals are very important part of our lives and the environment as well? But how? Talk to your elders and teachers.
1: अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम और अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह।
2: इस कार्यक्रम में बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह की वीर गाथा प्रस्तुत की गई है और जानकारी दी गई है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया और देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना बलिदान दिया।
1: जी,
3: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
4: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
5: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है। आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है, ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
6: वीर जोरावर की
7: जय!
6: वीर जोरावर की
7: जय!
6: जय जेरापुर, जय भारत!
7: जय जेरापुर, जय भारत!
4: राजा जोरावर सिंह, हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जेरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
8: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
4: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें यह जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
8: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया, ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
9: महाराज, हालात खराब हो रहे हैं। लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा ताकि इन अंग्रेजों को मनमाने का कोई मौका ही ना मिले।
10: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
9: जी।
10: वहां के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
9: जी महाराज। महाराज अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
10: बिल्कुल,
9: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
10: जी मंत्री जी।
9: जी महाराज।
4: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
6: होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
11: जोरावर सिंह महाराज आ रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह,
4: आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है। तशरीफ रखें और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
10: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
4: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
10: देखिए निजाम साहब।
4: जी फरमाइए।
10: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं
4: जी।
10: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
4: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं
10: जी।
4: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
12: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
4: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
8: जी हाँ, जेरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
13: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
14: बिल्कुल।
13: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साय की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
14: हुजूर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
13: लेकिन जरा होशियारी से।
14: जो हुकुम सरकार।

0: John Allen! What all? तुम चारों तरफ से गिर चुके हो.
1: ये क्या है?
0: You are under arrest.
1: एक सोते हुए निहत्थे इंसान को आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ. आओ सामने.
0: बाउट हो गई तुम्हारी बहादुरी. फौजियों,
2: हुजूर,
0: बांधो इस बच्चे को जंजीर से.
2: जी.
3: छोड़ो मुझे. हाथ मत लगाओ मुझे. मुझसे हाथ हटाओ. मैंने कहा छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से.
0: शाबाश, शाबाश, सारा जंग. मैं खुश हुआ. तुम्हें मोटा इनाम दिलवाऊंगा
4: हुजूर.
1: अच्छा, तो ये सब इसकी कारस्तानी है. एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है. लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है. लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था.
0: फौजियों, ले चलो इसको.
3: छोड़ो मुझे, जल्दी से हाथ हटाओ. छोड़ो मुझे.
5: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए. उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया, उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए, तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों ना गंवानी पड़े.
6: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया, लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था. उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी. वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे.
7: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा.
1: अप्पा, ये नहीं हो सकता.
7: देखो देखो, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा.
1: ये नामुमकिन है.
7: वाय?
1: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते. हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे. अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं. हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है.
7: तो तुम नहीं मानोगे. देखो देखो, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें. ये सजा.
1: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा. हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए. हमने जो किया हमें उस पर गर्व है. कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है. इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा. हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं.
7: एक्चुअली यू आर अ फूल.
5: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा. बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई.
6: काला पानी की सजा?
5: हाँ, काला पानी की सजा. भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी.
6: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे.
5: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली.
1: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं. भारत माँ का बहादुर बेटा हूं. इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा. फिर मैं तो राजा हूं.
6: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
2: तो श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
8: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। दिन के 12 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों, जय हिंद। फिल्म संगीत का कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं हम और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर और साथियों के गाए इस गीत के साथ। ये गीत हमने लिया है फिल्म आनंद मठ से।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ, HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: सैनिकों के लिए फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे गाया है श्रेया घोषाल ने। बोल लिखे हैं स्वानंद किरकिरे ने, धुन बनाई है अजय अतुल ने और फिल्म का नाम है सिंघम।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म केसरी से। अरिजीत सिंह और असीस कौर की आवाजें हैं और गीतकार और संगीतकार हैं तनिष्क बागची।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ, HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: सैनिकों के लिए इस कार्यक्रम का अगला गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं सुनिधि चौहान और ऐश किंग की आवाजों में। बोल लिखे हैं जयदीप साहनी ने और संगीत दिया है प्रीतम ने। फिल्म का नाम है दम मारो दम।

कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए खामोशी फिल्म में कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू को। वो लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीतकार हैं जतिन ललित।

सैनिकों के लिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। दिन के 12:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम घर परिवार।

0: कार्यक्रम घर परिवार सुनने वाली सभी सखी सहेलियों को मेरा यानी सीमा का
1: जी और मेरा यानी वंदना रैना का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी सखियों, कैसी हैं आप सब और क्या है हालचाल आप सभी सखियों के?
1: जी सीमा, सखियों के हालचाल तो आपने पूछ लिया और मुझे उम्मीद है कि हमारी सखियां जो हमारा कार्यक्रम सुन रही हैं वो अपने अपने घर में स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी
0: जी।
1: लेकिन अपना हालचाल आपने बिल्कुल नहीं बताया, क्योंकि जिस तरह से आप बाहर से आई हैं और आपका चेहरा एकदम से लाल हो गया है तो लगता है गर्मी असर दिखा रही है आप पे।
0: बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि हमारे हालचाल पूरी तरह से बेहाल है इन दिनों गर्मियों के इस मौसम की वजह से, और इतनी धूप है वंदना बाहर की क्या ही कहें।
1: जी सीमा, और धूप में हम बड़े जो हैं वो फिर भी अपना थोड़ा ख्याल रख सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गर्मियों का असर हमें देखने में मिलता है वो है हमारे घर के नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे, जो कि स्कूल भी जा रहे हैं आजकल, क्योंकि हमारे प्रदेश में अभी तक छुट्टियाँ गर्मियों की नहीं पड़ी हैं। तो ऐसे में उनके लिए मुझे कई बार बहुत चिंता होती है।
0: बिल्कुल, और देखिए जब वो स्कूल से आते हैं तो चेहरे उनके इस तरह से लाल पीले हुए होते हैं कि है ना, मन करता है उनका कि कुछ जाते ही घर से कुछ ठंडा खाएं, और वो डिमांड भी ऐसे रखते हैं कि मम्मा अब तो कुछ ठंडा ठंडा ही हमें खाना है, हमें बहुत गर्मी लग रही है।
1: और ठंडे ठंडे में सबसे पहले, जहां तक मैं नन्हे मुन्ने बच्चों का जानती हूँ, तो उनको सबसे पहले चाहिए आइसक्रीम खिला दो, कोल्ड ड्रिंक पिला दो, और वो फ्रिज से निकली हुई चीजों को एकदम से खाना चाहते हैं।
0: बिल्कुल। अच्छा वंदना, आपने एक चीज देखी होगी, कुछ तो बच्चे इतने शैतान होते हैं कि वो स्कूल से आते आते सड़क में ही लेट जाते हैं या सड़क में ही जिद करना शुरू कर देते हैं कि हमें कुछ लेकर दो, हम तभी चलेंगे आगे या घर जाएंगे।
1: बिल्कुल, और जो बाहर जो रेहड़ी वाले हैं, जो चीजें हैं वो बच्चों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, है ना
0: जी।
1: तो ऐसे में वो शिकायत तो करते हैं, लेकिन क्योंकि हम उनके माता पिता हैं या घर के बड़े हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हमें किस तरह से उन्हें खान पान की जो अच्छी आदतें हैं उनमें डालनी हैं।
0: बिल्कुल, और हम उनसे कह सकती हैं कि आप घर चलिए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए तैयार करके रखी हैं, फ्रूट सैलेड है या हम मैंगो शेक है ना, तरह तरह के शेक्स बनाकर रख सकती हैं उनके लिए, ताकि वो बाहर की चीज़ों की तरफ उनका आकर्षण जो है वो थोड़ा कम रहे।
1: जी सीमा, और कई बार हम जब छोटे थे तो हम भी अपने घरों में देखते थे कि हमारी जो माताएं थी वो घर पे बनाती थी कांजी या फिर आम पन्ना, जल जीरा, है ना, तो लगता है आपके मुंह में स्वाद आ गया ये नाम सुनते।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और पुरानी यादें ताजा हो रही हैं, वो घड़े का पानी है ना
1: जी, जी।
0: और वो आम पन्ना, छोटी छोटी आम की गुठलियां है ना, वो निकालकर और जो बनता था इतना टेस्टी लगता था कि मन करता था
1: जी।
0: बस।
1: और अभी समय ऐसा भी आ गया है, क्योंकि बाहर की चीजों से सेहत ही खराब होती है, तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों में खान पान की अच्छी आदतें डालें।
0: बिल्कुल,
1: तो ऐसे में माताएं ये भी कर सकती हैं कि जब वो बनाती हैं तो बच्चों को अपने साथ रखें, उनको भी थोड़ी थोड़ी मदद लें, तो उनको भी वो इंटरेस्टिंग लगेगा और वो सोचेंगे कि ठीक है हम भी टेस्ट करके देखते हैं ये चीज कैसी है
0: जी,
1: तो
0: जी,
1: और
0: जी।
1: इसी के साथ हम पुरानी जो हमारी खान पान की चीजें हैं वो भी अगली पीढ़ी तक जा सकती
0: है। बिल्कुल,
1: है ना?
0: और देखिए खाने की हम ये कह सकते हैं प्रेजेंटेशन बहुत बेटर करती है
1: जी, जी।
0: जब उन्हें हम तरह तरह की चीजें अच्छे से सजा कर बना कर उनके सामने देते हैं तो बच्चा खुद ही खुद उसकी तरफ जो है वो आकर्षित हो जाता है। तो मुझे लगता है बच्चों की तो बात हो गई, लेकिन एक और बच्चे हमारे घर में होते हैं
1: जी जी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग सीमा, उनके बारे में भी बात हम जरूर करेंगे कार्यक्रम में, पर पहले सखियों का मनोरंजन कर दें गीत के साथ।
0: जी बिल्कुल, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: चलिए ठीक है, और आप और हम भी मिलकर सुनते हैं।

0: जी सीमा, कितना खूबसूरत सा गीत, मुझे लगता है हमारी सखियों ने इंजॉय किया होगा। आपको
1: जी
0: कैसा लगा ये गीत?
1: मुझे भी बहुत ही पसंद आया ये गीत, और खासकर देखिए, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। साथ ऐसा ही होता है वंदना कि, है ना, जिंदगी कब आसान हो जाती है, जीने में मजा आने लगता है ना।
0: जी, और बिल्कुल साथ साथ जब हम चलते हैं तो बहुत सी बातें हम सीखते और सिखाते भी हैं,
1: जी
0: और एक कहीं ना कहीं प्यार से मिलकर जब हम अपने घरों में ऐसे रहते हैं और साथ साथ चलते हैं तो बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारे कष्ट जो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी लाइफ में कब आए और कब चले भी
1: चले
0: गए।
1: गए। बात करें बुजुर्गों की तो उनका भी साथ कुछ ऐसा ही है। बहुत बार वंदना हम लोग इस दुविधा में होते हैं कि क्या करें क्या ना करें, है ना, कैसे डिसीजन लें किसी चीज
0: जी
1: का।
0: जी
1: और जैसे ही उनके पास पहुंचते हैं, उनसे हम डिस्कस करते हैं, एकदम से हल निकलता है बहुत सारी चीजों का। क्यों, क्या
0: जी
1: कहते हैं?
0: बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। और जिस तरह से कहा जाता है कि बुजुर्ग जो हैं वो हमारे घर में एक बरगद के पेड़ का काम करते हैं,
1: बिल्कुल।
0: जिस तरह बरगद का पेड़ जो है वो हर किसी को सहारा देता है, आश्रय देता है, छाया देता है,
1: जी
0: उसी तरह हमारे बुजुर्ग जो हैं उनके पास जिंदगी का इतना लंबा अनुभव होता है,
1: बिल्कुल।
0: और वो अनुभव कहीं ना कहीं हमें भी मदद करता है और हमारी रास्ते जो हैं उन्हें आसान बनाता है।
1: जी बिल्कुल। और बात करें अपनी युवा पीढ़ी को, तो वो भी बहुत इंजॉय करते हैं अपने दादा दादी की कंपनी को, है ना।
0: जी
1: उनसे बड़ी सारी चीजें वो सीखते हैं। और बात करें नैतिक संस्कारों की, तो वो भी हमारे बुजुर्ग जो हैं वो उनमें बहुत अच्छी तरह से डाल देते हैं, डाल सकते हैं। और एक अच्छी परवरिश जो है वो बुजुर्गों के, हम ये कह सकते हैं कि, सानिध्य में बच्चों की होती है।
0: जी सीमा, और कहीं ना कहीं जिस तरह से हमारी आजकल की जीवन शैली है तो वहाँ पे माता पिता दोनों वर्किंग होते हैं,
1: जी
0: तो ऐसे में बच्चा कहीं ना कहीं अगर वो एकल परिवार में रहता तो बहुत सारी चीज़ें मिस कर देता है, लेकिन वहीं अगर वो अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ रहता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, एक बहुत अच्छी परवरिश मिलती है। और
1: बिल्कुल।
0: माता पिता जो समय नहीं दे सकते हैं अपने बच्चों को, तो कहीं ना कहीं वो कमी जो है वो उनके दादा दादी, उनके नाना नानी वो
1: बिल्कुल
0: बच्चों के जीवन में पूरा कर देते हैं, है ना।
1: हाँ। और हमारे बुजुर्ग भी जो हैं वो अपने एक तरह से बचपन दोबारा जो है वो याद करते हैं उन्हीं के बहाने, है ना। जब उनके बच्चे होते हैं तो वो बहुत सारी जिम्मेदारियों में घिरे रहते हैं,
0: जी
1: लेकिन ये समय ऐसा होता है जिस समय वो सारी जिम्मेदारियों से जो है वो एक तरह से निकल चुके होते हैं और पूरी तरह से इंजॉय करते हैं अपने पोता पोतियों के साथ, है ना। और उस सफर को याद करते हुए कब सच में जीवन जो है वो सुंदर बन जाता है, बहुत ही आसान बन जाता है, नहीं पता चलता।
0: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही, और कहीं ना कहीं ये भी बिल्कुल बात आपने जो कहा कि बुजुर्ग जो होते हैं वो एक समय आने पर बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, तो ऐसे में वो अपना बचपन अपने जो नाती पोते हैं उनके साथ वापिस से जीते हैं तो बहुत
1: जी
0: अच्छा लगता है कि संयुक्त परिवार में होता है। लेकिन कई बार सीमा हम ये भी देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो नौकरी के लिए बाहर चले गए
1: जी
0: हैं
1: जी जी
0: लेकिन माता पिता अपना घर नहीं छोड़ पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, पीछे रह जाते हैं,
1: जी जी
0: तो ऐसे में उनको अकेलेपन की समस्या से जूझना पड़ता है, कई बहुत सारी उनके सामने समस्याएं आ जाती हैं, तो वो एक चिंता का विषय है आज के
1: बिल्कुल
0: समय में।
1: जी वंदना। और देखिए, कई बार तो मजबूरी हो सकती है कि घर से दूर वो रह रहे हैं बच्चों की
0: जी
1: पढ़ाई के लिए, अपनी जॉब के लिए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे खास मौके होते हैं जब आकर वो अपने परिवार से मिल सकते हैं, बुजुर्गों को एक तरह से सरप्राइज दे सकते हैं ना, है ना। त्योहार होता है या कोई विशेष अवसर होता है तो आकर उनसे मिलें, उनसे बैठें, क्या कुछ चल रहा है उनके जीवन में जानने की
0: जी
1: कोशिश करें।
0: क्योंकि बुजुर्ग जो हैं उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, उन्हें अपने बच्चों का समय चाहिए,
1: बिल्कुल
0: उनके प्यार के दो मीठे बोल चाहिए,
1: जी
0: है ना। और कई बार क्या होता है कि जो बोलते हैं ना जेनरेशन गैप, वो भी परिवार में कई बार देखने को मिलता है, और ऐसे में जो युवा पीढ़ी है उनको भी ये चाहिए कि थोड़ा वो संयम बरतें,
1: जी जी जी
0: क्योंकि हमें लगता है जो युवा पीढ़ी है उनको लगता है कि उनको सब कुछ पता है, और बुजुर्ग अगर उन्हें कुछ बता रहे हैं तो उनको लगता है कि नहीं, हमें टोक रहे हैं, हमें बात बात पे बता रहे हैं और हमें तो सब कुछ आता है।
1: बिल्कुल
0: लेकिन कहीं ना कहीं ये समय आ गया है कि ऐसी सोच बदलनी चाहिए, ऐसी
1: बिल्कुल
0: धारणा बदलनी चाहिए, क्योंकि कल को हम भी उनके ही स्थान पे होंगे, है ना,
1: जी जी जी
0: जीवन का चक्र तो यूं ही चलता
1: यूं
0: है।
1: ही चलता है। और देखा जाए तो जब आपस में रिश्तों में मिठास होती है, अपनापन होता है, तो पीढ़ियों का ये दायरा मुझे लगता है थोड़ा सीमित सा हो जाता है, सिमटने लगता है जब वो अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है
0: जी
1: बच्चों के
0: जी
1: साथ, उनकी अंडरस्टैंडिंग, या पेरेंट्स भी थोड़ा सा देखें कि नहीं, हमारे माता पिता हैं, इन्हें इतना है ना अनुभव है पूरी उम्र का और इतना संजोकर रखा है हर चीज को। हम जिस घर में रहते हैं कहा जाए तो वो घर भी तो उन्हीं की ही देन है।
0: बिल्कुल, और हमारे अंदर जो संस्कार हैं, हमारे हम जैसे आज बने हैं तो वो सारा का सारा श्रेय तो हमारे माता पिता और बुजुर्गों को ही जाता है ना।
1: जी बिल्कुल।
0: हाँ, और सीमा वैसे भी जब हम छोटे थे ना तो छुट्टियां होती थी गर्मियों की, मुझे आपका नहीं पता, तो हम दौड़ भाग के कि नहीं अब तो हमें नाना नानी के घर जाना है, अब तो दादा दादी के घर जाना है, तो वो प्यार जो था वो उनका हमें बुलाता था कि अब जैसे ही समय मिलेगा और हम उनके साथ जाएंगे, कहानियां सुनेंगे, खूब अच्छी अच्छी चीजें खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, है ना।
1: बिल्कुल। तो और वंदना, मुझे भी याद आ रहा है आपने उस, हम ये कह सकते हैं उस किस्से को छेड़ दिया है, तो मुझे भी वो बचपन की सारी यादें आ रही हैं कि जैसे ही छुट्टियां होती थी डे फर्स्ट हमारा वो जो बैग है वो पैक हो जाता था और हमें बस यही रट लगती थी कि अब नानी के घर जाकर ही हमें सांस लेनी है। तो कहीं ना कहीं वो समय मुझे लगता है फिर से वापस आना चाहिए, क्या लगता
0: बिल्कुल,
1: है आपको?
0: बिल्कुल बिल्कुल वो समय आना चाहिए और इस समय पर हम और भी बातें करेंगे, लेकिन सीमा पहले अपनी सखियों को संदेश सुनवा दें कुछ।
1: जी बिल्कुल।
2: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
3: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
5: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
4: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
5: तो फिर सही नंबर,
4: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
5: आपने तो बचा लिया दीदी।
4: काम से नहीं।
6: RBI कहता है
7: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
8: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
9: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
8: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
9: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
8: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
9: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।
1: एक बार फिर से स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सभी सखियों का आपके अपने कार्यक्रम घर परिवार में।
0: और सखियों, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला से और 103.4 MHz पर।
1: जी
0: सीमा, और कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं हमारे बुजुर्गों के बारे में। तो सबसे पहले हमने उनके प्यार के बारे में, उनकी अच्छी चीज़ों के बारे में जो हम उनसे सीखते हैं उसके बारे में तो बातें कर ली, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इस उम्र में जो हमारे घर के बड़े हैं उन्हें भी देखभाल की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी तरफ पूरा ध्यान दें, क्योंकि उनको ना सिर्फ शारीरिक रूप से हमें उनकी देखभाल करनी है बल्कि मानसिक रूप से भी उनकी देखभाल करनी है। तो आप क्या सोचती हैं इस बारे में?
1: जी बिल्कुल सही बात कही आपने वंदना। और देखा जाए तो हम सभी तो अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं, हम घर में भी काम करते हैं, बाहर भी जा रहे हैं, है ना, एक सामाजिक हमारा एक दायरा है ना, और उसमें हम व्यस्त रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्ग कई बार अकेलापन फील करते हैं, उनको लगता है कि अब वो दौर चला गया जब उनकी उनका भी महत्व था या हर चीज के लिए उनको पूछा जाता था, तो कहीं ना कहीं फिर वो खुद को उपेक्षित सा महसूस करने लगते हैं।
0: तो ऐसे में हमारी जो है वो जिम्मेदारी और भी बढ़ बढ़ जाती है, तो हमें ये चाहिए कि जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं उन्हें प्रेरित कर सकते हैं हम कि वो सुबह सैर के लिए जाएं, योगा करें या कुछ भी मेडिटेशन करें ताकि वो उनकी जो मानसिक स्वास्थ्य है उसमें मदद करे।
1: जी बिल्कुल, और घर के बच्चों को भी हम प्रेरित कर सकते हैं कि दादा दादी का हाथ पकड़ कर थोड़ी देर उनके साथ टहल लें, है ना, और किसी पार्क में वो जा सकते हैं, कहीं सैर के लिए निकल सकते हैं, इस तरह से उनका आपसी बॉन्ड जो है वो भी मजबूत होगा।
0: बिल्कुल, और बॉन्ड मजबूत होगा, बच्चे भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनेंगे और उनको लगेगा पता कि हाँ हमारे घर में जो हमारे दादा दादी या नाना नानी हैं वो हमारे घर का कितना महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और हमें उनकी पूरी तरह से देखभाल करनी है। और इसके साथ ही सीमा कई बार क्या होता है ना कि जब बुजुर्ग होते हैं वो इतनी आसानी से चल फिर नहीं पाते हैं, है ना, या उनको कोई काम करने में मुश्किल आती है, तो ऐसे में अगर हम वर्किंग हैं तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो हम ये देख लें कि उनकी दवाइयाँ या उनके खान पान की जो भी चीजें हैं वो उनके रीच में ही हैं या नहीं है, है ना
1: जी, और जो भी जरूरत का सामान है उनके पास हम रख कर जा सकते हैं ताकि हमारे जाने के बाद उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। अच्छा वंदना, एक और चीज की दिन में हम तो निकल जाते हैं, है ना, अगर अपने कामकाजी महिला की अगर बात की तो हम ये भी कर सकते हैं कि एक छोटा सा रेडियो लाकर अपने बुजुर्गों को दे सकते
0: जी,
1: हैं
0: जी, और जहां वो... से वो आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रम सुने हैं ना,
1: बिल्कुल, और गीत संगीत की वो महफिल सजी रहे और जानकारियों का सिलसिला भी जारी रह सके।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो अब आपने क्योंकि गीत संगीत की बात कर दी है तो क्यों ना अपनी सखियों को एक गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल।

0: जी, ये बिल्कुल सही पंक्तियां हैं सीमा की। अपने तो अपने ही होते हैं और माता पिता का स्थान जो है वो हमारे जीवन में कोई भी नहीं ले सकता है।
1: बिल्कुल, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां आजकल देखने को मिल रही हैं, कहीं ना कहीं उस बात पे प्रश्न चिन्ह उठता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सीमा, और उसमें कहीं ना कहीं जो हमारी युवा पीढ़ी है वो भी दोषी है, क्योंकि उनको अपनी आज़ादी चाहिए, वो कोई बंधन में बंधना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में उनको ये लगता है कि अगर माता पिता घर में रह रहे हैं, बुजुर्ग घर में रह रहे हैं, तो हमारी कहीं ना कहीं स्वतंत्रता जो है वो हमारी हनन हो रही है
1: जी। और देखा जाए तो उम्र के इस पड़ाव में हमारे बुजुर्ग एक सहारा चाहते हैं, सहयोग चाहते हैं, प्रेम और सानिध्य वाला वो एक एटमोसफियर चाहते हैं,
0: और साथ ही उन्हें चाहिए कि उनकी गरिमा हम बनाए रखें और हम उन्हें उनका जो उचित मान है जिसको वो डिजर्व करते हैं वो उनको मिले, इससे ज्यादा उनकी कोई डिमांड नहीं है।
1: बिल्कुल, और देखिए ना, पूरी उम्र उन्होंने पूरे आत्मसम्मान के साथ जीवन जिया है, हर चीज को उन्होंने संजोकर रखा है, तो वो तो ये इस चीज का होना ही चाहिए कि उनको उनका सम्मान जो है वो हम दें
0: जी। पर सीमा, ये तो बातें हैं, हम करते भी हैं, लेकिन आज के जो समाज को हम देखें तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जिस तरह से हमारे वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी इस सोच पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है।
1: बिल्कुल, और कहीं ना कहीं हम खरे भी नहीं उतर पाते हैं उनकी उम्मीदों पर, और इसका जीता जाता प्रमाण हमारे वृद्धाश्रम हमारे सामने हैं, जो बुढ़ापे में हमारे बुजुर्गों का सहारा बनते हैं, उन्हें सहयोग करते हैं और जीने की राह की तरफ ले जाते हैं।
0: लेकिन सीमा, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कल को हम भी अपने ही माता पिता के जिस जगह आज वो खड़े हैं, कल को हम खड़े होंगे। तो अगर हम उनकी आज सम्मान नहीं करते हैं, आज हम उनका सहयोग नहीं करते हैं, देखभाल नहीं करते, तो हमारे बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं वो सीख रहे हैं। बिल्कुल, है ना।
1: बिल्कुल, और यही कहना चाहेंगे कि अपनी आने वाली पीढ़ी को उनका सम्मान करना सिखाएं और उन्हें एक अहम हिस्सा माने अपने घर का। हम ये कह सकते हैं कि छत है हमारे बुजुर्ग हमारे घर की।
0: जी बिल्कुल, सीमा से ही कहा, और चार पंक्तियां मैं भी बोलना चाहूंगी जो कहीं मैंने पढ़ी थी। ढलती उम्र की ढलती हुई शाम है वो, ढलती उम्र की ढलती हुई शाम है वो, जिन्होंने हमें संवारा उन्हीं का नाम है वो, घर की नींव है, बरगद का साया है वो, कोई और नहीं हमारे प्यारे माता पिता है वो।
1: जी बिल्कुल
0: जी, और इसी के साथ सीमा मुझे लगता है कि कार्यक्रम हमें संपन्न करना चाहिए।
1: जी बता दें इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता
0: जी डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह, और अब मुझे यानी वंदना रैना
1: और सीमा को दयानुमति, प्यारी सखियो
0: नमस्कार
1: जी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। दोपहर का 1 बजने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीरों पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा, फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: Economic resilience should be promoted.
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: As we intend to do.
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। संयुक्त प्रेस बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश को प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 162 अंक गिरकर 76,327 जबकि निफ्टी 19 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर था। ओस्लो में नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा और डी गुकेश ने क्लासिकल मुकाबला ड्रॉ रहने के बाद बेहद रोमांचक टाई ब्रेकर में जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में प्रज्ञानंद ने टाई ब्रेकर में वेस्ली सो को हराया, गुकेश ने विंसेंट कीमर को पराजित किया। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने कहा कि इस साल मिजोरम, पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मॉनसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या? और बहुत से लोगों ने इसके डिटेल्स भेज दिए हैं। नहीं, इतना आसान नहीं होने वाला है, हम इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे आज। बिल्कुल, आप हैं आज मेरे यानी अनुराधा के संग आज इस सुरीला सफ़र में, और आपके मैसेजेस मुझ तक पहुँच गए हैं। जो मैंने पूछा था कि दिमाग को और दिल को ठंडा रखने के लिए आप क्या करते हैं, दिल और दिमाग को ठंडा करने के लिए हम रेडियो विविध भारती सुनते हैं, विविध भारती के सारे कार्यक्रम सुनते हैं सुबह से रात तक। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि प्यार में दिल एक आज़ाद पंछी की तरह हो जाता है, जो सारे बंधनों को तोड़कर सिर्फ अपने हमसफर की तरफ उड़ना चाहता है। इस एहसास की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जिंदगी के हर बड़े से बड़े दर्द को आधा कर देता है। हमारे श्रोता कहते हैं कि उनकी लिस्ट हमारी लिस्ट से मैच खा गई है, मैच कर गई है, और दो गीत जो है उनके मुताबिक बज गए हैं। बिल्कुल, और बाकी लोग भी आपकी लिस्ट में जो भी गीत है मुझे लिख भेज सकते हैं, हो सकता है हम उसे शामिल कर लें। हमारे श्रोता लिखते हैं कि दिल और दिमाग को ठंडा रखने के लिए गाने सुनते हैं, अच्छे विचार पढ़ते हैं और कुछ नया चीज़ देखते हैं जो हमें दिल को सुकून देता हो और मन को शांति देता हो, और टीवी भी देख लेते हैं, गाने भी सुन लेते हैं, साथ ही साथ रेडियो सुनते हुए रसोई में काम भी हो जाता है। जी हाँ, ये तो बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। और साथ ही विविध भारती के कार्यक्रम और सम्मानीय उद्घोषकों की मधुर आवाज़ दिलो दिमाग में ठंडक दे देती है। थैंक यू सो मच आपके खूबसूरत मैसेजेस के लिए,

चलिए इसके साथ ही बढ़ते हमारे अगले गीत की तरफ। लेकिन ये जो गीत अभी आपने सुना, सागर जैसी आंखों वाली, इसके बारे में क्या कहा जाए? तो बहुत से गीत हैं जिन पर जिनमें आंखों की प्रशंसा की गई है, तो ये सागर जैसी आंखों वाली का मतलब क्या है? इसके अलग अलग मायने हो सकते हैं। आप मुझे लिख भेजें, पढ़ते हैं कि आप कितनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं अभी मैसेजेस में। सागर जैसी आंखों वाली का मतलब या इसको और किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, मुझे बताइए। फिलहाल लिस्ट का ये तीसरा गीत।

बिल्कुल सही कहा, नज़ारे हम क्या देखें, और हम आपके मैसेजेस देख रहे हैं बस, उसके अलावा हमें ठंडक किसी से नहीं मिलती। एकदम सच कहेंगे, एक श्रोता लिखते हैं, दिल को ठंडक देने के लिए हम तो बस छत पर जाकर पक्षियों के लिए पानी रख देते हैं, और जब वो एक एक करके पानी पीते हैं तो लगता है मानो इस गर्मी से हमें ठंडक मिल गई हो, और रात में इतने शीतल चंद्रमा को देख कर मानो दिल भीग जाता है क्योंकि उसकी चांदनी में बड़ी ठंडक होती है। और आपने कहा है कि प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब श्रोताओं का जिन्होंने आज मेरा स्वागत किया इस प्रोग्राम में। तो मैं सबको एक एक मैसेज तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन सबको, सभी सुनने वालों को बहुत बहुत प्यार भरा शुक्रिया। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि दिल का ये छोटा सा एहसास ही तो है जो हमें इंसान बनाए रखता है, कभी कभी एक ठंडी हवा के झोंकी की तरह आता है और मन के सारे कोलाहल को शांत कर देता है। ये किसी पुराने गाने को सुनकर अचानक बचपन की गलियों में लौट जाना चाहता है, या किसी अजनबी के लिए मन में उपजी सहानुभूति का एहसास। हमारे श्रोता लिखते हैं, दिल और दिमाग तो अच्छे गाने सुनकर ठंडे हो जाते हैं, बाकी राजस्थान में इतनी गर्मी है कि एसी की हवा भी ठंडक नहीं देती है। बिल्कुल बिल्कुल, गर्मी का हाल हर जगह इस वक्त बहुत एक्सट्रीम पर है। दिल को ठंडा रखने के लिए अच्छे गाने सुनती हूँ और किस्से कहानियाँ पढ़ती हूँ, और गर्मियों के दिन काफ़ी लंबे हो जाते हैं, ऐसे में गानों और किताबों का संयोजन दिन को खुशनुमा बनाते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि छाछ, शिकंजी, पुदीना सौंफ की शरबत, खीरा ककड़ी, तरबूज, खरबूज, संतरा, ठंडे फल और पेय पदार्थ शरीर और मन को ताजगी और सुकून से भर देते हैं, ताजगी और सुकून से भर देते हैं बिल्कुल, और मधुर संगीत तो है ही, उस पर सोने पर सुहागा। दिल की ठंडक और दिमाग की ठंडक के लिए हर मौसम अजीज अदरक इलायची वाली चाय इन्हें चाहिए, हमारे एक श्रोता लिखते हैं। और साथ ही अदरक इलायची की चाय कई लोगों को लगता है कि गर्मी करती है, पर जिन्हें चाय का प्रेम है, चाय प्रेम में जो पड़े हैं, उनके लिए वो ही ठंडक देती है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि फिलीपीन में अब गर्मी ने बहुत जोर पकड़ा है, काम निपटाकर दोपहर को मुझे नींबू शिकंजी पीना बहुत राहत देता है, और नमकीन लस्सी भी मैं ज़रूर पीता हूँ। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि दिल और दिमाग को शांत व ठंडा रखने के लिए नियमित मेडिटेशन यानी कि ध्यान रखना, ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। गहरी सांस लेने से व्यायाम, पर्याप्त पानी पीना और भरपूर नींद लेना, ये सब प्रभावी तरीके हैं। तनाव, गुस्सा और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए और बस मेंटल कामनेस के लिए कुछ करना चाहिए। साथ ही काफ़ी लंबा मैसेजेस और काफ़ी सारे इन्होंने हमें तरीके बताए हैं अपने आप को ठंडा रखने के लिए मेंटली, इमोशनली। तो ज़रूर ठंडा रखते हैं और एक और ठंडक यहाँ आप तक पहुँचाते हैं इस गीत के द्वारा। लेकिन हाँ, अगले गीत तक जाने से पहले, अभी जो गीत आपने सुना कभी कभी फिल्म का, जिस जोड़ी पर वो फिल्म आया गया था, उस गीत में जो जोड़ी थी उसमें जो एक्ट्रेस है, जो हीरोइन है, जो मेन लीड है, उसका फिल्म में क्या नाम है, उसका कैरेक्टर नेम क्या है, आप मुझे बताएंगे? चलिए तब तक हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

सोनू निगम की आवाज़ में ये गीत संघर्ष फिल्म से आप सुन रहे हैं और जतिन ललित ने इसे संगीत दिया, समीर ने इसे लिखा। सुरीला सफ़र में आज मैं हूं आपके साथ अनुराधा और आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच गए हैं। हमारा एक बहुत ही ख़ास मैसेज मुझे लगता है एक आया है कि इस कार्यक्रम से हम बुज़ुर्ग गाहे बघाए जुड़े हैं। ये मैं नहीं कहता कि ये कार्यक्रम सिर्फ बुज़ुर्गों के लिए ही है, पर चूंकि गाने पुरानी फिल्मों के बजते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इस उम्र में दिल की शांति और दिमाग की ठंडक ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए कार्यक्रम से जुड़ते हैं। अब हमारे दिन दुपट्टा और दिल की आशनाई से बहुत दूर चले गए हैं, इसलिए हमारे लिए कार्यक्रम में दिल से जुड़ना मुमकिन नहीं होता है। मैं इस बात से इत्तफाक नहीं रखती हूँ क्योंकि विविध भारती में हर वर्ग के लिए, हर उम्र वर्ग के लिए अलग अलग प्रोग्राम है, अलग अलग गीत है, अलग अलग थीम्स है जिस पर प्रोग्राम्स चलते हैं। तो आप जुड़े रहें विविध भारती के संग। एक और श्रोता लिखते हैं कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि का जो मन करे वो अपनी कल्पना में वैसे ही उपमा दे सकता है। कभी आंखों की तुलना कभी झील से कभी सागर से, जहां मन डूब सा जाता है और ठहर सा जाता है, बस इसीलिए कभी आंखों को इस तरह से सोच लेता है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि गांव में मिट्टी के घरों में खपरेल छत के नीचे बहुत ठंडक मिलती है। प्रतिदिन गोबर से लीप देने से घर शीतल रहता है। बचपन ऐसे घरों में ही गुजरा है। हमारे श्रोता कहते हैं कि कवि हृदय किसी भी शब्द से कुछ भी गढ़ लेते हैं। सागर जैसी आंखें मतलब सुंदर गहरी आंखें, जिसका फिगर ऑफ स्पीच है यानी कि उपमा। जब कहाँ आंखें छोटी छोटी और सागर अथाह सा होता है, फिर भी कितनी खूबसूरती से दोनों की तुलना कवि कर लेते हैं। सागर जैसी आंखों वाली का हम बहुत सारा मतलब निकाल सकते हैं, जैसे आंखें इतनी गहरी हो जिसका सागर जैसा ही ओर हो ना छोर हो और उसमें गोते लगाने को दिल करता हो। सागर जैसी आंखों पर बहुत से मैसेजेस मुझ तक पहुंचे हैं। सागर जैसी आंखों पर बहुत रिसर्च कर डाली है आप सब ने, एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस मैसेज के लिए, सागर जैसी आंखों के लिए। और मैं ये कहूँगी कि बहुत क्रिएटिविटी झलक रही है हर एक संदेश में, और साथ ही पता चल रहा है कि हमारे जो श्रोता हैं वो कवि से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, इस चीज़ को बताया है, वो बहुत खूबसूरत है। और साथ ही साथ हमने ये पूछा था कि कभी कभी फिल्म में जो इस गीत में, जो गीत हमने आपको सुनवाया, उसमें जो नज़र आती है जोड़ी, उसमें हीरोइन का नाम, एक्ट्रेस का नाम क्या है, तो बहुत से श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, पिंकी कपूर, जी हाँ, और साथ ही विक्की। आपके मैसेजेस हम तक पहुंचाते रहिए और चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

कि एक हो जाएं हम। तो इसी बात पर मुझे याद आ रहा है कि हमारी जो ये लिस्ट है कितनी मेल खाती है, ये भी तो मुझे बताइए। कौन कौन से शब्द आप ढूंढ चुके हैं और उससे जुड़े गीत जो अब तक आपसे मेल खा चुके हैं, आपकी लिस्ट से मेल खा चुके हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। साथ ही ये भी बताना चाहूँगी कि जो हमारे श्रोता हैं हमारे साथ, उनकी लिस्ट गीतों की मैच खाए ना खाए, लेकिन हमारी जो सोचने की जो एक तरीके की सोच है वो ज़रूर मेल खाती है, क्योंकि जब मैं गाना यहाँ पे प्ले करती हूँ उससे पहले ही उसके जवाब आ चुके होते हैं, यानी कि मेरे सवाल पूछने से पहले ही आप उसका जवाब लिख देते हैं। जैसे कि ये गीत जब अभी चल रहा था तो आपने कहा कि दूसरा आदमी फिल्म का नाम है और ऋषि कपूर और राखी पर फिल्माया गया है, लेकिन मैंने ये नहीं पूछा। सवाल को थोड़ा सा बदल देते हैं, क्या कहें, थोड़ी सी पहेली को थोड़ा और ट्रिकी बनाते हैं। तो एक काम करते हैं कि ये दूसरा आदमी फिल्म से जो गीत अभी आपने सुना, इसमें राखी और ऋषि कपूर तो थे ही, लेकिन इसके अलावा इस फिल्म में दो से तीन अभिनेता अभिनेत्री भी थे, तो आप उनके नाम लिख भेजें कि इस फिल्म में ऋषि कपूर और राखी के अलावा और कौन कौन हैं, ये ज़रूर मुझे भेजिए। अभी हम चलते हैं आपके संदेशों पर। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उन्हें याद आ रहा है कि शादी के 15 दिनों बाद ही, जब उनकी शादी हुई थी उसके 15 दिनों के बाद ही उन्हें ट्रेनिंग पर जाना पड़ा था और करीबन 2000 किलोमीटर दूर, और अपनी धर्मपत्नी से बिछड़ना पड़ा था। उस वक्त उन्हें ये इबारत की ये जो सब बातें आज हैं वो कहीं ना कहीं उसे रिलेट कर पा रहे हैं, उसे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, वो बिछड़ना याद आ रहा है। जी हाँ, प्यार में बिछड़ना और उसके बाद फिर से मिलना, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। साथ ही साथ सागर जैसी आँखों से आशय बातों को बिना बोले सामने वाले की आँखों में देख कर उसकी भावनाओं को समझना, ये भी कहा जाता है सागर जैसी आँखों वाली। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में सपनों की बातें भी होंगी तो कुछ बातें हमारी भी। सपने देखना इंसान के मन का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है। ये वो दुनिया है जहां हम अपनी इच्छाओं को बिना किसी रोक टोक के जीते हैं। सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो नींद नहीं आने देते। सपने हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं और हिम्मत देते हैं और उम्मीद जगाते हैं। जी हाँ, बहुत खूबसूरत संदेश लिखा है आपने। तो चलिए हम आते हैं अपने सवाल पर कि जो गीत आपने सुना दूसरा आदमी से, उसमें और कौन से अभिनेता या अभिनेत्री हैं, मुझे बताएं। चलिए चलते हमारे अगले गीत की तरफ।

मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है, त्रिशूल फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में खयाम का संगीत था, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा। और इस गीत के बारे में हमारे श्रोता लिखते हैं कि आप इस गीत से भी कुछ घुमा फिरा कर सवाल पूछ लेंगे तो हम एकदम तैयार हैं, पर हो सकता है कि आपने ऐसा लिखा तो अब हम कुछ और घुमा फिरा कर पूछते हैं, है ना? फिलहाल जो सवाल हमने पूछा था, दूसरा आदमी, उसमें कौन कौन है? कई लोगों ने हेमा मालिनी लिखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सही है, है ना? ऋषि कपूर, नीतू सिंह, राखी, शशि कपूर, परीक्षित साहनी और देवेंद्र वर्मा ये इस फिल्म में दिखाए गए मेन लीड्स में। और साथ ही साथ प्रमिला चोपड़ा ने भी एक गीत गाया है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने लिखा है। और हमारे श्रोताओं की प्रशंसा करना चाहूँगी मैं कि वो सिर्फ गाने पर ध्यान नहीं दे रहे, सवालों पर ध्यान नहीं दे रहे, साथ ही साथ जो फिलर बज रहा है वो क्या है उसकी डिटेल्स भी मुझे भेज रहे हैं, साथ ही साथ गीत के शुरुआत में जो होता है इंट्रो म्यूज़िक जिसे कहा जाता है उसके बारे में भी मुझे लिखकर भेज रहे हैं। और ये दर्शाता है कि आप संगीत से कितने करीब हैं। और विविध भारती को ऐसे श्रोता मिले हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आप संगीत की जानकारियां साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ एक श्रोता लिखते हैं, क्या मौसम है, चल कहीं दूर निकल जाएं। ऐसा मेरे साथ कई बार होता है, घर के पास एक जंगल है अक्सर, और उस जंगल की जानिब निकल जाती हूँ मैं अक्सर। वहाँ चीड़ के ऊँचे दरख्त हैं, हवा के झोंके हैं, वो जब झूमते हैं तो उनकी नुकीली पत्तियाँ साए साए करती है, वो आवाज़ सुकून देती है मन को। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मौसम तो ऐसा है कि घर से बाहर जाने को मन ही नहीं करता और कवि न जाने क्या क्या कह रहा है। विविध भारती के सारे कार्यक्रम हर वर्ग तथा हर उम्र के लोगों के लिए बने हैं, खास करके पोस्ट कोरोना पीरियड के बाद विविध भारती की पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ गई है और श्रोता सीधे तौर पर जुड़ गए हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि सपना देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके कारण अपना भविष्य दांव पर लगाना वो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। और साथ ही साथ हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि उनके घर पर कुछ काम चल रहा है, घर का कुछ काम चल रहा है, यानी कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और गर्मी अपनी चरम सीमा पर है और थोड़ी थोड़ी देर में लगता है कि आराम कर लें। साथ ही साथ आम का पना, छाछ, कभी नींबू पुदीने का शरबत, बस ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करते रहे। और साथ ही साथ ये जो गीत है इनके साथ हम बने रहें। बिल्कुल, चलिए आपको ले चलते हैं अगले गीत की तरफ। और अगला गीत जो अभी आप सुनेंगे, क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सी फिल्म का गीत है? जी हाँ, ये जो गीत है ये कौन सी फिल्म से लिया गया है मुझे बताएं।

रात कली ख्वाब में आई और फिल्म का नाम था बुढ़ा मिल गया। जी हाँ, और बहुत सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, यही फिल्म का नाम है। और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि नवीन निश्चल पर यह फिल्म आया गया, गीत है साथ ही अर्चना है इस फिल्म में, और बिल्कुल सही। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आप बहुत ही आसान सवाल आपने ये पूछा, विविध भारती के श्रोताओं के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन आपसे वादा करते हैं कि अगले प्रोग्राम में और कठिन से कठिन सवाल लेकर आएंगे। लेकिन ये भी है कि जब आपके जवाब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और आपसे एक जुड़ाव महसूस होता है। बहुत ज़्यादा कठिन सवाल लेकर आएंगे तो हो सकता है आपके मैसेजेस कम आए मुझ तक, है ना। साथ ही साथ हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आज आपके द्वारा ये पहला प्रोग्राम प्रस्तुत किया जा रहा है जिसका नाम है सुरीला सफ़र, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रोचक प्रेजेंटेशन की आपने, प्रस्तुतिकरण किया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल मुलाकात होती रहेगी इस शो में आपके साथ। और जितने भी श्रोता हैं जिन्होंने भी हमारे बारे में लिखा है, आज इस प्रोग्राम के बारे में लिखा है, उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। एक श्रोता हमारी लिखती हैं कि हवाओं के नर्म झोंके हर पल तुम्हारा ही एहसास दिलाते हैं, दूरी में सुख भी और विरह भी, जैसे पहाड़ का रिश्ता बादलों से है वैसा ही मेरा रिश्ता तुमसे है। बहुत ही खूबसूरत ये मैसेज है, ये संदेश है। तो चलिए अब इस प्रोग्राम की का जो आखिरी गीत है आप तक पहुंचाते हैं।

बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। और ये गीत आप सुन रहे थे अमानत फिल्म से, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए।

0: नमस्कार, आज की त्रिवेणी में चलने की बातें। साथियों, चलती हुई हवा बंद हो जाए तो बुरा हाल हो जाता है। चलती हुई सड़क पर अगर कोई कार खराब होकर थम जाए तो पूरा ट्रैफिक अस्त व्यस्त हो जाता है, यहाँ तक कि कई बार दुर्घटना भी हो जाती है। और अगर चलती हुई घड़ी रुक जाए तो समय का पता ही नहीं लगता। समय के साथ चलना है तो घड़ी को भी चलते रहना चाहिए, चाहे जीवन की घड़ी हो या शरीर की घड़ी, दोनों का चलते रहना ही अच्छा है। एक लंबी कतार भी धीरे धीरे छोटी हो जाती है, क्योंकि उसमें खड़े लोग लगातार आगे चलते रहते हैं। चलना हमें वर्तमान से जोड़ता है और आने वाले कल की ओर ले जाता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि चलती का नाम ही गाड़ी होता है। चलना जीवन की निशानी है और सक्रियता की पहचान है।
1: बाजू।

चलना एक ऐसी क्रिया है जो शरीर के साथ ही जीवन के लिए भी जरूरी है। चलते रहने से जहाँ शरीर के कलपुर्जे रवा होते हैं, वहीं जीवन में भी गति बनी रहती है। इसी गति के कारण हमें याद रहता है कि हम अचल नहीं हैं। अगर कभी गति की लय टूट जाए, चलना छूट जाए, रास्ते बंद हो, तो जो थम जाता है वो पीछे ही रह जाता है। मगर जो कदम बढ़ाकर चलने की कोशिश करता है तो वो फिर रवानगी में आ जाता है। जीवन अबाध चलता रहे इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आसपास कोई थमा हुआ या अचल दिखे, जो मन से टूट गया हो, तो उसे आश्वासन का हाथ देकर एक नई ऊर्जा दी जाए, उसे भी साथ चलने को प्रेरित किया जाए। रुके हुए को चलने का उत्साह देने से ही तो सबकी ज़िंदगी चलती रहती है।

चलने का मतलब सिर्फ कदम बढ़ाना नहीं होता। कई बार मन ही मन हम कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। जिस तरह नदी की धारा स्वच्छ और निर्मल रहती है क्योंकि वो निरंतर बहती है, रुके हुए पानी में तो काई जम जाती है और वो किसी काम का नहीं रहता। उसी तरह चलना भी एक ऐसी रिसाइकलिंग प्रक्रिया है, मन पर काई नहीं जमने देती बल्कि मन को निर्मल कर विचारों को बड़ी सुंदरता से संवार देती है। चलना एक किस्म की गतिशीलता है जो आचार व्यवहार और विचारों को लगातार खंगालती रहती है। तभी तो कई बार लोग साथ ना मिलने पर भी अकेले ही चल पड़ते हैं और मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। यही तो जीवंतता है।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: ये है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए

0: रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
2: As democratic nations,
0: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमरीका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
3: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
1: जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित BSF मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने

0: के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को, विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मिना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज़्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वॉशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मानसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के कल तक पहुँचने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि, मुन्नार, कुमारकोम, निलाक्कल, कुमिली, सबरीमला, वर्कला और पोनमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी, अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

आज के सदाबहार नगमे की पहली पेशकश अभी आप सुन रहे थे उड़न खटोला फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी ने से लिखा नौशाद का संगीत।

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी को आप सुन रहे थे इस गीत में, तू नहीं और सही फिल्म का नाम था। असद भोपाली ने इसे लिखा और रवि का संगीत।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में ये गीत श्री 420 से आप अभी सुन रहे थे। शैलेंद्र ने इसे लिखा और शंकर जयकिशन की तर्ज थी। अगला गीत सदाबहार नगमे में लीजिए।

0: जब जब फूल खिले, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में साथी नंदा ने साथ दिया था, आनंद बख्शी ने इसे लिखा और कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे

लीजिए सुनिए आज के इस प्रोग्राम सदाबहार नगमे का आखिरी नगमा। मधुमती फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और सखियों की आवाजें। शैलेंद्र ने इसे लिखा, सलिल चौधरी का संगीत।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 3 बजने को है, कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण के लिए आज मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। पहले चरण के तहत प्रदेश की 1293 पंचायतों के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, जो दोपहर बाद 3 बजे तक चला। कुछ पंचायतों में अभी भी मतदान जारी है। ये वो पंचायतें हैं जहां लोग वोट डालने के लिए कतारों में लगे हैं। पंचायत प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी और शाम तक सभी नतीजे घोषित कर दिए जाने की उम्मीद है। इस बार आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाने के लिए मत पेटियों में स्कैनर की सुविधा शुरू की है, जो मतों की गणना तक निगरानी में सहायक सिद्ध होगी। मतगणना में कोई भी गड़बड़ी रोकने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग ने 100% मतदान केंद्रों को CCTV कवरेज से जोड़ा है। इस बीच आज पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। पहली बार मतदान करने वाले युवाओं से लेकर उम्रदराज मतदाताओं तक ने लोकतंत्र के इस महापर्व में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। हमीरपुर जिला की टिक्करी मिन्हासा पंचायत के वार्ड नंबर 1 में समलोग गांव से 100 वर्षीय रेशमो देवी भी वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंची। अधिकांश मतदान केंद्रों पर गर्मी के चलते सुबह के वक्त मतदाताओं की जोरदार भीड़ उमड़ी और लोग कतारों में खड़े होकर मतदान के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। इस बीच कुल्लू जिला में दोपहर बाद 2 बजे तक 60.2% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इस दौरान आनी विकास खंड में लगभग 56%, बंजार में 58%, भुंतर और कुल्लू विकास खंडों में 61%, नग्गर में 60% और निरमंड में 59% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मंडी और हमीरपुर जिलों में 1 बजे तक 50% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया था। शिमला जिला की अधिकांश पंचायतों में भी भारी मतदान की सूचना है। रोहडू और कसुमटी विधानसभा क्षेत्र की कई पंचायतों के

0: मतदान केंद्रों पर अभी भी मतदाता कतारों में वोट डालने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आज हुए पंचायत चुनावों में महिलाओं ने भारी संख्या में मतदान में हिस्सा लिया। ऊना जिला में 1 बजे तक 69.13% महिलाओं और 62.14% पुरुष मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया था। जिले में भीषण गर्मी के बावजूद भारी संख्या में मतदाता लोकतंत्र के इस उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। लाहौल स्पीति जिला में भी भारी मतदान की सूचना है। यहां 11 बजे तक लगभग 32% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कार्यवाहक मुख्य सचिव संजय गुप्ता को इस पद पर नियमित नियुक्ति दे दी है। संजय गुप्ता को मुख्य सचिव के पद पर ये नियमित नियुक्ति उनकी सेवानिवृत्ति से 5 दिन पूर्व दी गई है। वे 31 मई को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। उनकी पदोन्नति संबंधी अधिसूचना आज कार्मिक विभाग द्वारा जारी कर दी गई है। लेह लद्दाख को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाले देश के सबसे लंबे बस रूट पर हिमाचल पथ परिवहन निगम की दिल्ली केलंग लेह बस सेवा आज से एक बार फिर शुरू हो गई है। क्षेत्रीय प्रबंधक केलंग अंशित शर्मा ने कहा कि 990 किलोमीटर लंबा ये रूट स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रहता है। ये बस लाहौल स्पीति के प्रमुख पर्यटन स्थलों जिस्पा, दारचा, बारालाचा और सरचू से होती हुई लेह तक पहुंचेगी।
1: HRTC केलोंग अपना सबसे लंबा रूट दिल्ली केलोंग ले इसको रिज्यूम करने जा रहा है। ये रूट हमारा दिल्ली से स्टार्ट होगा, दिल्ली से 12:20 का समय रहेगा और ये केलोंग पहुंचेगा 5 बजे सुबह। केलोंग से मॉर्निंग 5:30 गाड़ी निकलेगी और वो बालालाचा पास, नकीला पास, तंगलंगला पास होते हुए लेह पहुंचेगी। ये जो पूरा सफर रहेगा दिल्ली से 990 किलोमीटर का रहेगा और इसका किराया जो है वो 1840 रुपये रहेगा। टूरिस्ट काफी मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है। ये पब्लिक के लिए, टूरिस्ट के लिए एक बहुत अच्छा अवसर रहेगा कि वो इस रूट का आनंद लें।
0: लाहौल और स्पीति को जोड़ने वाला लोसर ग्रामफू चंद्रताल सड़क मार्ग हल्के वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया है। लाहौल स्पीति जिला प्रशासन और सीमा सड़क संगठन की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि फिलहाल इस मार्ग को 4x4 हल्के वाहनों की आवाजाही के लिए खोला गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचारों के बाद प्रस्तुत है सिरमौर जिला की चिट्ठी, जिसके लेखक है सतीश शर्मा, वाचक स्वर पूनम शर्मा का।
0: प्रदेश सहित सिरमौर जिले में भी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की हलचल जारी है। जिले में आज पहले चरण का मतदान हुआ। इस बार पंचायत चुनावों के बीच 28 पंचायतों ने अनोखी मिसाल कायम की है। जिले की कुल 273 पंचायतों में से 28 पंचायतें ऐसी हैं जहां प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। इन पंचायतों में केवल एक एक प्रत्याशी के नामांकन होने के चलते चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब इन पंचायतों को प्रदेश सरकार की ओर से विकास कार्यों के लिए 25-25 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। वहीं जिन पंचायतों में BDC सदस्य भी निर्विरोध चुने गए हैं उन्हें 30 लाख रुपए तक की राशि मिलेगी। ऐसे में सिरमौर जिले को कुल मिलाकर करीब 7 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलने जा रही है। जिला सिरमौर के अंतर्गत शिलाई विधानसभा क्षेत्र के शाटी पाशी का चौंतरा और ग्राम पंचायत टटियाना में एक अनोखी और ऐतिहासिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पंचायत प्रतिनिधियों का चयन सर्वसम्मति से पर्ची डालकर लक्की ड्रॉ के माध्यम से किया गया। ये पूरी प्रक्रिया महासू महाराज मंदिर टटियाना के प्रांगण में आयोजित की गई, जहाँ ग्रामीणों की मौजूदगी में महासू महाराज को साक्षी मानकर चयन सम्पन्न हुआ। गांव में ये अनूठी व्यवस्था वर्ष 2020 में शुरू की गई थी, जिसके तहत गांव के 4 बेड़ों यानी परिवार समूहों से नामित प्रतिनिधियों के नाम पर्चियों में डालकर लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाता है। ये लगातार दूसरी बार है जब इसी प्रक्रिया के तहत पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ है। बीते दिनों श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र की पहली थोक फल व सब्जी मंडी का संचालन नौराधार में शुरू हो गया है। मंडी में सब्जियों की खरीद फरोख्त शुरू हो गई है, जिससे क्षेत्र के सैकड़ों किसानों को बड़ी राहत मिली है। अब किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए सोलन, दिल्ली और अन्य दूरदराज की मंडियों का रुख नहीं करना पड़ेगा। इससे उनके परिवहन खर्च में कमी आएगी।

0: और समय की भी बचत होगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम के नाहन बस स्टैंड परिसर में छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने वाली महिलाओं को एकांत और सुविधा प्रदान करने के लिए एक ब्रेस्ट फीडिंग रूम खोला गया है। ये सुविधा प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चालू रहेगी। ये सुविधा लगभग एक महीने पहले जारी सरकारी निर्देशों के बाद प्रदान की गई है। इस पहल का उद्देश्य उन माताओं को होने वाली कठिनाइयों को दूर करना है जिन्हें छोटे बच्चों को यात्रा के दौरान स्तनपान करवाना होता है। जिला सिरमौर के मुख्यालय नाहन की प्रमुख मुस्लिम संस्था अंजुमन इस्लामिया ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। संस्था ने इस संबंध में उपमंडलाधिकारी नाहन के माध्यम से सरकार को एक मांग पत्र भेजा है। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि वे गाय को राष्ट्रीय गौरव के रूप में देखते हैं और इसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अंजुमन इस्लामिया के प्रधान गुल मनव्वर अहमद की ओर से सौंपे गए इस पत्र में मांग की गई है कि देश भर में चल रहे बूचड़खानों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए। सिरमौर जिला के नौराधार तहसील के दूरदराज गांव नानड़ी के वैज्ञानिक डॉक्टर जयपाल शर्मा को डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय में वृक्ष सुधार व आनुवंशिक संसाधन विभाग का विभागाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनके इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। डॉक्टर जयपाल शर्मा पिछले 17 वर्षों से वानिकी व कृषि वानिकी के क्षेत्र में शिक्षण अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उन्हें अल्पावधि वृक्ष प्रजातियों विशेष रूप से स्थानीय भाषा में बेस और ब्यूंस कहलाने वाले विलो हाइब्रिड के सुधार मूल्यांकन और विकास में विशेष विशेषज्ञता प्राप्त है। हिमाचल के निचले इलाकों में लगातार बढ़ते तापमान के साथ ही घुमंतू भेड़पालकों ने एक बार फिर पहाड़ों की ओर अपना पारंपरिक सफर शुरू कर दिया है। हर वर्ष की तरह इस बार भी गद्दी समुदाय के चरवाहे अपनी भेड़ बकरियों के साथ मैदानी क्षेत्रों से ऊंचे पहाड़ी इलाकों की ओर पलायन कर रहे हैं। चिलचिलाती गर्मी, बारिश और कड़ाके की ठंड के बीच खुले आसमान के नीचे जीवन बिताने वाले ये भेड़ पालक आज भी अपनी सदियों पुरानी परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। गर्मियों के मौसम में अधिकांश चरवाहे नारकंडा, किन्नौर और डोडरा क्वार के जंगलों और ऊंची पहाड़ियों में डेरा डालते हैं।
1: FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दिन के 3:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।
2: लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं ना कि किसी भी अच्छे बदलाव की शुरुआत दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं से होती है। अगर हम किसी से अच्छा करवाना चाहते हैं तो हमें खुद अच्छा करने के बारे में पहले सोचना चाहिए।
3: बिल्कुल।
2: यदि हर व्यक्ति अपने व्यवहार, सोच और कर्म को सुधारने का प्रयास करे तो पूरा समाज अपने आप बेहतर बन सकता है। इसलिए कहा जाता है अच्छे काम की शुरुआत खुद से करें। यानी अगर कुछ कोई किसी के अंदर क्वालिटी है, गुण है, वो अच्छा करना चाहता है तो आप उसको एक अवसर जरूर दें, उसको देखें कि वो कितना अच्छा कर सकता है।
3: बिल्कुल। ये तो आपने कही मंजरी बात की दूसरा आप पर नजर लगाए हुए है कि भाई आपको हम मौका दें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्वयं में भी बदलाव करना बहुत जरूरी है। अभी क्यों जरूरी है? क्योंकि हम समाज का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और समाज अनेक व्यक्तियों से मिलकर बनता है। यदि हम अच्छे हैं तो परिवार अच्छा होगा, परिवार अच्छा है तो समाज अच्छा होगा और देश अच्छा बनेगा। अक्सर क्या होता है, दूसरों की गलतियां हम गिनाते रहते हैं लेकिन अपनी कमियों पर हम ध्यान नहीं देते। जबकि सच्चाई ये होती है कि सुधार की पहली सीढ़ी क्या है,
2: आत्मसुधार है। और देखिए, हम चाहते हैं ना कि लोग समय का सम्मान करें, तो पहले हमें स्वयं समय का पालन करना चाहिए। और यदि हम चाहते हैं कि बच्चे संस्कारी बने तो हमें अपने व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। केवल उपदेश देने से बदलाव नहीं आता है बल्कि अपने कर्मों से प्रेरणा देने से बदलाव आता है। छोटी शुरुआत उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। यानी अच्छे काम के लिए हमेशा बड़े मंच या बहुत धन की आवश्यकता नहीं होती है। छोटी छोटी आदतों से ही समाज में बड़ा परिवर्तन हम ला सकते हैं। जैसे कि सड़क पर कचरा ना फैलाना या हमारे आसपास गली मोहल्लों में हम कचरा ना डालें, ज़रूरतमंद की सहायता करें, बुज़ुर्गों का सम्मान करें और पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं और क्या कहते हैं कि जो हमारे पशु पक्षी हैं उनके लिए हम भोजन और पानी की व्यवस्था करें। इस तरह के हम छोटे छोटे काम खुद भी कर सकते हैं।
3: अपने घर में हम पानी और बिजली को बचाएं। कितना पानी का नुकसान करते हैं हम लोग। पानी चलता रहता है नलों से लगातार। आपने देखा होगा छोटे शहरों में तो लोग पानी से घर धोते हैं और धोते ही जाते हैं, बाल्टियों भर भर के बाल्टियां बाहर फेंक देते हैं। तो ये पानी का इतना दुरुपयोग।

0: काम छोटे जरूर लगते हैं मंजरी, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है हमारे जीवन में। जब व्यक्ति अच्छा काम करता है तो दूसरे लोग उसे बिल्कुल प्रेरित होते हैं।
1: बिल्कुल, और हमारे साथी भी लिखते हैं मंदाकिनी जी कि हमारी आदत होती है कि अक्सर हम सबको सलाह देते रहते हैं, दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, लेकिन खुद ऐसा करने से झिझकते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो रास्ता चलते रुक कर किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं। अगर सब ये सोचें कि कोई करे या नहीं, मुझे तो ज़रूरतमंदों की सहायता करनी ही है, और किसी को कहने से बेहतर मैं खुद वो काम करूँ, तो हमें देख कर हो सकता है दूसरे लोगों की सोच में भी बदलाव आए। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम किसी के लिए अपने लिए अच्छा चाहते हैं तो दूसरे के लिए भी आप अच्छा करना सोचिए, आपके आपके लिए खुद अच्छा होने ही लगेगा, वो आपको आपके कर्मों का फल आपको खुद मिलेगा, लेकिन आप अच्छा तो करने की सोचिए।
0: बिल्कुल, कहते हैं कि एक राजा कैसा व्यवहार चाहता है जैसा दूसरा राजा चाहता है, यानी एक राजा को दूसरे राजा से पहले अच्छा व्यवहार करना होगा, तभी तो दूसरा राजा पहले राजा से अच्छा व्यवहार करेगा। तो वही बात हमारे सामने होती है कि हम जब दूसरे के काम को प्रेरित करेंगे, अच्छा करेंगे, तो हमें लगेगा कि हम कुछ सीख रहे हैं। जैसे एक श्रोता लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है, बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। यहाँ कुछ व्यवहारिक तरीके हैं जिन्हें आप खुद को बेहतर बनाकर अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हैं। छोटे कदमों से शुरुआत करें बहुत बड़ा लक्ष्य लेने के बजाय, रोजमर्रा के छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दें, जैसे रोज 30 मिनट पढ़ना या नियम व्यायाम करना सीखें, स्वयं की आदतों का विश्लेषण करें, अपनी दिनचर्या में से बुरी आदतें जैसे देर तक सोना, मोबाइल का बहुत उपयोग, इसको पहचानें, सुधारें, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। अच्छे काम के लिए सही सोच और दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है। खुद से सकारात्मक वादे करें, ज्ञान बढ़ाएं, खुद को शिक्षित करें और अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने का प्रयास करें, अब जिससे आप दूसरों की बेहतर मदद कर सकें। इसके अलावा हर दिन कुछ सकारात्मक सीखने का प्रयास करें, आभार प्रकट करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छे समय का इंतजार न करें, जो आज आपके पास समय है वहीं से मेहनत करना शुरू कर दें।
1: बहुत सुंदर सी बात लिखी है इन्होंने।
0: और मंजरी, अभी हमें एक छोटा सा अंतराल लेना है, फिर मिलते हैं।

0: तोवी संतराल के बाद सभी सखियों और सखाओं का स्वागत है।
1: और देखिए एक संदेश है, मंदाकिनी जी लिखते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है कि लोग उपदेश से नहीं उदाहरण से सीखते हैं। जैसे सभी अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे मोबाइल का उपयोग बहुत कम करें, तो सबसे पहले अभिभावकों को स्वयं मोबाइल का उपयोग कम करना होगा। हमारा आचरण ही सामने वाले को संदेश देता है। हर इंसान दूसरों को बदलने का प्रयास करता है, जबकि पहली शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए। बदलाव शिकायत करने से नहीं बल्कि शुरुआत करने से आता है, और अच्छे कार्य की शुरुआत स्वयं से की जाए तो बेहतर होता है। गांधी जी ने कहा था कि जो बदलाव दुनिया में देखना चाहते हो तो सबसे पहले वही बदलाव खुद में लाना होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत सबसे पहले स्वयं से करें। जैसे एक दीपक पहले स्वयं जलता है तभी दूसरों को रोशनी देता है, उसी प्रकार व्यक्ति पहले अपने भीतर अच्छाई लाता है तब कहीं अच्छाई समाज में फैलती है। कुछ उदाहरण है, जैसे यदि हम चाहते हैं कि लोग सड़क पर कचरा न फैलाएं तो सबसे पहले हमें स्वयं कचरा डस्टबिन में डालना होगा। दूसरा, यदि हम चाहते हैं कि परिवार में प्रेम और सम्मान बना रहे तो पहले हमें अपने व्यवहार में मधुरता लानी होगी। और तीसरा ये कि अगर हम दूसरों से समय की पाबंदी की अपेक्षा करते हैं तो पहले हमें स्वयं समय का सम्मान करना होगा।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से ही करना बहुत अच्छा विषय है। जब हम स्वयं करेंगे तो बाकी लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। जैसे कि हम मोबाइल लैपटॉप पर जब खाली होते हैं बैठ जाते हैं और बच्चों को मना करते हैं। वास्तव में हम तो काम के कारण बैठते हैं, बच्चे तो छुट्टियां हैं, क्या करें। कितनी भी अन्य गतिविधियों में व्यस्त रखें पर खाली होती है वे मोबाइल चलाते हैं, उनको मना करते हैं और समझाते हैं। बड़े बच्चे तो समझ जाते पर छोटे उनके मन में यही रहता है कि हम चला रहे हैं तो वे नहीं। फिर उनका समय तय किया है, बस इतने ही समय। ये तो एक छोटी सी बात है, और भी बहुत कुछ अच्छी बात हम शुरू कर सकते हैं। भाई बिल्कुल सही बात है, उदाहरण तो आपको ही देना होगा। आप कहिए कि देखो हम एक घंटे चलाएंगे,
0: बिल्कुल
1: तुम लोग छोटे हो तुम लोग आधे घंटे चलाओगे। तो इस तरह उनका टाइम थोड़ा कम कीजिए।
0: जी बिल्कुल सही कहा, ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है मोबाइल और बच्चे। तो बच्चे हाथ में मोबाइल लेकर दिन भर घूमते हैं,
1: अपनी मम्मी से बच्चे कंपटीशन करते हैं। हाँ। मम्मी तुमने एक घंटे चलाया मैं भी चलाऊंगा।
0: हाँ।
1: तो वो फिर गलत है। या फिर आप अपने कान बगल में रख के सो रहे हैं तो बच्चे वही मोबाइल पकड़ के सोने लग जाते हैं। हमें चाहिए
0: वो सीखते हैं ना, जैसा

0: आप बताएंगे वैसा अनुसरण तो बच्चे करेंगे ना,
1: बिल्कुल
0: तो हमें अपना पहले खुद ही उदाहरण पेश करना होगा। कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, करके तो देखिए। कहते भी हैं कि रात के सोने से पहले 2 घंटे पहले आप मोबाइल बंद कर दीजिए, ऐसा कहते हैं, और सुबह उठने के 2 घंटे बाद ही मोबाइल देखिए, तो आप देखिए आपके जीवन में धीरे धीरे आपके विचारों में सुख शांति आने
1: बिल्कुल
0: लग जाती है। क्योंकि उठते ही जब हम खोलते हैं तो हजारों नकारात्मक बातें, नकारात्मक समाचार मोबाइल में दिखते हैं और हमारे दिमाग में घूमते हैं कि अरे ऐसा है, तो हम नकारात्मक होते चले जाते हैं। तो शुरुआत खुद से करें अच्छे काम की, कि आप कोई किताब पढ़ें, बच्चों को किताब पढ़ने का मौका दें। एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन में इतनी सकारात्मक बदलाव लाना है कि अच्छे काम की शुरुआत स्वयं से होनी चाहिए। जब हम अपने आप को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते हैं तो लोग हमारा अनुसरण करते हैं। जब हम अपनी आदतों, अपने विचारों में सकारात्मकता लाते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण भी बदलता है। दूसरों से अपेक्षा रखने से बेहतर है स्वयं से अपेक्षा रखें। कहा भी गया है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, तो जे आच रही तेनर न घनेरे।
1: क्या बात है। और एक लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से, ये बड़ा प्रेरणादायी विचार है। यदि आप समाज, परिवार या अपने आप में, जीवन में कोई सकारात्मक प्रभावशाली बदलाव लाना चाहते हो तो उसकी शुरुआत खुद से ही होनी चाहिए। अगर हम दूसरों का इंतज़ार किए बगैर खुद पहल करते हैं तो बड़े से बड़ा काम भी संभव हो जाता है। बस और कुछ नहीं, शरीर रूपी इंजन को एक किक की ज़रूरत होती है। क्या बात
0: क्या
1: है,
0: बात
1: बहुत सुंदर बात लिखी है।
0: बिल्कुल।
1: तो हमारे सभी साथियों ने बहुत अच्छे अच्छे संदेश लिखकर भेजे हैं, तो उन्हें धन्यवाद कहते हुए एक गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो देखिए भाई, ये गाना कितना
1: हाँ
0: सटीक है ना मंदाकिनी जी कि
1: बिल्कुल
0: हम लोगों की सूरत एक जैसी नहीं मिलती, कुछ तो बदलाव है ना।
1: बिल्कुल है।
0: तो ये सफल, आप हंस रहे ना इसी बात पर कि मंजरी ने बस छेड़ दी बात, है ना।
1: और ये
0: तो
1: ऐसी बातें हैं जिस पर घंटों चर्चा करें तो भी कम पड़ जाती हैं, क्योंकि जिस
0: जी
1: खूबसूरती से गीतकार ने बात कही है उस पर घंटों चर्चा की जा सकती
0: बिल्कुल।
1: है
0: तो
1: ना।
0: चलिए हम अपने अगले विषय की ओर बढ़ते हैं।
1: हाँ
0: हमारी सफल महिला उद्यमी है राधिका अग्रवाल। राधिका अग्रवाल भारत के उन प्रेरणादायक महिला उद्यमियों में गिनी जाती हैं जिन्होंने भारतीय ई कॉमर्स जगत में अपनी अलग पहचान बनाई। वे shopclues.com की सह संस्थापक को फाउंडर है। उनकी सफलता इस बात का उदाहरण है कि दृढ़ संकल्प, नई सोच और मेहनत से महिलाएं व्यापार और तकनीकी की दुनिया में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकती हैं।
1: तो राधिका गई की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक इंटरनेट उद्यमी हैं और यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश करने वाली भारत की पहली महिला हैं। और ये सिलिकॉन वैली में 2011 में स्थापित ऑनलाइन मार्केट प्लेस शॉप क्लूज की सह संस्थापक हैं। वर्तमान में ये कंपनी की मुख्य व्यवसाय अधिकारी के रूप में भी कार्यरत हैं।
0: जी, और राधिका का जन्म एक शिक्षित और अनुशासित परिवार में हुआ। उनके पिता भारतीय सेना में अधिकारी थे, इसलिए बचपन से ही उन्होंने अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास सीखा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत में पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गईं। हाँ
1: बिल्कुल, उन्होंने अमेरिका की प्रसिद्ध वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी इन सेंट लुइस से एमबीए की डिग्री ली और पढ़ाई के दौरान उन्होंने मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट और उपभोक्ता व्यवहार को गहराई से समझा भी, और यही ज्ञान आगे चलकर उनके व्यवसाय में बहुत काम भी आया।
0: जी, और व्यवसाय शुरू करने से पहले राधिका अग्रवाल ने कई बड़ी कंपनियों में काम किया। उन्होंने फैशन और रिटेल क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में अनुभव प्राप्त किया। इस दौरान उन्हें ये समझ आया कि ऑनलाइन व्यापार का भविष्य बहुत बड़ा है और भारत में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं।
1: हाँ, और अगर 2011 की बात करें ना मंजरी, तो राधिका अग्रवाल ने अपने पति संजय सेठी और सहयोगी संदीप अग्रवाल के साथ शॉप क्लूज की स्थापना की, और उस समय भारत में ऑनलाइन शॉपिंग का बाजार तेजी से बढ़ ही रहा था। लेकिन छोटे दुकानदारों और स्थानीय व्यापारियों को ऑनलाइन मंच नहीं मिल पा रहा था। शॉप क्लूज ने इन्हीं छोटे व्यापारियों को इंटरनेट के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचाने का काम भी किया।
0: जी, और कंपनी की खासियत यह थी कि उसने छोटे शहरों और मध्यम वर्ग के ग्राहकों पर विशेष ध्यान दिया। यहां ग्राहकों को कम कीमत पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद उपलब्ध कराए जाते थे। धीरे धीरे शॉप क्लूज भारत की प्रमुख ई कॉमर्स कंपनियों में शामिल हो गई। कंपनी ने लाखों ग्राहकों और हजारों व्यापारियों को जोड़ा। एक समय ऐसा आया जब शॉप क्लूज का मूल्यांकन $1 बिलियन से अधिक हो गया और ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहलाने लगी।
1: और राधिका अग्रवाल की जब हम बात कर रहे हैं तो भारत की पहली महिला उद्यमों में वो शामिल हुई जिन्होंने यूनिकॉर्न स्टार्टअप खड़ा किया, और ये उपलब्धि भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा का कारण भी बनी। और राधिका अग्रवाल की जब हम बात कर रहे हैं तो उनकी यात्रा इतनी आसान नहीं थी मंजरी। उन्हें बड़े प्रतिस्पर्धियों से मुकाबला करना पड़ा। शुरुआत में निवेश जुटाना, ग्राहकों का विश्वास जीतना और व्यापार को तेजी से बढ़ाना उनकी बड़ी चुनौतियों में शामिल भी था। लेकिन हाँ, उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने नई रणनीतियों की, ग्राहक सेवा और सस्ती कीमतों के माध्यम से अपनी कंपनी को बहुत आगे तक बढ़ाया।
0: बिल्कुल, और राधिका अग्रवाल हमेशा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का और अपने सपनों को पीछा करने के लिए प्रेरित करती थी। उनका मानना है कि महिलाएं यदि आत्मविश्वास और धैर्य के साथ काम करें तो किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। और वे ये भी कहती थी कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर असफलता हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती है। और राधिका अग्रवाल को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया है। उन्होंने भारत की प्रभावशाली महिला उद्यमियों को में गिना जाता है। कई बिजनेस पत्रिकाओं और मंचों ने उन्हें प्रेरणादायक महिला नेतृत्वकर्ता के रूप में सराहा है। और राधिका अग्रवाल को कई पुरस्कार भी मिले, जैसे आउटलुक बिजनेस अवार्ड में आउटलुक बिजनेस वुमेन ऑफ वर्थ 2016 में, और एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2016 में, CMO एशिया अवार्ड 2016 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी का पुरस्कार प्राप्त किया आपने, और CEO इंडिया अवार्ड्स 2016 में CEO ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। एसोचैम का वर्ष सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार 2017 में। वे महिलाओं को उद्यमिता और नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। और राधिका अग्रवाल की कहानी मेहनत, नवाचार और आत्मविश्वास की कहानी है। उन्होंने ये साबित किया कि यदि सोच बड़ी हो और इरादे मजबूत हों तो कोई भी व्यक्ति नई ऊंचाइयों तक पहुँच सकता है। वे आज भारत की युवा पीढ़ी, विशेषकर महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि वे आज भी हमारी प्रेरणा का स्रोत हैं। चलिए एक छोटा सा ये संदेश सुन लेते हैं।
2: अमर गीतों की रचयिता
1: कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफ़ेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीज़ें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
1: तो मंजरी अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

कसम से कहते हैं तुमसे हाँ।

कुछ कहो भी हमसे लो ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे बन के न चलिए तन के न चलिए, कहते हैं तुमसे हाँ।

0: हाँ तो मंजरी, हम भी आपसे यही कहते हैं, देखो कसम से अगर तुमने भी किसी की बात को मान लिया और हमसे झगड़ा कर लिया तो हाथ मलोगी दोस्ती से, देख लेना।
1: लेकिन आपको पता है कि मंजरी ऐसी है नहीं,
0: वो कान का कच्चा होना बहुत गलत बात है,
1: वो कान की कच्ची है भी नहीं। और बहुत से लोगों में ऐसी आदत होती है कि वो अपना प्रभाव बनाने के लिए, दूसरे की उभरती हुई प्रतिभा को दबाने के लिए, वो अगले सामने वाले से ऐसी बातें कर देते हैं कि कान की कच्ची वाली आदत हो जाती है। फिर वो उससे नहीं पूछता है कि भाई ये वाकई में ऐसी है या नहीं, वो जानने की कोशिश नहीं करता, वो उसकी कहने पर ही चलते
0: विश्वास कर लेते।
1: तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए।
0: ऐसे कान के कच्चे लोग बहुत हमारे आसपास होते हैं कि जिनको कुछ भी कह दो वो मान लेते हैं, उसका सही गलत की गणना उनको आती ही नहीं है
1: जी। और कान के कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है कि कान का कच्चा होना का अर्थ है कि बिना सोचे समझे किसी की बात पर जल्दी विश्वास कर लेना या सुनी सुनाई बातों में आ जाना। तो मंदाकिनी जी, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी के बारे में जानना है तो आप उसी से बात कर लीजिए ना, वो कैसा है आप अपनी नजरों से उसको परखने की कोशिश कीजिए ना। कोई दूसरा कुछ कहता है ये ऐसी वैसी, तो क्यों आप उसके उस पे जाते हैं।
0: बिल्कुल। और दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो बैक बाइटिंग करते हैं, लेकिन अगर आपको किसी की सच्चाई जानी तो पहले तो आपके अंदर कुव्वत होनी चाहिए, वो दमगम
1: बिल्कुल,
0: कि आप खुद अच्छे बने, है ना, खरा सोना, फिर आप दूसरे को परखें। और जब आप परखते हैं तो आपकी नजरों में वो पारखीपना होना चाहिए कि आप उसको परख ले अपनी नजरों से, दूसरों की बातों से, बैक बाइटिंग से, दूसरों की हिंट मिलने पर आप अगर कोई धारणा बनाते हैं किसी के प्रति, ये बहुत गलत बात है।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: तो एक श्रोता लिखते हैं कि कान का कच्चा होना अर्थ सुनी सुनाई बातों पर तुरंत विश्वास कर लेना या बिना सोचे समझे किसी की बात मान लेना। ये वीडियो कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ और उदाहरण समझाता है कि कान का कच्चा होना का अर्थ है कि आप, अच्छा कुछ लिखते हैं ये कि रवि पर भरोसा मत करना, वो बहुत कान का कच्चा है, कोई भी उसे भड़का सकता है। सीता सबकी बातों में मत जाओ, कान का कच्चा होना अच्छी बात नहीं है। और ऐसे व्यक्ति जो स्वयं अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, उन्हें अक्सर कान का कच्चा कहा जाता है
1: जी। और एक लिखते हैं कि बिना सोचे समझे या बिना सच्चाई जाने दूसरों की बातों पर तुरंत विश्वास कर लेना, जो व्यक्ति सुनी सुनाई बातों में जल्दी आ जाता है उसे कान का कच्चा कहा जाता है। समझदार व्यक्ति को कभी भी कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, बल्कि सच का पता लगाना चाहिए। कान के कच्चे होने की आदत से लोग अक्सर नुकसान में रहते हैं। और वाकई में जो कान के कच्चे होते हैं तो उनका अपना व्यक्तित्व भी उस तरह से खराब होता है कि वो इस तरह से अगर करते हैं तो उनके व्यक्तित्व पर भी असर पड़ता है।
0: बिल्कुल पड़ता
1: है। तो सबसे पहले तो इंसान को, मंदाकिनी जी, अपने व्यक्तित्व को बचा के रखने की सोचना चाहिए कि नहीं, मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहूंगी, कोई मुझे कुछ भी कहे मैं डिगा नहीं सकते, जिसे कहते हैं।
0: अपने किरदार को हमें मजबूत बनाना चाहिए, ना कि उथल पुथल वाला इधर इधर ढुल गए उधर ढुल गए,
1: थाली का बैंगन जिसे कहते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए।
0: उधर उसकी बात सुन ली, उधर उसकी बात मान ली, तो आपका अपना व्यक्तित्व क्या रहा?
1: बिल्कुल
0: कुछ नहीं रहा। तो आपका जो व्यक्तित्व में एक खूबी होनी चाहिए जो देखते ही लोग आपकी तारीफ करें कि नहीं।

0: ये व्यक्ति कान का कच्चा नहीं है,
1: जी,
0: ये व्यक्ति अटल है, मजबूत है, और ये किसी की बातों में तुरंत नहीं आता, तब जाकर आपका कोई व्यक्तित्व बनता है। एक श्रोता लिखते हैं कि कान का कच्चा होने का अर्थ बिना सोचे समझे किसी की बात पर यकीन कर लेना। ये हमारी जिंदगी में बहुत लोग कहते हैं और अक्सर किसी न किसी मुसीबत में फंस जाते हैं। अपना
1: वो पूरा समय अलग भ्रम में जीता है, हर कही सुनी बात पर भरोसा करता है और खुद भरोसे लायक रहता नहीं, क्योंकि जब आप हर किसी की बात पर बस यूं ही भरोसा कर लेते हैं बस इसलिए कि आपकी जान पहचान है, तो आप कोई भी अपने इशारों पर भी नचा सकता है। इसलिए कान का कच्चा होना व्यक्तित्व को धूमिल कर देता है। जबकि एक इंसान जो कान का कच्चा नहीं है वो अपने करीबी की बातों को भी जांचे परखे बिना यूं ही विश्वास करके कदम नहीं उठाता और अपने काम का पक्का होता है, जिससे कोई पीठ पीछे भी उसके किसी निर्णय पर उंगली नहीं उठा सकता। तो कान का कच्चा नहीं, काम का पक्का होना चाहिए। हमारी सखी ने बहुत अच्छी सी बात लिखकर भेजी है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा। वहीं एक लिखते हैं हमारे श्रोता कि कई बार दूसरों की चुगली या अफवाहों पर आंख मूंद कर भरोसा करने से आपसी रिश्तों में दरार या विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। दोस्ती में दरार या परिवार में कलह का मुख्य कारण यही कान का कच्चा होना भी होता है।
1: बिल्कुल सही बात लिखी है। और एक लिखे हैं कि कान के कच्चों से दूर रहना ही बेहतर है, आपके संबंध खराब करते हैं वे उनके लिए बहुत मित्र नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो ना, आप समूह में सबके साथ में है तो कौन कान का कच्चा है ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। और एक लिखते हैं कि कान का कच्चा वह व्यक्ति जो बातें इधर से उधर करता हो, ऐसे व्यक्ति आपकी ज़रूरत की बात गोपनीयता खराब कर देते, यानी आपकी ज़रूरत की बात को भी वो किनारे करके अपना मतलब निकालना कहना चाहिए।
0: मतलब ऐसे लोग जो होते हैं जो बातों की होती है दो दोस्तों के बीच में उसको भी वो हटा देते हैं।
1: मतलब दोस्ती तो को किनारे कर देते हैं और अपना मतलब निकालने के लिए अपने को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए दूसरे के व्यक्तित्व को गिरा देते हैं। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए।
0: बिल्कुल। वहीं एक श्रोता

0: बहुत अच्छी बात लिखी कि कान का कच्चा यानी बिना किसी सबूत के दूसरों की बातों पर भरोसा कर लेना। आज के समय में ये मुहावरा हर किसी को समझने की जरूरत है ताकि गलत फहमियों से बचा जा सके। विविध भारती पर हमेशा ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मजेदार विषय सुनने को मिलते हैं, इसके लिए ये बहुत बहुत बधाई देते
1: जी, सबको धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छे से संदेश

0: जन्मवासे की ओर, जो हमारे यादों से जुड़े हुए किस्से। और जन्मवासे में देखिए ऐसा होता था ना कि लड़की वाले जो थे लड़के वालों को रुकने का एक स्थान देते थे, वहाँ ठहरते थे सब लोग, और उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम रखा जाता था, घड़े का पानी उस समय रखा जाता था। आज तो चलो आप ठंडा पानी की बोतलें रख दो, लेकिन उस समय घड़ा ही रखा जाता था। शरबत के पाउचेस पैकेट रख दिए जाते थे कि चीनी और नींबू रख दिया गया कि शरबत घोल के बनाएंगे। खरबूजा तरबूज इन समय में ये सब रखा दिए जाते थे, मौसमी फल, बर्फ रखी है। तो कुछ बराती लड़के लड़कियां बहुत शैतान टाइप के होते थे, तो वो जा करके उसमें से नींबू गायब कर दे तो चीनी गायब कर दे। अब जब वो बना रहे हैं आके लड़की वाले बेचारे, तो वो चीज़ें कम पड़ गई हैं, तो अब उनको कह भी रहे हैं कि इसमें तो खट्टा नहीं है, इसमें नींबू और डालिए। बेचारे के इतना तो नींबू लाए थे, कहाँ चला गया। तो मतलब इस तरह के किस्से जन्मवासे में अक्सर होते थे।
1: बिल्कुल।
0: और
1: ये एक रोचक बनाए रखते हैं और बड़ा अच्छा माहौल होता है शादी विवाह में,
0: बहुत अच्छा माहौल होता था,
1: छुटपुट मजाक होती है।
0: और वो चारपाई गद्दे नहीं पड़े तो शीशा नहीं है तो कंघा, और शैम्पू नहीं है तो बालों में तेल लगाना नहीं है,
1: सादगी से वो जन्मवासा होता था, दिखावटी नहीं होता।
0: मतलब अगर चीजें कोई भी कम हो गई तो नुक्स निकालने वाले भी होते थे, और बड़ा झगड़ा भी होता था कि हमारे लिए तो चारपाई नहीं रखी, हमारे लिए तो गद्दा नहीं रखा। और जब वो मिठाई की नाश्ते के लिए मिठाई के डब्बे दिए जाते थे तो सब लोग खोल के देख रहे हैं कि अरे इसमें तो 5 पीस है, इसमें तो 6 पीस है, ये ज्यादा कैसे हुआ या कम कैसे हुआ। इस तरह की भी नोकझोंक आपस में ही होने लग जाती थी। तो उसका भुगतान जो कहते हैं ना वो लड़की वालों को करना पड़ता
1: थे। हाँ, बिल्कुल सही कहा।
0: और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारे यहाँ बारात को पहले गांव से बाहर बड़े आम के बाग में ठहराया जाता था, वहीं जलपान कराया जाता था, फिर गांव के बीच में एक बड़ा हॉल होता था, उसमें बारात को ठहराया जाता था और उसको जन्मवासा कहते थे। तो मंदाकिनी जी बड़ी यादें हैं सबकी।
1: बिल्कुल, आपने कहा और ये याद आते ही पुराने वो दिन याद आ गए जब शादी विवाह का मौसम होता था। मुझे याद है हम लोग बच्चे होते थे और हम अपने पापाओं की जिद करते थे, पापा वहाँ लेके जाओ जन्मवासी में कौन कौन आया है, और वो हमें लेके जाते थे। तब इस तरह की शरारतें हम समझते भी थे और कई बार हंसते भी थे कि अरे कैसी कैसी बातें यहाँ होती हैं, लेकिन जो व्यवस्था होती थी वो बहुत अच्छी होती थी।
0: वो अपने हिसाब से देखिए सब लोग अच्छा ही करते थे
1: और मन से व्यवस्था
0: मन से करते थे, और जिसको कमी निकालना है वो तो निकालता ही है। और भाई एक बड़ा मजेदार इसमें होता था कि भाई दूल्हे का जीजा जी रूठ गए, दूल्हे के फूफा जी रूठ गए, दोस्त रूठ गए, इस तरह के भी उनको सुविधाएं
1: मनाने की जो बातें भी बहुत होती थी, कोई नाराज हो जाता था उसको मनाया जाता था।
0: और खाने पीने की भी कोई चीज़ व्यवस्था नहीं है तो उसमें भी जन्मवासे में रूठे पड़े कि हमें तो ठीक से मान मनोवल नहीं किया गया, बुलाया नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें होती थी।
1: बिल्कुल सही कहा, इसलिए फूफाओं को मामाओं को बड़ा संभाल कर रखना पड़ता था क्योंकि वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते थे।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि पुराने समय में बारात के रुकने के लिए किसी बड़े भवन या स्कूल आदि में व्यवस्था की जाती थी जिसे जन्मवासा कहते हैं। यहाँ पर वधु पक्ष दूल्हे और बारात को आदरपूर्वक मुख्य विवाह स्थल मंडवे पर चलने का न्योता देते हैं। वधु पक्ष की महिलाएं और सखियां ढोल मंजीरे के साथ जन्मवासे के बाहर या आंगन में जुटती हैं और वे दूल्हे समधी दूल्हे के पिता फूफा और जीजा का नाम लेकर विशेष रूप से तैयार किए गए गाली गीत गाती हैं। इन गीतों में समधन के सीधेपन या बरातियों के खाने पीने की आदतों पर बेहद मीठे अंदाज में मजाक उड़ाया जाता है जिसका वर पक्ष कभी बुरा नहीं मानता था। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी इन गीतों से वो लोग बुरा भी मान जाते थे क्योंकि उस समय देखा था ऐसे होता था, थोड़ा मजा आता था, लेकिन वो गाने बहुत अच्छे थे।
1: ये गीत हमारे शादी विवाह की
0: जान होते थे। सही बात।
1: एक श्रोता लिखते हैं कि शादी में जन्मवासा यानी बारात ठहरने की जो जगह है केवल एक कमरा या हॉल नहीं है बल्कि ये बारात की जान और हंसी मजाक का मुख्य केंद्र होता है। यहाँ बिताई गई रातें और बारातियों के कारनामे सालों साल तक परिवार की कहानी और चुटकुलों का हिस्सा रहते हैं। जन्मवासी में सबसे पहले आप और मजेदार किस्सा आधी रात के बाद चाय का होता है। जब सारे बाराती तैयार होकर दूल्हे के साथ मंडप में जाने का इंतजार करते हैं तब जन्मवासे का माहौल किसी हॉस्टल के कमरे जैसा हो जाता है। 3 बजे रात में चाय की डिमांड होना और किसी की चाय न मिलना, फिर पूरी बारात का खुद ही उठकर चाय बनाने की जुगत करना, ये भी एक आम दृश्य होता है।
0: बिल्कुल। और एक साथी लिखते हैं कि शादी में जन्मवासे का बड़ा महत्व है, यहाँ पर इतिहास रचे जाते हैं, किस्से कहानियां बनते हैं। बारात के ठहरने के स्थान को जन्मवासा कहते हैं। पहले के समय में ज्यादातर किसी स्कूल या धर्मशाला को जन्मवासा के लिए निश्चित किया जाता था। ऐसे में मन मुताबिक सुविधा उपलब्ध करवाना मुश्किल होता था। वैसे में कोई रूठने वाले बारातियों तब तो विवाद होना आवश्यक होता था, पर उनमें से ही कुछ लोग बीच बचाव करने वाले लोग भी होते थे जो मामले को शांत कर देते थे।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता लिखते हैं कि जन्मवासा सिर्फ बारातियों के ठहरने की जगह नहीं बल्कि रिश्तों की गर्माहट, हंसी मजाक और यादों का एक अनमोल हिस्सा है जो शादी को और भी यादगार बना देता है। मेरी शादी में बारात एक रात जिस धर्मशाला में रुकी थी उसी धर्मशाला से लगा हुआ सिनेमा हॉल था। छत पक्की थी लेकिन कुछ हिस्सा टीनशेड

0: से ढका था, जिसमें से जनवासी में ठहरे बारात में गए बच्चे फिल्म देखते रहे, जिसे आज भी वो याद करते हैं।
1: बिल्कुल। और ये लिखते हैं कि जन्माशय ये नियत स्थान विवाह में लड़की वालों द्वारा ऑपरेट होता है, या यूं कहें दोनों के सहयोग से हो सकता है, लड़का और लड़की के परिवार वालों की ओर से, जिसमें दोनों को सुविधा हो जाती थी और अधिक भार लड़की वालों पर नहीं आता। जन्माशय वो स्थान है जहाँ पर दूल्हा और बराती बेफिक्र होकर आराम करते हैं। यह स्थान विवाह मंडप के आसपास ही होता है। बहुत सी अच्छी सी बात है। और जन्माशय भी देखा जाता था कि कितनी पास है, कितनी दूर है, और वहाँ पर उनके स्वागत के लिए कोई खड़ा है नहीं खड़ा, ये सब भी चीज़ें होती थी। और लाइट की व्यवस्था है या नहीं है, या फिर
0: मतलब सही समय पर उन्हें खाना पीना हर चीज प्रोवाइड कराना, हर पूरा एक जिम्मेदारी बन जाती
1: थी। बड़ा मजा भी आता था कि भाई अगर पत्तल में उनको खाना परोसा गया है तो पूड़ी गर्म क्यों नहीं है, रसगुल्ले ज्यादा क्यों नहीं मिल रहे हैं, रायता सही से क्यों नहीं परसा जा रहा है। तो इस तरह की जो थोड़े बहुत होते थे चूहलबाजी टाइप की भी होती थी, तो बड़ा यादगार दिन है वो।
0: बिल्कुल।
1: अभी तो जैसे कि अभी व्यवस्था होटलों में हो जाती है, तो
0: अब वो जनवासी का महत्व थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि होटल भी दूर दूर होते हैं और अभी कई चीजें बदल गई हैं।
1: बदल गई, होटल में एक साथ खाना खा रहे हैं,
0: शादी भी होटल में हो गई है, घरों में वो स्थान ही खत्म हो गया है जहाँ बैठकर गीत गाए जाते थे, पूरा हल्दी से लेकर सारे कार्यक्रम किए जाते थे, तो ये चीजें अब बहुत कम हो गई हैं।
1: लेकिन मुझे तो वो जनवासी वाले दिन बहुत याद आते हैं।
0: बिल्कुल याद आते हैं।
1: चलिए हम लोग एक गीत सुनते हैं, फिर बाकी बात करते हैं।
0: बिल्कुल।

0: तो मंजरी मुझे तो लग रहा है कि जनवासे में तुम तो रूठ के नहीं बैठ गई हो।
1: नहीं हम नहीं रूठ के बैठ गए, लेकिन मुझे याद है कि एक बार जनवासे में मुझे अकेला छोड़ के लोग खाने चले गए तो हमने आंख बंद कर ली, अंधेरा था चारों तरफ तो इस तरह के हमारे साथ भी हादसे हो चुके हैं। बाद में जो भैया लोग छोड़ के गए तो उन्हें बहुत डांट पड़ी तो इस तरह की यादें भी हैं। और हमारे साथी लिखते हैं, जनवासा जिसे जनवासा भी कहा जाता है, बिताए गए ये पल दिखावे से दूर सच्चे और आत्मीय होते हैं। यहाँ अनजान लोग भी दोस्त बन जाते हैं और पुरानी दुश्मनी गिले शिकवे भी हंसी मजाक से दूर हो जाते हैं। शादी के बाद जब भी रिश्तेदार आपस में मिलते हैं तो जनवासे के यही किस्से उनकी बातचीत की सबसे बड़ी रौनक बन जाते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। मैं एक

0: तो लिखते हैं कि शादी ब्याह का मौसम है पुराने जमाने का, यानी मेरी माँ की शादी के समय का, 1951 की बात कर रहे हैं ये। उन्होंने बताया कि किस्सा जनवासा, यानी वो जगह जहाँ बारात और दूल्हे को दुल्हन के परिवार द्वारा स्वागत करके विश्राम के लिए ठहराया जाता है। छोटे गांव में महीने में शादी थी। एक बड़ा घर वाइट वॉश कराकर उस जमाने की सुख सामग्री के साथ तैयार रखा गया। गर्मी का मौसम था तो खस के पर्दे लगा दिए गए। रात का सीमांत पूजन भोजन ये कार्यक्रम हो गए। शादी के दिन देखा तो सभी बारातियों के तन पर बड़े बड़े लाल धब्बे और सूजन दिखाई दे रही थी। पूछने पर पता चला कि रात को ठंड जगह की आकर्षण से लाल चींटियों ने बहुत समय में वहाँ आसरा कर लिया था और बारातियों को काट खाया और अपना आतिथ्य दिखाया। तो बड़े बड़े होटल से शान चौकत में अब तो जनवासा होता है, लेकिन उस समय की घर की बात बताइए कि चींटियां वगैरह थी, उन्होंने काट खाया तो हर बाराती के उस शरीर में लाल निशान बने हुए।
1: बिल्कुल, जनवासे में ये भी देखा जाता था कि भाई उनके लिए पंखा रखा गया कि नहीं, हाथ का पंखा होता था उस समय, तो वो है कि नहीं है। और एक हमारे साथी लिखते हैं, अब तो जनवासे के नाम से कुछ भी नहीं है, एक बारात घर में सब कुछ हो जाता है। अब तो बाराती रात में रुकते भी नहीं है। और ये जनवासे में चाय की बड़ी वो होती थी कि चाय चाहिए चाय चाहिए, अब सुबह चाय चाहिए तो मालूम पड़ा दूध नहीं आया है, तो वो बड़ी समस्या हो गई है, अब क्या किया जाए। तो उसमें भी कुछ लोग शैतानी करते थे कि भाई कम दूध डाल के, जैसे जितना भी दूध है उसी में चाय बना दी, अब तो यही है पी लो पी लो। तो कुछ पीते थे, कुछ सोचते जा रहे गर्म पानी समझ के ही पी लो। तो बड़ी चीजें अलग अलग तरीके की उस समय में थी, लेकिन उनका भी एक अपना एक मजा था।
0: वही श्रोता लिखते हैं कि जनवासा में बताए गए ये बल दिखावे से दूर सच्चे और आत्मीय होते हैं। यहाँ अनजान लोग भी दोस्त बन जाते हैं और पुरानी दुश्मनियां गिले शिकवे भी हंसी मजाक में दूर हो जाते हैं। शादी के बाद जब भी रिश्तेदार आपस में मिलते हैं तो जनवासी के यही किस्से उनकी बातचीत की सबसे बड़ी रौनक भी होते हैं।
1: बिल्कुल, और एक लिखते हैं शादी में जनवासी के किस्से, ये एक बहुत ही अच्छा विषय है और आज कल भी ऐसा होता है, ये जिज्ञासा बनी रहती है। वैसे देखा यह जाता है कि लोगों के पास समय अभाव है और इस दृष्टिकोण से फॉर्मेलिटी ही निभाते हैं।
0: अब तो फॉर्मेलिटी ही निभाते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि पहले जनवासा गांव के स्कूलों में, पंचायत घर में या शामियाना लगाकर भी, या आम के बगीचे में भी तैयार किया जाता था।
1: और जब आम के बगीचे में होता था ना मंदाकिनी, तो वो तो किसी और का बगीचा है। अब आम लगे हैं, अब बराती लगे तोड़ने में, अब वो फिर झगड़ा मच रहा है। तो मतलब आप बरातियों को बोल भी नहीं सकते कि भैया आम ना तोड़ो, तोड़ लिया है तो बाग वाला गुस्सा रहा है। तो इस तरह के बड़े
0: रोचक किस्से जनवासी की दुनिया से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, आज हमने इन किस्सों को याद किया, हमारे श्रोताओं ने भी अपने वो खूबसूरत किस्से साझा हमसे किए हैं। और अब हम सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: जी।

0: कभी कभी हमारे साथी लिखते हैं कि जनवासा गुजराती में से उतारो कहा जाता है, मतलब जान यानी बरातियों का उतार का ठहरने की जगह।
1: महक रही है सांसों की रागनी में कभी कभी।
2: तो मंजरी, आज तो बहुत सारी बातें हमने अपनी सखियों और सखाओं से कर ली और पुराने दिनों की याद ताज़ा हो गई है ना, वो किस्से जो हम भूल गए थे
0: आज फिर से ताज़ा हो गई। ताज़ा तो सभी को धन्यवाद देते हुए नमस्कार करते हैं। तो सभी को मंजरी वर्मा और
2: मंदाकिनी जोशी का नमस्कार।
3: सखी सहेली।
0: कार्यक्रम की प्रस्तुत करता
4: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 4 बजने को है और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में गूंजेगी बांसुरी की तान। फिल्मी गानों में बांसुरी के टुकड़े होते हैं जो हमें अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। एक ऐसे कलाकार हैं जो फिल्म संगीत, गजलें, फ्यूजन और शास्त्रीय संगीत सभी मंचों पर अपनी बांसुरी की तान से सबको मोहित किए हुए हैं। उन्होंने जब वी मेट फिल्म के इस गाने में बांसुरी बजाई। फिल्म दम लगा के हईशा। फिल्म ओ माई गॉड। बांसुरी की इस मीठी तान को सुनकर आपको लग रहा होगा कि आज के सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आखिर कौन से बांसुरी वादक आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ। ये है पारस नाथ से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग।

0: क्या बात है बांसुरी की, इस
1: धन्यवाद।
0: मधुर तान को सुनकर आप, मुझे पूरा यकीन है कि बहुत अभिभूत और वशीभूत हो गए होंगे। तो चलिए विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत करते हैं बनारस घराने के जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ जी का। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर?
1: मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने संगीतमय माहौल में आपने मुझे याद किया। इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। और विविध भारती, तो हम आकाशवाणी विविध भारती हमारा आज से नहीं, मेरे दादाजी के समय से नाता है।
0: जी
1: मेरे दादाजी भी पंडित शिवनाथ जी, वो शहनाई प्लेयर आकाशवाणी में थे एज ए स्टाफ आर्टिस्ट। और मेरे पिताजी पंडित अमरनाथ जी, जो मेरे गुरु भी हैं, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी, वो पिताजी मेरे एज अ स्टाफ आर्टिस्ट ज्वाइन हुए थे, फिर एज अ फ्लूट प्लेयर बनारस घराने के बांसुरी वादक, फिर उसके बाद उन्होंने ऑर्केस्ट्राइजेशन भी की कई सालों तक, फिर म्यूज़िक एज अ म्यूज़िक कंपोज़र, म्यूज़िक कंडक्टर, और फिर ऑल ओवर इंडिया के यूनियन प्रेसिडेंट भी थे बहुत सालों तक। तो उनके साथ हम जाते थे आकाशवाणी में, और हमें जो बचपन की जो याद थी, जिस समय से हम अपना जीवन शुरू किया है, वो आज मुझे वापस देख के आकाशवाणी का वो जो खुशबू है, और वो जो आकाशवाणी के स्टूडियो की जो एकुस्टिक, वो जो है एक जो नॉस्टैल्जिक फील है ना, वो आज मेरे को वापस देख के बड़े सालों बाद बहुत अच्छा लगा।
0: क्या
1: सो
0: बात
1: थैंक
0: है,
1: यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट
0: अपने
1: फील।
0: ही परिवार में वापसी है आपकी एक तरह से।
1: बिल्कुल कह सकते हैं, इट्स अ होम कमिंग
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: बैक।
0: यहां एक चीज जो है वो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं कि आपके पिताजी पंडित अमरनाथ जी
1: पंडित अमरनाथ
0: गायक
1: जी,
0: पंडित अमरनाथ जी से
1: जी नहीं,
0: अलग हैं।
1: अलग हैं, बांसुरी वादक
0: जी बिल्कुल,
1: पंडित
0: बांसुरी
1: अमरनाथ जी,
0: वादक पंडित
1: बांसुरी
0: अमरनाथ
1: वादक
0: जी, जिनका ताल्लुक आकाशवाणी से
1: जी
0: भी रहा। आकाशवाणी के वाद्य वृंद के लिए उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: जी जी पिताजी ने तकरीबन 61 या 61-62 डिफरेंट रागास पे अपनी वाद्य वृंद की रचनाएं की,
0: क्या बात है।
1: और जो प्योर, जिसमें से बहुत प्रचलित राग भी नहीं थे, जिसमें से कई ऐसे राग थे जिसमें जो बहुत अक्षोभ राग भी हैं, अक्षोभ राग जैसे जो लोग ज़्यादा सुनते नहीं, बजाते नहीं, गाते नहीं, करते नहीं, और बहुत डिफ़िकल्ट राग भी हैं, जैसे बिलास खानी तोड़ी। अब बिलास खानी तोड़ी राग गाना बजाना ही, उसको उस राग को संभालना ही मुश्किल है,
0: जी
1: और गोरख कल्याण, ये सब राग संभालने ही मुश्किल हैं, मारू विहाग और फिर केदार, ये सब रागों को सिर्फ संभाल लेना ही काफ़ी है।
0: और इन
1: उन
0: रागों में
1: पे
0: वाद्य वृंद
1: वाद्य
0: बनाना
1: वृंद बनाना, वो भी
0: और
1: उनके
0: भी बड़ा
1: चलन के
0: काम है।
1: आधार पे।
0: जी
1: अब सा रे गा मा पा दा नी सा नी दा पा मा गा रे सा, अब ये जब आप ऑर्केस्ट्राइजेशन करते हैं 80 लोगों के साथ,
0: 80 लोग,
1: हाँ
0: ये मायने रखता
1: अस्सी
0: है।
1: आर्टिस्ट, वो भी 80 आर्टिस्ट सिर्फ आर्टिस्ट नहीं हैं, वो एक एक चुन के हिंदुस्तान के
0: नगीने हैं।
1: नगीने हैं, जो अपने अपने अपने वाद्य के, अपने अपने घरानों के खलीफा, आप समझ लीजिए, जिनको जो अपने घराने के गुरु हैं और गुरु के सुपुत्र हैं, जो जनरेशन से चले आ रहे हैं, उनको दिल्ली में हम सुनते थे कि जो उनको अपने घरानों का खलीफा बोलते हैं, अपने घरानों का गुरु, महागुरु, ऐसा समझ लीजिए। तो वो सब उस रूम में मौजूद हैं, और पिताजी की कंपोजिशन वो बजा रहे हैं, और जो नोटेशन जो पिताजी करते थे, हिंदुस्तानी नोटेशन, सारे गामा पादा निसा और SRGM, सारे
0: अच्छा,
1: गामा
0: दोनों
1: पादा,
0: नोटेशन कर देते वो।
1: पिताजी करते थे। हाँ, सो स्टाफ नोटेशन नहीं लिखते थे, वो हिंदी नोटेशन लिखते थे, बट उसको SRGM में लिखते थे।
0: जी,
1: सो वो नोटेशन जो जब पिताजी बनाते थे कंपोजिशन, सो मैं और मेरे बड़े भाई पंकज नाथ जी, हम वैसे 3 भाई हैं, मेरे सबसे बड़े भाई हैं श्री पवन कुमार नाथ जी, वो म्यूज़िक में नहीं हैं, और मुझसे बड़े जो हैं श्री पंकज नाथ जी, वो बांसुरी वादक हैं, और मैं उनके बाद सबसे तीसरा छोटा पारसनाथ। तो हम 3 भाई हैं और 2 म्यूज़िक में हैं, 1 म्यूज़िक में नहीं है। तो
0: जी
1: मैं और पंकज नाथ जी, हम लोग पिताजी के साथ रात भर बैठ के उनके साथ नोटेशन लिखा करते थे, वो बनाते रहते थे, सुर बनाते रहते थे और कंपोजिशन बनाते रहते थे, तो हम दोनों नोट करते रहते थे, नोटेशन करते रहते थे। तो वहाँ से हम नोटेशन सीखने को भी, एक जो इंडस्ट्री में काम करने के लिए, मुंबई इंडस्ट्री में
0: बुनियाद पक्की हुई।
1: बुनियाद पक्की हुई एक तरीके से बोल लीजिए, वो एक ट्रेनिंग भी थी
0: जी
1: और एक तरीके से काम भी होता रहा।
0: मैं ये देख पा रहा हूं कि इतना अनुशासित और सख्त बचपन था, तो उसमें बदमाशी की जगह कितनी थी।
1: वो निकल ही जाता है बचपन में। बचपन ऐसा होता है ना कि थोड़ी सी भी जगह या मौका मिले तो बदमाशी कर ही लेता आदमी।
0: कौन कौन सी बदमाशियां की कुछ याद कीजिए। उसके बाद तो जाहिर है कि बदमाशी के साथ एक चीज साथ में आती है, वो एक कुटुंबस।
1: हाँ, अभी आर्टिस्ट है। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि बचपना जो होता है वो अपने आप में ही बदमाश होता है, और प्लस आर्टिस्ट घराने का बच्चा हो
0: जी,
1: तो और भी बदमाश
0: और भी। तो आप क्या कारनामे करते थे?
1: हम लोग करते थे बचपन में।
0: शर्मा रहे बता रहे थे।
1: हाँ, थोड़ा सा शर्मा हो गया, बट हाँ बदमाशी करते थे।
0: बगीचों से आम चुराए, चोरी
1: बहुत चुराए, बहुत चुराए हमने, आम चुराए हैं। और हमने अपने टीचरों को भी बहुत परेशान किया है, प्रिंसिपल को भी थोड़ा परेशान किया है,
0: थोड़ा।
1: इतना थोड़ा कि उन्होंने
0: घर शिकायत भेज दी।
1: घर शिकायत नहीं, घर वालों को स्कूल ही बुला लिया था।
0: अरे बाप रे। फिर
1: पिताजी आए उन्होंने। अच्छा, एक्चुअली मैं आपको बता दूं,
0: लेकिन किया क्या था आपने ऐसा? कुछ तो खतरनाक वाला किया होगा।
1: आपने मुझे पकड़ लिया रंगे हाथों। रंगे हाथों पकड़ लिया आपने मुझे।
0: जी जी जी।
1: मैं बचपन में भी नहीं पकड़ा था मुझे तो टीचर ने।
0: अच्छा।
1: इसको कर्मा बोलते।
0: वापस आ गया।
1: मुझे लगता है कोई ना कोई टीचर आया आपके रूम में। हाँ, तो बदमाशी की है सर। हाँ, कभी कभी स्कूल से, जैसे कभी होमवर्क नहीं कर पाना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको
0: जी,
1: कि मुझसे होमवर्क नहीं हो पाता था।
0: अच्छा।
1: और जिस स्कूल में हम थे, मैं बॉयज स्कूल में था, सो वहाँ के टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट थे
0: जी,
1: बहुत स्ट्रिक्ट थे।
0: और जमाना भी सख्ती का था,
1: बहुत ज़्यादा था, और मतलब लिटरली पिटाई पड़ती थी बहुत ज़्यादा। सो उस पिटाई से बचने के लिए हमने थोड़ा स्कूल कभी कभी घर से निकले हैं, पर पहुंचे नहीं।
0: कहीं और पहुंच गए।
1: तो ऐसी बदमाशियां रही, फिर खेलने चले गए
0: जी,
1: गेम खेलने चले गए, क्रिकेट खेलने चले गए, तो ये मस्तियां की हैं। और पिताजी को पता नहीं होता था, और ये डर भी होता था उनको अगर पता चल गया
0: तो क्या, तो हाल होता।
1: बाप रे, दुनिया अलग और मैं अलग।
0: कितना सख्त अनुशासन। आप सबसे छोटे थे तो लाड़ भी उतना ही रहा होगा, अनुशासन भी उतना ही।
1: अनुशासन के टाइम पे बिल्कुल लाड नहीं था
0: जी,
1: कोई छोटा बड़ा देखा ही नहीं। सो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बचपन में मैंने, मेरे भाई ने, हम प्रॉपर नींद सोए नहीं है। मतलब वो इसलिए नहीं सोए हैं, शायद उसकी वजह से ही मैं आज आपके सामने बैठा हूँ
0: जी। ये एक साधना का हिस्सा रहा कि नींद में कटौती होती रही और सीखने का मामला चलता रहा।
1: वो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि वो एक करेक्ट एज है
0: जी
1: अनुशासन में रहने का। जीवन अगर बनता है तो उसी एक करेक्ट एज में, वो भले ही बच्चा प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा हो या भले ही बच्चा कुछ नहीं भी कर रहा हो, अगर वो अच्छे माहौल में है ना, तो उसकी मेमोरी और मसल मेमोरी में वो बात जा रही है।
0: क्या प्यारी बात बोली है जी।

0: अगर उसका माहौल अच्छा है तो भले ही कई चीज़ें मैंने जब मैं काम करने लगा प्रोफेशनली, बहुत सारी चीज़ें मैंने तब रियलाइज़ की कि कुछ चीज़ें जो मैंने प्रैक्टिस नहीं भी की पर मैं रियाज़ जब करता था या बजाने जाता था या बजाता था बांसुरी, तो मुझे महसूस हुआ कि ये एक जो बचपन में जो मैंने सिर्फ सुना है उस वजह से एक एडॉप्शन हो गया है, वो उसको ग्रास्पिंग वो मेरे ब्रेन ने मेरे मसल ने कर लिया है उसको, तो वो एक बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा होता था सर कि सुबह के वक्त से मैं आपको बताता हूँ, जैसे सुबह 4-4:30 बजे के वक्त पे हम अपने दादा दादी जी के साथ, बड़ा हमें लाड प्यार मिला है, मेरे दादाजी पंडित शिवनाथ जी, लेट पंडित शिवनाथ जी शहनाई प्लेयर भी थे। और अच्छा, मैं आपको दादाजी की बात आई तो ये मैं बता दूं, ये मेरे दादाजी की बांसुरी है।
1: अरे गजब, तो ये कितने साल पुरानी होगी?
0: मेरे दादाजी व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी, जब वो शांत हुए, उनकी एज थी 104 साल।
1: ओहो, गजब।
0: ही वाज अ मिलिट्री गाय।
1: जी जी।
0: और उन्होंने जो सबसे पहली जॉब थी उनकी वो मिलिट्री में थी, और इंडिया और चाइना की जो वॉर हुई थी
1: 62 वाली,
0: वो पार्ट थे उसके।
1: ओके।
0: इंडिया वो चाइना के वॉर के, और उनको फिर क्योंकि इंजर्ड हो गए थे, उनको स्निच हुआ था, गोलियां लगी थी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो उस हालत में इंजर्ड नहीं हुए थे कि मतलब आदमी डेथ के उसमें चला जाए, बट ही वॉज इंजर्ड, हिज सीरियसली इंजर्ड।
1: लेकिन वो शहनाई भी बजाते थे?
0: शहनाई छोड़ी नहीं उन्होंने, रियाज नहीं छोड़ा उन्होंने
1: फौज में होते हुए।
0: हाँ,
1: वाह वाह वाह।
0: शहनाई, और इस बांसुरी को बोलते हैं त्रिपुरा बांसुरी,
1: त्रिपुरा बांसुरी,
0: जो मेरे दादाजी ही बजाते थे पूरे खानदान में।
1: गजब।
0: सिर्फ दादाजी बजाते थे त्रिपुरा बांसुरी। अच्छा, त्रिपुरा बांसुरी में क्या एक स्पेशलिटी है सर कि इसमें जैसे हम नॉर्मल बांसुरी है
1: जी,
0: हमारी ये नॉर्मल बांसुरी है, यहाँ पे कॉर्ग लगता है माउथ होल के पास।
1: जी बिल्कुल।
0: ये त्रिपुरा बांसुरी में कॉर्ग नहीं होता है, ये पूरी खाली होती है अंदर से।
1: अरे गजब।
0: एक बांस की नली है और उसमें जो सुरों के होल किए हुए हैं। और यहाँ पे जैसे आपने बहुत सारे बांसुरी वादकों को देखा होगा, बहुत आजकल जो पीछे पंचम का होल है, ये तो हम बचपन से देख रहे हैं अपने बांसुरी, अपने घराने के बांसुरी में। हालांकि हम पंचम का होल यूज नहीं करते, हम जो कृष्णा बांसुरी है नॉर्मल वो वैसे ही बजाते हैं।
1: जी जी,
0: पंचम हम होल
1: यूज नहीं करते।
0: तो हमने तो अपने बचपन में दादाजी को त्रिपुरा और बांसुरी, ये कम से कम नहीं तो 200 साल पुरानी बांसुरी है।
1: क्या बात है, ये तो अद्भुत
0: अद्भुत बांसुरी उनका।

0: आशीर्वाद है
1: जी।
0: मंदिर में रहती थी ये बांसुरी, हमेशा मंदिर में रहती थी। सुबह तो हमारा कैसा था कि दादाजी हमारे मिलिट्री के थे, तो उनका अनुशासन शेड्यूल बहुत स्ट्रिक्ट था। 4 बजे हम तीनों को उठा देते थे। वो हम तीनों का 4 बजे उठ के, मैक्सिमम 4:30 बजे उठ के, सिर्फ एक काम था कि राग भैरव में एक स्थाई गानी है, तीनों को गानी है, वो चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, उसके पीछे वो उनका सोच ये था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, उस वो जो ब्रह्म मुहूर्त की जो एनर्जी है वो आपको महसूस करनी है, और उस मुहूर्त में जो राग है, वो रागों का जो, क्योंकि हमारे जो राग रागनी है ये हमारे देव देवताओं का उत्पन्न किया हुआ है। ये तो साक्षात आजकल जो म्यूजिक जो एंटरटेनमेंट है वो तो पहले पूजा और प्रार्थना के लिए यूज होता था।
1: जी जी,
0: सिर्फ और सिर्फ पूजा और प्रार्थना और सिर्फ साधना ही होती थी संगीत के सुर से। तो अभी क्या था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे सिर्फ भैरव राग गवाने का एक ही उद्देश्य था कि वो आशीर्वाद ईश्वर का, वो भैरव राग का आशीर्वाद, सरस्वती माँ का आशीर्वाद उस मुहूर्त में हमें मिले।
1: वाह।
0: तो सा सा सा रे गा मा पा दा नी सा नी रा बा मा गा रे सा, एक हम बंदिश गाते थे तीनों भाई उठ के, जा

0: जागो मोहन प्यारे जागो। तो ये बंदिश हम सुबह गाते थे, उसके बाद हम तीनों नींद में गाते थे। अब ये तो हुई दादाजी की सोच, अब तीन बच्चों की सोच बताता हूँ कि हमें ऐसा लगता है क्यों क्यों उठाया जा रहा है 4 बजे सुबह, क्यों नहीं सोने दिया जा रहा है, ये क्या पनिशमेंट है, ये क्या है। क्योंकि नींद इतनी प्यारी होती है ना,
1: बिल्कुल
0: और
1: बचपन
0: वो
1: की
0: चार
1: नींद,
0: साढ़े चार बजे तो एकदम चरम सीमा की नींद होती है।
1: बिल्कुल
0: उस वक्त जगा दिया जाता था। दिल्ली, आई बॉर्न बॉटम इन दिल्ली,
1: जी,
0: तो दिल्ली की सर्दी भी खतरनाक होती थी उस
1: खतरनाक जी।
0: पर, वो जगाते थे। फिर उसके बाद वो हो गया, फिर 5:30 बजे के बाद हमें अलाउड नहीं था कि बेड से उठना ही है और फिर बाहर निकलना है घर से, एंड जस्ट हैव टू गो वॉक, डू व्यायाम, जो प्राणायाम, वट एवर। ये मैं अपने बचपने की बात बता रहा हूँ सर, जब मैं 5th 6th स्टैंडर्ड की बात बता रहा हूँ।
1: जी,
0: एंड देन वो होने के बाद फिर घर आए, नहाया धोया, नाश्ता किया। 7:30 8 बजे हम लोग रियाज पे बैठ गए। 8 बजे रियाज पे बैठे हैं नाश्ता करके, उसमें दादाजी के साथ भी जब पूजा करते थे दादाजी, तो ये बांसुरी बजाते थे।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो पूजा के टाइम पे वो राग दुर्गा में एक स्थाई बजाते थे।
1: अरे गजब।

0: फिर इसके साथ सरगम उन्होंने कुछ कुछ बनाई थी, बताई थी हमें, तो सरगम बजाते थे हम लोग। तो एक हाजिरी होती थी हमारी, पिताजी भी होते थे, दादाजी होते थे, हम दोनों होते थे। उसके बाद फिर दादाजी अपने शेड्यूल में बिजी हो जाते थे, पिताजी जॉब में जाते थे, हम लोग रियाज करते थे दोनों भाई। हमारा रियाज होता था तकरीबन 8 बजे से 8:30 बजे से लेकर दोपहर को 12:30-1 बजे तक, 5 घंटे का एक टाइम का रियाज। फिर दिन में लंच के बाद 2 घंटे होते थे, उसमें आप कुछ और कीजिए, जैसे कुछ और सीखिए या बगीचे में कुछ कीजिए या कुछ भी घर में कुछ और सेवा कीजिए, घर का कुछ काम कीजिए, वैसा कुछ। फिर 4:30 बजे से 4, 4:30, 5 बजे से वापस रियाज, वो रात को चलता था 10, 10:30 बजे तक। तो दिन में तकरीबन 11, 12, 13 घंटे का रियाज होता था। उसी 13 घंटे में पूरे दिन शिष्य आते थे, अपने टाइम से आते थे, जिनको जाना होता था वो चले जाते थे, वो चलता ही रहता था एक रोटेशन में, तो वो माहौल रहता था।
1: वाह वाह,
0: फिर रात को आप समझिए 10:30 बजे अगर हम लोग छोड़ा है रियाज करके दिन भर, आप सोने गए हैं 12 के आसपास, तो पिताजी आए रिकॉर्डिंग से और 1 बजे या कभी 2 बजे उनका कुछ मूड हुआ बताने का, वो कुछ सोचते हुए आए हैं, बच्चों को बताऊंगा,
1: और बच्चे तो सो रहे हैं।
0: बच्चे सो रहे हैं। अब बच्चे कौन, मैं और मेरे बड़े भाई पंकज जी। अब पिताजी ने हमें कभी बचपन में, मेरी माता ने, पिता ने, हमारे बुजुर्गों ने कभी मारा नहीं, हाथ नहीं उठाया, पर डर इतना था कि उनके आंखों से और आवाज़ से डर लगता था। तो ये था कि अब पिताजी आ गए 12-1 बजे, उन्होंने कहा चलो बांसुरी लेके आओ। अब नींद से आधी नींद से उठे, मुंह में पानी डाला है, फिर दोनों बांसुरी लेके आ गए। अब सर वो सेशन चल रहा है सुबह 4-5 बजे तक,
1: ओहो, तो सारी रात जागना है
0: पूरी सारी रात जाग गए,
1: और सुबह का तो फिर शेड्यूल तय है।
0: सुबह का शेड्यूल थे। पर फिर कभी कभी पिताजी संडे, क्योंकि आकाशवाणी छुट्टी होती थी, तो सैटरडे संडे पिताजी भी बैठते थे रियाज पे। फिर वो जब पिताजी बैठते थे तो और लंबा डिटेल क्या रियाज होता था दादाजी के साथ भी, तो होते होते फिर वो बचपन पूरा वैसे ही उसी
1: रियाज
0: अनुशासन
1: करते
0: से,
1: हुए,
0: रियाज करते
1: अनुशासन
0: हुए
1: में,
0: अनुशासन से इसी तरीके से गुजरा है।
1: क्या
0: पर
1: बात है।
0: मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि इस जीवन में मुझे, मैं जितना ही अपने आप को ग्रैटिट्यूड महसूस करूँ यूनिवर्स के लिए, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, या उस सोर्स के लिए जिसने मुझे ये लाइफ दी है, कि मुझे ऐसे परिवार में ऐसे दादा दादी जिन्होंने पूरा बचपन में हमें प्यार भरपूर दिया,
1: जी
0: संगीत दिया, जिसके वजह से हमारी ज़िंदगी बनी,
1: जी
0: मेरे माता पिता जिन्होंने कोई कमी महसूस नहीं होने दी, और फिर संगीत सिखाया, और फिर जीवन को कैसे जीना है उसके बारे में भी नॉलेज दी,
1: जी
0: ऐसे परिवार में मेरी जीवन की शुरुआत हुई। कोई भाग्यशाली, मैं अपने आप को बहुत मानता हूँ कि ऐसे घराने का बच्चा हूँ और ऐसे घराने में पैदा हुआ हूँ। और भी बहुत एक बड़ी बात है कि जीवन को जीने के लिए कई बार ऐसा होता है, प्रोफेशन आप पैसा कमाने के लिए चुनते हो जिससे आप पैसा कमाते हो, पर आपकी आत्मा तृप्त नहीं होती है, और पैशन आपका कुछ और होता है, पर आप पैशन के लिए काम कर ही नहीं पाते हो।
1: बिल्कुल।
0: जीवन जीने का आत्मा के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो वो पैशन है आपका, वो कुछ भी हो सकता है, खाना बनाना हो सकता है,
1: बिल्कुल
0: ट्रैवल करना हो सकता है, कुछ भी, मतलब म्यूजिक हो सकता है। और तो मेरा तो पैशन भी यही है, जीवन भी यही है, ऐसा नहीं लगता है ये मेरा साज है, ऐसा लगता है मेरे शरीर का एक अंग है,
1: बिल्कुल
0: ये और मैं एक ही हैं। मैं इस जन्म में आर्टिस्ट बन के पैदा हुआ हूँ और एक साज की सेवा कर रहा हूँ, कृष्ण भगवान के साज की सेवा कर रहा हूँ, जिन्होंने इस साज से पता नहीं कितने लोगों का कितना उद्धार हुआ है, तो मेरे लिए तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है।
1: क्या बात है पारस जी। हम अब ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो दादाजी वाली बांसुरी है, त्रिपुरा बांसुरी,
0: जी
1: उस पर कोई धुन बजाएं, और उसके बाद हम एक फिल्मी गाना सुने आपकी पसंद
0: जी
1: का।
0: मैं दादाजी की बजाई हुई धुन में आपको सुनाता हूँ,
1: जी
0: पर त्रिपुरा बांसुरी मैंने बजानी, मेरे लिए ये एक बहुत ड्रॉबैक है मेरे लाइफ का,
1: जी
0: कि ये बांसुरी मैं कोशिश की थी मैंने बजानी,
1: जी जी
0: पर दादाजी जब तक उनके दांत थे और वो इस तरीके से होल्ड कर पाते
1: जी जी
0: थे,
1: जी
0: इसको ऐसे बजाते हैं।
1: समझ गया।
0: देखिए, तो एक होती है सीधी बांसुरी, आपने
1: हाँ,
0: देखी होगी, ऐसे
1: और
0: शहनाई की
1: ये
0: तरह बजाते हैं।
1: जी जी जी
0: एक होती है ये जो हम बजाते हैं कृष्णा बांसुरी,
1: जी
0: इसको कृष्णा बांसुरी बोलते हैं, तो ने कृष्ण भगवान की मूर्ति देखी होगी थी, इसको
1: हमेशा।
0: ऐसी, तो इसको बोलते हैं आड़ी बांसुरी,
1: हाँ
0: आड़ी बांसुरी भी बोलते हैं, कृष्णा बांसुरी भी बोलते हैं, और इसको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का वाद्य भी बोलते हैं।
1: जी
0: फिर ये हो गए त्रिपुरा बांसुरी, इसको बजाते हैं ऐसे। इसका ये पंचम का हुल है
1: जी
0: और ये बाकी आगे नॉर्मल जैसे बांसुरियों पे होता है
1: उस तरह के हैं।
0: उस तरीके का है। और इसमें एक और ख़ास बात है कि आप देखिए, इसमें जो कृष्णा बांसुरी है, इसमें जो एक मध्यम तीव्र मा, जो क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्लूट मेकर्स अपने नाम बढ़ाने के लिए, बहुत सारे फ्लूटिस्ट अपने नाम बढ़ाने के लिए वो चीज़ें अपने आप को, क्योंकि अपना नाम आजकल के जीवन में क्या हो गया ना सर, भोगना भोगना, ग्रीडीनेस
1: जी जी
0: इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि झूठ पे झूठ बोलते लोग।
1: जी
0: आप सोचिए, ये मैं 200 साल पुरानी बांसुरी मैं आपको दिखा रहा हूँ,
1: जी बिल्कुल
0: इसमें दो चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसमें एक तो पंचम होल दिखा रहा हूँ
1: हाँ बिल्कुल
0: और दूसरा एक ये मध्यम तीव्र मध्यम का एक नोट
1: हाँ
0: है,
1: बिल्कुल है
0: ठीक है
1: आखिर में।
0: ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें बहुत सारे सब बोलते हैं कि ये हमारा है हमारा है हमारा है,
1: ये तो 200 साल पुरानी बांसुरी है
0: हमने तो बचपन से देखा है,
1: जी
0: हमने कभी बोला ही नहीं ऐसा, क्योंकि हमें उस तरीके से कभी ना, हमने कभी ना देखा, ना कभी पिताजी का कभी वैसा विचार रहा, ना कभी दादाजी का वैसा विचार रहा कि ये हमारा है हमारा है, हमने किया है हमने किया है हमने किया है। पिताजी और दादाजी का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा है हमेशा से, पिताजी का आज भी है, कि ये ईश्वर का दिया हुआ साज है, ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है, हमारा नहीं है ईश्वर का है, ईश्वर ने हमें चुना है, तो आपके थ्रू जो अच्छा जितनों का हो सके अगर हो पा रहा है तो वो भी ईश्वर ने आपको चुना उसके लिए।

0: माध्यम है।
1: आप अपने आप को मत मत समझिए कि आप भगवान हैं।
0: जी
1: आप भगवान नहीं हैं। आप भगवान होते तो आपने अपने लिए कुछ कर लिया होता सबसे पहले। जिन लोगों की वजह से आपका हो रहा है वो आशीर्वाद ईश्वर का दिया हुआ है।
0: बहुत सही।
1: तो हमने तो बचपन से ये देखा है सर। अब ये त्रिपुरा बांसुरी जो है ना, ये दादाजी का ही आशीर्वाद है। मैं ये बांसुरी बजा पाता हूँ, मैं जो
0: जी
1: भी है मेरे पास उन्हीं का आशीर्वाद है, पर ये बांसुरी मैं बजा नहीं पाता,
0: कोई बात नहीं, तो
1: इसका
0: आप
1: साउंड क्रिएट नहीं कर पाता।
0: जी, तो आप
1: ये
0: अपनी
1: मैं
0: कृष्णा
1: लाया इसलिए
0: बांसुरी
1: हूँ,
0: बजाइए।
1: मैं
0: जी
1: लाया इसलिए हूँ कि उनका आशीर्वाद हमें, खैर
0: साथ
1: मेरे
0: चले,
1: हमारे साथ, मेरे हमेशा साथ रहता है ये,
0: वाह
1: हमेशा।
0: क्या प्यारी
1: हाँ,
0: बात है।
1: ये कि हमारे फ्लूट किट में रहता है।
0: जी।
1: अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा था, जो तीव्र माँ का ये है।
0: जी
1: अब ये बांसुरी पे तीव्र माँ का यहाँ होल
0: हाँ है
1: है ना।
0: जी।
1: इसलिए आप कभी गूगल यूट्यूब में सर्च करेंगे ना, आपको ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं मिलेगा दादाजी का,
0: जी।
1: पिताजी का भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ना वो सुरों में खोए रहते थे, म्यूजिक में खोए रहने वाले लोग थे, शागिर्दों के साथ रहने वाले लोग थे, संगीत में खोए रहने वाले लोग थे। वो टेक्निकली वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाए। अब
0: जी
1: हमें भी जब समझ में आया ना, तो दादाजी हमें छोड़ के, शरीर छोड़ के जा चुका था उनका। अब पिताजी भी अपने एक मिजाज के हैं, तो हम भी उनके, क्योंकि हम बच्चे भी हैं, बेटे भी हैं, शिष्य भी हैं। अब पिताजी कब गुरु से पिता बन जाते हैं, पिता से कब गुरु बन जाते हैं, समझ में नहीं आता है।
0: बिल्कुल सही
1: वो
0: है
1: देखना पड़ता है।
0: जी।
1: तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने बोला दादाजी के लिए जो हम बजाते थे बचपन में,
0: हाँ
1: दादाजी के साथ राग दुर्गा मैं आपको सुनाता हूँ।
0: ठीक है, और उसके बाद एक फिल्मी गाना भी सुनते
1: मैं
0: हैं फिर।
1: फिल्मी गाना भी सुनाऊंगा
0: जी
1: आपको।

0: क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: अब बताइए गाना कौन सा सुना जाए।
1: मैं आपको एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है
0: जी जी,
1: जो कि मैं अक्सर बजाता भी हूँ, वो है पिया तो से नैना लागे रे।
0: क्या बात है, गाइड फिल्म का ये गाना है।
1: बहुत अच्छा गाना है।
0: वाह वाह वाह।
1: और लता जी ने तो
0: कमाल किया,
1: उनको सादर कोटि कोटि प्रणाम है। और इतना अच्छा कंपोज किया है
0: SD बर्मन साहब ने।
1: वाह वाह। तो मैं वो आपको
0: जरूर जरूर स्वागत है।

0: अभी इसमें क्या किया ना मैंने, जैसे मैं इसको थोड़ा फ्यूजन अंदाज से भी बजाता हूँ कभी कभी,
1: जी जी जी,
0: तो इसमें एक छोटी सी थीम ऐड की है मैंने,
1: अच्छा
0: बहुत ही छोटी सी। अब जैसे ये चल रहा है

0: परजी, आपके बचपन की साधना, बचपन का माहौल, सख्त अनुशासन, ये तमाम बातें हमने यहाँ सुनी और जानी
1: जी।
0: एक बात जो हमारे सुनने वालों के लिए बहुत जरूरी है जानना, वो है कि किस उम्र में आपको बांसुरी पकड़ा दी गई थी?
1: सर, ये मुझसे सवाल पूछा जाता है, मैं हर बार यही जवाब देता हूँ। जब एक बच्चे को एहसास होने लग जाता है ना
0: जी,
1: कोई सेंस शुरू हो जाता है दुनियादारी का, मुझे लगता है कि उसी एज में मैंने बांसुरी हाथ में ले ली थी
0: जी।
1: एक बच्चा होता है जब सिर्फ रो रहा होता है, सिर्फ एक सोता रहता है, खाता
0: शिशु
1: रहता
0: होता है जब,
1: शिशु होता है वो। तो जब एक बच्चा लड़कपन में आ जाता है
0: जी,
1: तो उस एज में बांसुरी हाथ में आ गई थी।
0: वाह वाह वाह।
1: अब वो कौन सी एज थी, मे बी मैं 2 साल का था, 3 साल का था, या कितने भी, मैं इतना बता मुझे पता है कि मेरी जो पहली परफॉर्मेंस थी मेरे दादाजी के साथ में गया था, और जो स्टेज परफॉर्मेंस थी तो 5 साल की एज में थी।
0: बाप रे, इतनी कम उम्र में परफॉर्मेंस।
1: हाँ, वही राग दुर्गा ही बजाया था मैंने उस वक्त। क्या था वो 5 साल की एज में, वो जो जितना उन्होंने सिखाया था वो रट के गया था मैं तो सरगम वगैरह उसी हिसाब से बजाया, तो उस वक्त ऐसा। अभी तो जैसे मैंने आपको एक थोड़ा उपज थोड़ा सा करके दिखाया,
0: जी जी जी,
1: उस वक्त वैसा नहीं था। तो वो उन्होंने जैसे जैसे सरगम के साथ,
0: वो उम्र भी बहुत छोटी थी।
1: हाँ, काफ़ी छोटी थी। फिर उसके बाद मेरा सबसे पहला इंटरव्यू है, 5 साल की एज में ही मैंने, दूरदर्शन में एक ये प्रोग्राम आता था सुबह सवेरे, तो 5 साल की एज में मेरा पहला इंटरव्यू है।
0: अरे बाप रे,
1: हाँ,
0: तो सवालों के जवाब देने की बुद्धि आ गई थी तब तक गजब।
1: वो ये आशीर्वाद है
0: जी जी जी,
1: वो उन्होंने सवाल भी फिर वैसे ही किए होंगे
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: कि सुबह उठ के आप कौन सा नाश्ता करते हैं, हॉर्लिक्स पीते हैं कि क्या
0: उनके सवाल पीने भी जाई
1: जी,
0: तो किस तरह का नाता बाकी तमाम चीजों से जुड़ा, खेलकूद से, सिनेमा से?
1: सिनेमा से इतना नहीं जुड़ा
0: जी,
1: उस वक्त म्यूजिक, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि टीनेज में तो मैं प्रोफेशनली म्यूजिशियन, एज अ म्यूजिशियन दिल्ली में
0: जी
1: काम करने लग गया था, तो फिल्म से उतना था, क्योंकि बचपन से ही टीवी और रेडियो से मतलब सुनने में और करने। अच्छा, मैं आपको बताऊं, हमें रेडियो कैसे सुना है, गाने कैसे सुने हैं, मेरी माताजी, मेरी दादी और हमारी बुआ जी, तो हम लोग सब साथ में मिलके होली के टाइम पे, मेरी माताजी और दादी जी वो गुजिया बनाते थे घर पे, नमक पारे, गुजिया, घर के में मिठाई, तो पहले बाहर से नहीं आता था मिठाई,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हालांकि हमारे घर में तो तब त्यौहार पे अभी भी बाहर से नहीं आता, वो बच्चे शागिर्द वगैरह जो आते हैं वो लेके आते, बट घर पे ही बनता है ज़्यादातर।
0: और वो ठेठ बनारसी,
1: ठेठ बनारसी, तो मेरी दादी माँ और माता जी गुजिया बनाते थे और रात भर का कार्यक्रम रहता था वो,
0: गजब।
1: हाँ, तो उस वक्त रेडियो चलता था, उस वक्त रेडियो चलता, तो रेडियो में सब पुराने गाने, लता जी के, खयाम साहब के, रफ़ी साहब के, किशोर कुमार जी के, मुकेश जी के, आशा जी के, सब वही उस वक्त जो गाने सुनते रहता था ना मैं, तो अभी जो कुछ कुछ गाने मुझे पुराने याद हैं, अब जैसे रसिक बलमा,
0: जी जी,
1: अब बहुत सारे लोगों को वो गाना ही नहीं पता,
0: हाँ हाँ, चोरी चोरी फिल्म का,
1: अब वो मैंने कितने सालों से सुना ही नहीं, मैं खुद ने नहीं सुना वो गाना,
0: जी
1: वो तब का सुना हुआ है,
0: गजब।
1: तो वो जहन में, वो भी मैंने कहा ना, बचपन में अगर आपके माहौल अच्छा हो तो आपके मसल मेमोरी में क्या बात चली जाती है ना, आपके मेमोरी में कौन सी बात घुस जाती है और वो फिर कहाँ काम आती है आपको पता नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: आपको जैसा कि मैं बताऊं कि मैं, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट इवेंट्स भी करता हूँ, कॉरपोरेट इवेंट्स भी करता हूँ, वहाँ बहुत सारे जगहों पे फरमाइश होती है कि ये वाला गाना पुराना गाना है, इस तरीके से आप सुनाइए ये गाना। अब एक वो गाना है मदर इंडिया का गाना है एक, वो
0: हुली आई रे कन्हाई,
1: हाँ, अब वो गाना वैसे आप सुनने जाएंगे तो नहीं सुनने को मिलेगा, पर उस वक्त आकाशवाणी में बजता था
0: जी,
1: तो वैसा था, तो फिर आए दिले नादान,
0: वाह वाह वाह, रजिया सुल्तान,
1: हाँ,
0: फिल्म
1: रजिया
0: का गाना,
1: सुल्तान, तो कितना कमाल गाना है वो,
0: बिल्कुल।
1: ओ हो, तो वैसे ही होते होते फिर वो उस हिसाब से चल पड़ा। तो खैर, फिल्मों से नाता उस वक्त था नहीं वैसा, क्योंकि जुड़ नहीं पाते थे उस वक्त की मूवीज से हम
0: जी,
1: पर दादाजी की वजह से हमने कुछ कुछ फिल्में देखी हैं, जैसे बॉम्बे टू गोवा, पड़ोसन,
0: अरे बाबा,
1: और गुजुटी सेनाई, और भी बहुत सारी पिक्चरें उस वक्त थी, फिर ज़्यादातर यही रियाज रहता था, फिर रिकॉर्डिंग्स प्रोग्राम्स में जाना, और फिर कभी जब खाली टाइम मिलता था तो हम भाइयों को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक,
0: अच्छा
1: बहुत शौक,
0: क्या बात है,
1: एंड आई वाज द बेस्ट प्लेयर,
0: अरे वाह,
1: इन द टीम, यस।
0: तो आप बॉलर थे या आप?
1: मैं बॉलर ज़्यादा बेहतर था, ऑलराउंडर अच्छा। ही था ज़्यादातर, बट ज़्यादा बॉलर वाला काम था मेरा।
0: क्या बात है, तो फास्ट बॉलर थे?
1: फास्ट बॉलर, लाइक शोएब अख्तर।
0: वाह वाह वाह वाह, इतना एग्रेसिव, क्या बात है। तो अभी क्रिकेट देखने का वक्त मिल पाता है?
1: अब तो सर सिर्फ बस देखते ही हैं ऐसे, बस पोस्टर एडवर्टाइजमेंट में दिख जाता है और कुछ
0: जी नहीं। लेकिन घर से विरोध था क्रिकेट खेलने का?
1: विरोध ये था कि जब खेल के थे ना, वो मैं बता रहा हूँ ना, एक्सट्रीम होता है आर्टिस्ट हर चीज में।
0: खेल रहे हैं तो फिर बस,
1: फिर खेल रहे तो फिर इतना खेल रहे कि सुबह 9 बजे से गए, शाम को 8 बजे घर आ रहे हैं,
0: डरते डरते।
1: हाँ, कि मतलब कहाँ है, दिन भर बच्चा है कहाँ, मोबाइल भी नहीं था तब तो।
0: हाँ हाँ बिल्कुल,
1: कोई मैसेज ही नहीं है घर पे कि बच्चा जगह है कहाँ।
0: हाँ,
1: तो ये एक अजीब सी बात थी, मतलब सुबह गए हैं खेलने तो चले ही गए,
0: जुनून के तहत खेल
1: हाँ,
0: रहे।
1: वो फिर खाना पीना भी वहीं बाहर खा रहे हैं, कुछ चल रहा है नाश्ता पानी। और फिर उस वक्त क्या होता था, फिर जैसे आसपास के जो मोहल्लों में जो टीम होती है अलग अलग, जैसे
0: मुकाबले,
1: फॉर एग्जाम्पल वाई ब्लॉक का एक एक टीम है, जेड ब्लॉक का एक टीम है, तो उनका फिर मुकाबला भी हो रहा है,
0: बिल्कुल,
1: तो वो भी होता था कि शाम को मैच है, और उसकी तैयारी करने के लिए सुबह हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो वैसा रहता था, दिन भर चला जाता था उस जुनून में। फिर ध्यान नहीं रहता था कि घर पे बताना भी है, पर घर वाले तो
0: ये भारी भूल बड़ी महंगी पड़ती होगी।
1: हाँ, महंगी पड़ती थी।
0: अच्छा, पढ़ाई और संगीत में संतुलन कैसे बन पाता था?
1: पढ़ाई में मैंने आपको पहले ही इशारा किया था कि ज्यादा सवाल नहीं रखेंगे।
0: अच्छा। ये कोर्स से बाहर का सवाल है,
1: पर आप इशारा शायद समझ के भी आपने मुझे फिर वापस
0: ले आए।
1: आप बार बार मुझे स्कूल ले जाते हो, पता नहीं क्यों।
0: नहीं, स्कूल से बाहर आ जाते हैं।
1: स्टूडियो चलते ना,
0: स्टूडियो चलते,
1: मजा आता है।
0: आकाशवाणी के गलियारों से जुड़ी यादें बताइए। पिताजी तो स्टाफ आर्टिस्ट थे, तो
1: वहाँ पे
0: उनके साथ जाते होंगे आप स्टूडियो?
1: जी, हम जब जाते थे पिताजी के साथ, मैं दादाजी के साथ भी जाता था अपने, और दादाजी का जो ग्रुप था वो अलग था।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो दादाजी क्योंकि रिटायर हो गए थे तब तक,
0: हाँ हाँ,
1: जब हम उनके साथ जाते थे तो वो पेंशन के लिए जाते थे
0: जी,
1: दादाजी
0: जी।
1: अपने कुछ ऑफिशियल कुछ पेपर वर्क के लिए जाते थे उस वक्त, तो उनके साथ जाने का एक अलग मजा था, वो एक अलग फीलिंग थी दादाजी के साथ जाने का। तो फिर पिताजी के साथ भी हम जाते थे, तो पिताजी के साथ तो मतलब काम के लिए ही जाते थे ज़्यादातर। दादाजी के साथ कभी दादाजी का रिकॉर्डिंग होता था तो शहनाई का रिकॉर्डिंग होता था उनके साथ पूरा। अभी जो मैंने तानपुर चलाया
0: जी जी,
1: उसमें पेटी वाली सुरपेटी आती थी, तो कभी मैं कभी मेरे भाई हम लोग गए तो वो पेटी वाली सुरपेटी आज भी हमारे घर पे रखी है। तो वो सुर जो बैकिंग मिलता था सुर का, वो तानपुरा और वो पेटी वाली सुर का। तो फिर उसके बाद जब पिताजी के साथ जाते थे तो पिताजी कभी कभी अपने साथ, जैसे कभी पिताजी का रिकॉर्डिंग हुआ क्लासिकल किसी बांसुरी पे किसी ग्राहक का, तो पिताजी के साथ ऐसे ही सपोर्ट के लिए गए। और आकाशवाणी में ज़्यादातर फिर जब वो वाद्य वृंद की रचना उनकी जब रिकॉर्डिंग होती थी तो वो एक दिन की नहीं होती थी उसमें। अब सपोज कीजिए कि अगर 20 पेज का पूरा है कंपोजिशन है, तो शुरू में हमने 10 पेज किया, तो एक दिन 10 पेज हुआ, फिर एक दिन 10 पेज हुआ, फिर अगर कुछ ऐसा हुआ कि वापस करना है तो 4-5 दिन हो जाता था उसमें।
0: बिल्कुल।
1: तो उस वक्त क्या होता था सर कि हम जब जाते थे पिताजी के साथ तो वहाँ जितने भी बड़े जो सीनियर जो दिग्गज कलाकार सब अपने अपने घर के गुरु जो होते थे उनके बीच में बैठ के ना सबकी मजाक में भी जो बातचीत सुन के जो एक मज़ा तो आता था वो एंटरटेनमेंट अलग है, पर बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आती थी, दुनियादारी की चीज़ें समझ आती थी। बातचीत में से ये समझ आता था कि किस बात का कैसे जवाब देना होता था, हाजिर जवाब भी समझ में आती थी
0: जी,
1: और ये सब तो दुनियादारी की चीज़ें हैं, ये आप घर पे नहीं सीख सकते।
0: नहीं, बिल्कुल नहीं,
1: ये आपको घर से चौकट से बाहर निकल के ही पता चलता है। पर मुझे और मेरे भैया को बहुत प्यार देते थे सब, क्योंकि हम छोटे छोटे से थे और अपने काम में सिंसियर थे, और नोटेशन सबको प्रोवाइड करना और सबका ख्याल रखना। और हम जाते थे दोनों भाई, सपोज ये हॉल है, अब इस हॉल में चारों तरफ आर्टिस्ट ऐसे बैठे हैं सर्कल लेके, तो हम सबके पैर छूते थे। पिताजी हमारे घर ने, माता पिता ने ये बोला है कि बड़े जो है सब आर्टिस्ट है, सबका आशीर्वाद लो।
0: जी
1: तो पूरे एक हमारा चक्र घूम
0: चक्कर
1: जाता
0: लगता
1: तो वहाँ फिर वो बोलते थे कि बेटा इतना ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। वो जो वहाँ पे जो भी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने, जिनको लगता था कि ये बच्चे इतने अदबदार हैं, इतने प्यारे हैं, तो इनको एक तरीका बता दो। और तो पिताजी तो रोकते नहीं थे, पर उनमें से एक जो बड़े आर्टिस्ट हैं उन्होंने कहा कि बेटा ये पूरा ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको प्रणाम कर दो बीच में खड़े होके और फिर अपनी जगह बैठ जाओ। तो वैसा एक पिताजी के साथ एक अलग एक्सपीरियंस होता था। फिर रिकॉर्डिंग के बाद जब उनके साथ निकलते थे तो सब अपनी अपनी चीज़ें बताते थे उनको कि ये पार्ट में ये इस तरीके से अगर ये नोटेशन और क्लियर हो जाए या कुछ और ऐसा हो जाए। तो पिताजी वॉज ऑलवेज सो वेलकमिंग कि ऐसा नहीं कि वो उन्होंने कंपोजिशन बनाई है तो किसी और का सुनेंगे नहीं, क्योंकि सारे ही बाखूबी बड़े दिग्गज कलाकार हैं। तो वो अगर कुछ सजेशन उनको ऐसा लगता था कि नहीं इससे और खूबसूरत हो रहा है, ही ऑलवेज यूज टू टेक दिस सजेशन एंड मेक द
0: चेंजेस
1: म्यूजिक,
0: अकॉर्डिंगली।
1: मेक द चेंजेस अकॉर्डिंगली। एंड वो हमेशा ही रिस्पेक्ट करते थे उस जेस्चर का।
0: क्या बात
1: तो
0: है।
1: वो एक बड़ा, शाम को फिर एक अलग माहौल होता था उनके, जैसे कभी कभी बैठक होती थी घर पे हमारे या किसी और के घर पे बैठक हो रही है संगीत की, तो वहाँ पे मैं और जब हम दोनों भाई जाते थे तो आप सपोज़ कीजिए कि एक तरीके की क्लास ही होती थी, एग्ज़ाम ही नहीं होता था वो, कि आप कुछ बड़े बड़े आर्टिस्टों के बीच में उस एज में कुछ आपको बजाने के लिए बोला, अब आपको कुछ बजाने के लिए बोला है,
0: हाँ
1: अब वो क्या है वो आप डिसाइड कीजिए।
0: बिल्कुल।
1: सो आपको अब वो उसमें टेंशन बजाने से ज़्यादा, फीलिंग से ज़्यादा 80% टेंशन होता था कि क्या बजाए, गलत ना हो जाए,
0: इतने सारे लोग
1: इतने
0: हैं।
1: सारे लोगों के बीच में। तो उनकी वो एनर्जी और वो इम्प्रेशन भी और पर्सनैलिटी की वो विभूति सब बैठे हैं एक रूम में, तो उनके बीच में बैठ के बजा रहे हैं, तो एक घबराहट रहती थी। तो वैसा रेगुलरली वैसा ही था बचपन में ज़्यादातर,
0: गजब। यानी चारों तरफ सिर्फ संगीत संगीत और संगीत था।
1: वही था वही था।

जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत अभी आपने सुनी। ये था पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आप सुनेंगे अगले हफ्ते।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं। अब पहले हिंदी में समाचार और शाम 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
2: As democratic nations,
3: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
1: क्वाड देशों ने आज नई दिल्ली में अपने विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान गठबंधन के एजेंडे के प्रगति की समीक्षा की और हिंद प्रशांत से जुड़े क्षेत्रीय तथा वैश्विक घटनाक्रम पर चर्चा की। बैठक समाप्त होने के बाद विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि चर्चा क्वाड सहयोग के 4 मुख्य स्तंभों पर केंद्रित रही, जिनमें समुद्री और सीमा पार सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, सुरक्षा, महत्वपूर्ण तथा उभरती प्रौद्योगिकियां, मानवीय सहायता और आपदा राहत शामिल है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आतंकवाद रोधी प्रयास क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों तथा अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा सुरक्षा बल BSF की भूमिका की सराहना करते हुए कहा है कि बल ने न केवल सीमा की दृढ़ता से रक्षा की, बल्कि सीमावर्ती जिलों के लोगों का मनोबल भी बढ़ाया है। उन्होंने सीमा को पूरी तरह से अभेद्य बनाने के लिए BSF, सेना, प्रशासन और नागरिकों को मिलकर एक 4 स्तरीय ग्रिड बनाने पर जोर दिया। श्री शाह ने आज राजस्थान के बीकानेर के पास सांचू चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस ग्रिड की मदद से सीमा पर उत्पन्न खतरों का पूरी ताकत से मुकाबला किया जा सकेगा। इससे पहले गृह मंत्री ने सीमा चौकियों पर नवनिर्मित 14 महिला बैरकों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया।

अभी आपने सुना कितना बदल गया है इंसान फिल्म का ये भजन। भजन फिल्मों से इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

हेमंत कुमार व साथियों की आवाजों में अभी आपने सुनी ये भक्ति रचना, फिल्म का नाम भागवत महिमा। भजन फिल्मों से आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति बहार फिल्म से गीता दत्त की आवाज में।

गीता दत्त को अभी आपने सुना फिल्म बहार में। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति मोहम्मद रफी की आवाज में शिव भक्त फिल्म से।

0: रघुवंशी कुल रीत निभाते चाहे।
1: इसी भजन के साथ हमारा आज का भजन फिल्मों से कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आगे दीजिए नमस्कार।
0: लखनसिया के साथ अयोध्या छोड़ चले रघुराय।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भजन फिल्मों से FM बैंड 103.4 MHz पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवाओं के लिए कार्यक्रम युवा मंच। इसमें आज के इस अंक में हमारा विषय रहेगा सैर सपाटा।

युवा मंच कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को, हमारे प्यारे युवा साथियों को, आपकी दोस्त वर्षा टोच का प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग। दोस्तों, आप दिन भर काम करके या फिर पढ़ाई करके या फिर और कुछ करके या फिर ऑफिस से, कई हमारे युवा साथी जो अभी घर पहुंचे होंगे, तो जैसा कि आपने सुना है या जैसा कि आपको पता ही है कि शाम का सैर सपाटा हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो युवा साथियों, आप विजुलाइज कीजिए और चलिए मेरे साथ, क्योंकि आज के युवा मंच कार्यक्रम की इस कड़ी में हम आपको करवाएंगे शाम का सैर सपाटा। तो तैयार हो जाइए और तैयारी के साथ युवा साथियों, थकान से फ्रेश हो जाइए और चलिए मेरे साथ सैर सपाटे पर, मेरे साथ यानी वर्षा टोच के साथ, भारतवर्ष के बहुत ही खूबसूरत और आध्यात्मिक शहर वाराणसी में। लेकिन सैर सपाटे पर ले जाने से पहले मैं करवाना चाहूँगी अपने युवा साथियों का मनोरंजन, क्योंकि दिन भर की थकान से आप थक चुके होंगे। तो पहले आप अपना मूड फ्रेश कीजिए इस प्यारे से ट्रैक के साथ।

चलिए दोस्तों, आपकी थकावट जो है वो तो अब तक दूर हो चुकी होगी इस प्यारे से म्यूजिकल ट्रैक के साथ। तो जल्दी से तैयार हो जाइए और चलिए मेरे साथ वाराणसी। जी हाँ युवा साथियों, आज हम वाराणसी की सैर आपको करवा रहे हैं घर बैठे बिठाए। वाराणसी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी के तट पर स्थित दुनिया के सबसे प्राचीन और जीवंत शहरों में से एक है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों के लिए ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र है। लेखक मार्क ट्वेन ने कभी इसके बारे में कहा था कि बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं से पुराना है और किंवदंतियों से भी पुराना है। वाराणसी के अगर मुख्य आकर्षणों और उसकी संस्कृति की मुख्य उनकी बात करें तो वो इस तरह से हैं, जैसे कि अगर हम प्रमुख धार्मिक और दार्शनिक स्थलों की बात करें तो इसमें श्री काशी विश्वनाथ मंदिर यानी भगवान शिव के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक, जो शहर का मुख्य आध्यात्मिक केंद्र है। सारनाथ, वाराणसी के पास स्थित वह पवित्र स्थान जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। संकट मोचन हनुमान मंदिर, इसकी अगर हम बात करें युवा साथियों तो ये प्रसिद्ध मंदिर गोस्वामी तुलसीदास द्वारा स्थापित माना जाता है। दोस्तों, तो आज हम आपको करवा रहे हैं सैर वाराणसी की और ये साथ साथ उम्मीद भी कर रहे हैं कि आप अवश्य इसको इंजॉय कर रहे होंगे। मैंने पहले ही कहा था, विजुअलाइज कीजिए कि आप मेरे साथ सैर सपाटा कर रहे हैं और सैर सपाटे में आप आ जा रहे हैं वाराणसी। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आपका मूड और भी फ्रेश करते हैं। जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ 103.4 MHz पर।

0: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव

0: संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
1: ईमेल का पता है धर्मशाला आकाशवाणी@gmail.com। पत्र

तो दोस्तों, बनारसी रेशम साड़ी की अगर हम बात करें तो यहाँ की हथकरघा उद्योग से बनी बनारसी साड़ियाँ अपने सोने चांदी के जरी के काम और जटिल डिज़ाइनों के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। और खान पान के स्वाद की अगर आप बात करें तो बनारस का प्रसिद्ध बनारसी पान, कचौड़ी, सब्जी, मलाइयों और लस्सी यहाँ के पारंपरिक स्वाद का मुख्य हिस्सा हैं। संगीत और शिक्षा की अगर हम बात करें युवा साथियों, तो बनारस घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक प्रमुख स्तंभ हैं। साथ ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक हैं। तो चलिए फिर लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं आपकी सेवा में। बने रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ और अपनी दोस्त वर्षा टोश के साथ।

कार्यक्रम युवा मंच में फिर से आप सभी श्रोताओं का, हमारे युवा साथियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज आप कर रहे हैं सैर सपाटा अपनी दोस्त वर्षा टोच के साथ। और मैं आज आपको सैर सपाटा कहाँ का करवा रही हूँ, वाराणसी का। जी हाँ युवा साथियों, वाराणसी अपने 84 से अधिक ऐतिहासिक घाटों के लिए जाना जाता है। दशवमेघ घाट यहाँ की भव्य शाम की गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध है, जिसे देखने देश विदेश से पर्यटक आते हैं। जी हाँ युवा साथियों, इस आरती का अपना ही नज़ारा होता है। तो चलिए लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक और फौरन हाजिर होते हैं आपकी

0: युवा साथियों, अब हम पहुंच गए हैं सैर सपाटे के अंतिम क्षणों में। अगर हम वाराणसी के अस्सी घाट की बात करें तो गंगा और अस्सी नदी के संगम पर स्थित ये घाट सुबह ए बनारस आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए लोकप्रिय है। और अंत में हम बात करते हैं मणिकर्णिका घाट, इसे महाशमशान कहा जाता है, जहां जीवन और मृत्यु के शाश्वत सत्यों को करीब से देखा जा सकता है। नमो घाट की यानी खिड़किया घाट भी इसे कहते हैं। यहां कलाकृतियों और आधुनिक सुविधाओं को बात देखते ही बनती है। ये कलाकृतियों और आधुनिक सुविधाओं से लैस वाराणसी का एक नवविकसित बेहद खूबसूरत घाट है।
1: लता मंगेशकर मुंबई में, सचिन तेंदुलकर मुंबई में।
0: युवा साथियों, तो आज आपने सैर सपाटा किया अपनी दोस्त वर्षा टोच के साथ और शहर था वाराणसी। युवा साथियों, हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये बदला हुआ स्वरूप यानी कि युवा मंच का ये अंक जो भी हम हर रोज़ आपके लिए लेकर आते हैं, ये कैसा लगा आपको, आप हमें अवश्य पत्र लिखकर या व्हाट्सएप के माध्यम से बता सकते हैं। तो चलिए, अब घड़ी की सुइयां जो हैं वो ज़्यादा बोलने की अनुमति नहीं दे रही हैं, तो चलते चलते आपको बता दें कि इस मनोरंजक और जानकारियों से भरे कार्यक्रम युवा मंच के प्रस्तुतकर्ता थे डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। और अब अपनी दोस्त वर्षा टोच को जाने की अनुमति दीजिए, लेकिन जाने से पहले मैं ये अवश्य कहना चाहूँगी कि मौसम में भारी बदलाव हो रहा है, ऐसे में आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। चलती हूँ, अगले कार्यक्रम में फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी धर्मशाला से शाम के प्रसारण में शेष प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों का, क्योंकि ये समय है 5:55 का। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:06 पर सदाबहार संगीत आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत के अंतर्गत। शाम 6:30 पर हम प्रसारित करेंगे कार्यक्रम मौजा ग्राइंदियां, जिसमें आप सुनेंगे हास्य नाटक नोखे लोग नोखियां गल्ला। कार्यक्रम किसानवाणी हम प्रसारित करेंगे शाम 7:10 पर। इसमें नर्सरी प्रबंधन परीक्षण के उपरांत विषय पर आपसे बातचीत की जाएगी, साथ ही साथ लोकगीतों से आपका मनोरंजन भी करवाया जाएगा। रात्रि 8:00 मिले जुले गीतों का कार्यक्रम सबरस प्रसारित किया जाएगा। देशगान आप सुना करते हैं रात्रि 8:30 पर। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत आज रात्रि आप सुनेंगे गायिका ममता शर्मा द्वारा गाए कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। रात्रि 9:30 से रात्रि 10:30 तक लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम धाम गीतांदी सुनवाया जाएगा। रात्रि 10:30 पर कार्यक्रम चित्रपट संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे पुरानी फिल्मों से कुछ गीत। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:07 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से शाम 7:00 व रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार, शाम 7:05 पर व रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या व रात्रि 9:00 News@9 भी आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले किए जाएंगे। श्रोताओं, ये थी विस्तृत रूपरेखा हमारे धर्मशाला के केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ से आज शाम के प्रसारण में शेष प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की। FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:58 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:00 प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला के इंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण के लिए आज चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। पहले चरण के तहत आज प्रदेश की 1293 पंचायतों और जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य के लिए सुबह 7 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक मतदान हुआ। मतदान संपन्न होने के बाद पंचायत प्रधानों, उप प्रधानों व वार्ड सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती जारी है और कई स्थानों पर नतीजे भी घोषित कर दिए गए हैं। इस बार निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाने के लिए मत पेटियों में स्कैनर की सुविधा शुरू की है। मतगणना में कोई भी गड़बड़ी रोकने और इसमें पारदर्शिता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग ने 100% मतदान केंद्रों को सीसीटीवी कैमरों से जोड़ा है। इस बीच आज पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। पहली बार मतदान करने वाले युवाओं से लेकर उम्र दराज मतदाताओं तक ने लोकतंत्र के इस महापर्व में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। बिलासपुर जिला की घुमारवी विकास खंड की सेऊ ग्राम पंचायत के पिंक बूथ पर प्रदेश की सबसे उम्र दराज मतदाता 113 वर्षीय मंगलू देवी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसी तरह शिमला जिला की ननखड़ी तहसील की ग्राम पंचायत खमाड़ी के करोली गांव की 100 वर्षीय रामपति और हमीरपुर जिला की टिक्करी मिनहासा पंचायत के वार्ड नंबर 1 में समलोग गांव की 100 वर्षीय रेशमो देवी भी वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंची। अधिकांश मतदान केंद्रों पर गर्मी के चलते सुबह के वक्त मतदाताओं की जोरदार भीड़ उमड़ी और लोग कतारों में खड़े होकर मतदान के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। कई ग्राम पंचायतों में मतदान की समय सीमा खत्म होने के बाद भी मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखी गईं। इस बीच कुल्लू जिला में 80% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। जिला के नगर विकास खंड में 85.18% और आनी विकास खंड में 82% मतदाताओं ने वोट डाले। सिरमौर जिला में 75.52% जबकि सोलन जिला में लगभग 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ऊना जिला में 76.28% और बिलासपुर जिला में 75.61% मतदान हुआ। बिलासपुर जिला के झंडुता उपमंडल की भड़ोली कलां पंचायत के वार्ड नंबर 1 भड़ोली खुर्द के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। आज हुए पंचायत चुनावों में महिलाओं ने भारी संख्या में मतदान किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निर्देश दिए हैं कि मंडी मध्यस्थता योजना के तहत खरीद पर बागवानों को भुगतान के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की संभावनाएं तलाशी जाएं। मुख्यमंत्री शिमला में बागवानी विभाग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मौजूदा भुगतान प्रणाली में बागवानों को मंडी मध्यस्थता योजना के तहत की गई खरीद पर नकद राशि के स्थान पर विभाग द्वारा अन्य सामग्री प्रदान कर भुगतान किया जाता है। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम से छोटे और सीमांत सेब उत्पादकों की आर्थिकी में सुधार होगा। रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति ने वन विभाग से बांध प्रभावित क्षेत्र में निष्पक्ष तरीके से पेड़ों की गिनती करवाने की मांग की है। रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति के प्रेस सचिव योगी ठाकुर ने आज नाहन में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि यदि इस कार्य में पारदर्शिता नहीं बरती गई तो समिति मामले को न्यायालय में ले जाएगी। समिति ने चुने हुए जनप्रतिनिधियों से भी इस मुद्दे को गंभीरता से उठाने और प्रभावित लोगों की आवाज बुलंद करने की मांग की है ताकि विस्थापितों को न्याय मिल सके।
1: जब वो काउंटिंग वहाँ पे कर रहे थे, वो वहाँ पे काउंटिंग कर रहे थे जहाँ पे पेड़ कम थे। उसका मतलब ये हुआ कि वो एक रिपोर्ट बना चाहते हैं कि जिसमें कम से कम पेड़ आए। तो विस्थापित जो हमारे भाई लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो है जो भी कार्य हो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। उन्होंने जो उतना बड़ा पहाड़ बिना किसी परमिशन के काटा है, वहाँ जो जेसीबी लगी है, ना तो उसके ऊपर कोई FIR हुई है। और मैं जो सिरमौर के अंदर जो हमारे प्रभावशाली नेता है, मेरा इन सभी नेताओं से भी एक निवेदन है कि इसमें आप जो है थोड़ा अपना भी भागीदारी जरूर रखें ताकि विस्थापित भाइयों को जो है कम से कम उनका जो एक हक है वो मिल सके।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
2: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:06 हुए हैं। आइए सुनते हैं सदाबहार संगीत कार्यक्रम फिल्म संगीत के अंतर्गत। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जी श्रोताओं, माँ बाप का प्यार अपने बच्चों के लिए बट वृक्ष की वो छाया है जो कभी कम नहीं होती बल्कि बढ़ती ही जाती है। श्रोताओं, बेटियों का जो स्नेह अपने माँ बाप के प्रति होता है उसका पार पाना बहुत ही मुश्किल है। बेटियां अपने पापा की परी होती हैं, लेकिन श्रोताओं यही बेटियां जब दूसरे घर जाती हैं या यही बेटियों को जब दूसरे घर भेजने की बारी आती है तो माँ बाप के दिल पर क्या बीतती है इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो चलिए श्रोताओं, देखते हैं कि कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति में बेटियों के लिए क्या कुछ कहा गया है। चलिए सुनते हैं।

श्रोताओ, इस गीत को गाया था अलका याग्निक किशोर कुमार ने, शब्द रचना थी अंजन की और संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने, फिल्म का नाम था दाता। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में ये क्या कह रही हैं।

जॉनी मेरा नाम इस फिल्म में अभी आपने सुना। लता मंगेशकर की आवाज़ को गीतकार थे इंदी वर संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। जी हाँ श्रोताओं, सदाबहार संगीत कार्यक्रम इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। और आज मैं हूँ आपके साथ वर्षा कटोच, बात कर रहे हैं माँ बाप और बेटियों के प्यार पर। तो चलिए अगले गीत में सुनते हैं कि ये बेटी क्या कह रही है।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में गाया झील के उस पार फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति से पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: कार्यक्रम सदाबहार संगीत इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से, और आज के सफर में मैं हूं आपके साथ वर्षा कटोच। बात हो रही है इस गीत में, चलिए तो सुनते हैं क्या बात हो रही है।

नीलकमल फिल्म के इसी गीत के साथ हमारा आज का सदाबहार संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आधारित था बाबुल शीर्षक पर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मौजा ग्राइंदियां। इसमें आज आप सुनेंगे हास्य नाटिका नोखे लोक नौखियां गल्लां।

कार्यक्रम मोजां ग्राएं दीआं सुनने वाले सारे किसान साथियों जो कि बाकी सुनने वाले श्रोतियां जो सैकटरी की राम राम कहने किसान साथियों अज मंगलवार है कहने मंगलवार हाँ तुम तो सुना दिन पहाड़ी नाटक कहने अज जड़ा नाटक हाँ तुम तो वास्ते लई कह सह है आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में तो सुन दे पहाड़ी नाटक।

रेडियो सिर्फ एक डब्बा नहीं है, ये तो यादा का खजाना है। ये आवाज़ है भरोसे दी, साथी है सुख दुख दा। 90 साल ते हर घरे हर दिले तक पहुँचता है, जिंदगियां सौगी जुड़ता है आकाशवाणी।

0: एंड साउंड इफेक्ट्स लाइक दिस दिस दिस
1: बंग।
2: क्या आप अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए
3: दादी जी सुना दे ना दादी जी मुझे ए दसा ए पुराना डब्बा दे तो हां कई और रखे संभाली के आज भी इक्का ने सी लाई रख दे ऐ क्या इस च
4: ओ कुड़िए जार वरी तिजो गलाया मिये डब्बा मत बोला कर ए ता मेरे दिले दी धड़कन मेरे प्राण बस दे इस डब्बे च ए ता मेरी जान है मिये कुड़िए
3: दादी जी मुझे ए समझ नहीं आंदी ए क्या इस डब्बे च आजकल फोने दा जमाना है सब कुछ होंदा फोने च गाने होंदे भजन भी होंदे खबरां पॉडकास्ट सब कुछ फोने च होंदा
4: मुंड तेरा होंदा फोने च आई इयां सखाना तो हां पुराने जबरे आयो कुड़िए फोन ना जानकारी दे सकदा गीता सुनाई सकदा नोया नोया पर रेडिया जिसियो तू डब्बा गला दी ए तमिये दिले दा एहसास है
3: एहसास
4: हां एहसास मिये मेरे दिले दे सारे तार जुड़े इसने एक एक गल मेरी सरेड़िए न जुड़ियो कने रेड़िए या सारीया गल्ला मेरे दिले च ता सुन जरा करिया मिये जालू जालू मैं सरेड़िए सुन दी तेरे दादे दी बड़ी याद आंदी मिंजो बड़ा भारी रेड़िया सुन दे थे से ए डब्बा जिसियो तू गला दी तीना दिया यादा दसमाली के रखिया मिये जालू जालू इसियो दिख दी सुन दी बड़ी पर याद आंदी मिंजो तीना दी जालू बिजली नहीं आंदी थी ना ना कोई टीवी होंदा था तालू ए रेड़िये ही हाड़ा संसार होंदा था सह जमाना ओहो हो है ता जमाना ही कुछ और था तिस जमाने दी क्या गल लाणी क्या तंजो समझाना जालू आहां सारे कठे होई करिया मैं बैंदी थी

0: तेरे दादा बहनदे थे, तेरे पापा, चाचू, तेरी बुआ, कने तेरी चाची भी, जालो हाँ सारे कठे होई के बहनदे थे, खबरां सुनदे थे, लोक गीतां सुनदे थे, क्या नजारे होंदे थे तिना टाइमां दे। ए रेडियो ही साड़ा संसार होंदा था, मिये एक हिस्सा बनी या था हाड़े परिवारे दा। पूरे ग्राएं च केड्डा बड़ा ग्रां है, दिखिया कदी अंडिया कदी, इस सारे ग्राएं च एक रेडिया था मिये, जेड़ा तेरे दादा लंदिया था। ए नसाणी है तिना दी, ए मेरिया यादा ने, आज भी मैं तिना टाइमा याद कर दी, कने पता नहीं याद कर दी कुतू जाई रहंदी।
1: सुना सुना सुना, आओ आओ चाटवा, चाची, ताई, अम्मा, बाबा भी गलान्यो, उन्हें आने को तांगे तुसा, आओ आओ, खबर शुरू होने आ रही है न।
2: ग्राएं दे चौपाल च एक रेडियो होंदा था, कने सारे ग्राएं दा सा उसी रेडियो कने चलदा था।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनेंगे।
0: ओए न्याणियो, हाँ बड़ा भारी अल्ला पांदे, खबरां दा टाइम जी होंदा ता बड़े भारी बकदे, चुप भी है सारे, खबरां लगने आड़ियां हुण, खबरां सुना हुण मन चित लाई करिया। ओ चुप करा मैं हो, ओ न्याणियो लाड़िए चुप करिया, ओ लगी पईया खबरां मैडम बे ये यो रेडिये च, बस करा हुण।
2: फिरी आया सै टाइम, जाली मुल्क मुश्किलां च

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ, HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: हमारे वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं और देशवासियों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं।
3: उस वेले रेडियो सिर्फ खबर नहीं, हिम्मत होंदा था, दिलासा होंदा था, उम्मीद होंदी थी।
2: लड़ाइया टाइम में जालू रेडियो च देशभक्ति दे गीत बजदे थे ना, तालू दिला च जोश भरू जांदा था, तालू दिल बड़ा बड़ा हो जांदा था।
4: कने इस रेडियो च खेतीबाड़ी दे कार्यक्रम, सेहता दी सलाह, बच्चियां दे नाटक, सब कुछ सिखाया इन्नी रेडियो असायो।
5: दादी जी, मैं समझी गई दादी जी, ए रेडियो सिर्फ एक मशीन ही नहीं थी, ए तो सचमुच परिवार दा हिस्सा था।
2: आ कुड़िये, आया ना समझ, जिस साबे ने अजे दी दुनिया दौड़ी हो है, रेडियो तो मिये तिसा दौड़ा बीच भी साढ़े दिले ने गल्ला करा दा।

0: सारियां जो याद है जाली सड़कां सुनसान थियां, दरवाजे बंद थे, लोग घरां अंदर कैद थे, कने हर पासे एक डर दा माहौल था, डर कोरोना दा डर।
1: इस रेडियो च ता बड़े छैल छैल गीत होंदे, कने मैं ता केई गीत जेड़े से याद भी करी लियो, कने बड़े छैल लगदे से गीत, गीत भी लगी रहंदे, कने मैं अपने कम्मे भी कमांदी रहंदी।

0: चाचा जी, चाचा जी।
1: अंजीत ये क्या होइया?
0: चाचा जी क्या करा दे तुसा? बाहर दिखा ना कोरोना लग गया, ना मैं स्कूल ले जाई सकदी, ना मैं खेलना जाई सकदी, ना मैं घूमना जाई सकदी। मैं तो बड़ी बोर होआ दी, कने रेडियो च तुसा क्या सुना दे?
1: हरियां जानकारियां जेड़ा सा इत्थों मिलना करदियां।
0: पर खबरां तां टीवी च भी आउंदियां, तुहां टीवी क्या नहीं लगाया? टीवी दिखा वाला कितना कुछ दसा दे कोरोना दे बारे च।
1: इना टीवीयां च क्या होदा कि खबर तां ओआ करदी ना, लेकिन मरिया डरा दे बड़े बारी। कने इत्थों भाई सीधी सीधी गल गला दे कि भाई इयां करा, इतनी देर तक हथ धोवा, ज्यादा कुछ ने मत मिलना। कने थोड़ी थोड़ी देर बाद इस रेडियो च पता क्या होआ दा, जियां मन बड़ा उदास होई जादा तां विच विच ना गाने भी आ जाते। कने जलू अहां दे पहाड़ी गीत बजा दे, हिमाचली लोक गीत, तो मैं चार फराटियां भी लाई लिया है। कने इस तो बाद फिर ते कोरोना दे समाचार आई जाते।
0: चाचा जी चाची कुथू है?
1: वो चाची तेरी मियर सैलू में बैठी हो ब्याह का दी। कने ते सही पता है कि जलू मैं घर रेडियो कन्नै बेही हाँ ना, तो मुझे बाकिया छैल छाल गोल गोल गोरिया गोरिया रोटियां चाहिए होनी, सह रोटियां बना कर दी ना, अख पाई के दिखी ला क्या पता आई आए।
0: अच्छा था मैं चाची जो अख पाए उनकी। चाची जी, चाची जी
2: आईया
0: बनाई बैठे रोटियां?
2: ए दिख तू।
0: अच्छा चाची ए छड्डा, चाचा कुछ रेडियो च सुना कर दे ना। चला सुन दे ना रेडियो च क्या लग गया है।
2: खबरां लग गया रहनी है 24 घंटे, खबरां सुनी सुनी मिये मन डरी आंदा कुड़िये। हां बड़ा भारी मन घबरांदा मेरा।
1: मैं तो तुहानू यही गलांदा दुनियो की घबरां मत, है ना, सीधा रेडियो लगा कने रेडियो दे टक्के बेहिया।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। सारे श्रोताओं से विनती है कि घर के अंदर रहें, मास्क पहने, एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखें, घबराएं नहीं और सावधानी रखें।
2: सुनिया कुड़िए तै दिख भला तेरे चाचा में ये बिल्कुल सही गलांदे। रेडिया सच गला दा, सच डर ता लगा दा पर इन्हें खबर सुनी हौसला भी मिला दा, कोई अफवाह नहीं फैलांदा ता तू।
3: कोरोना से बचने के लिए हाथ साबुन से 20 सेकंड के लिए धोएं।
0: चाची जी हुण मैं टाइमर लगाई के 20 सेकंड तक अपने हाथ रगड़ी रगड़ी के छैल कीती मली मली के धोने हैं, सारा कोरोना ही नसाई देना है।
2: कड़ी बन्नी लैनी कथे, कड़िया दिख दे रे कना थमल दे रे।
1: ओ मिये ते ये ते जदों होनी पता लगा, मैं जालू ते रेडियो सुना दा ना, मैं तालू ते बिया सिकिंटा ते घर जड़ा सा पूरा हाथा धोआ दा मली मली धोआ दा।
4: लॉकडाउन च लोग एक दूजे ते दूर होई गए, पर रेडियो हर घरे च पूजी गया।
2: बोबो बोबो सुना दिए? आंजी आंजी, ओवा ओवा बोबो, ओवा बिया। रेडियो च आज ना बड़े पुराने पुराने गीत ओवा देन, आइया मिली के सुन देन, मन कुछ अलका होयांगा।

0: रेड़िया गलांदा रंदा तइया लगदा कोई अपना बैठिया घरे ही बैठिया कने गल्ला लगया।
1: अब सुनिए डॉक्टर साहब की सलाह।
2: क्योंकि कोरोना कई राज्यों में बढ़ रहा है और इसका खतरा भीड़भाड़ वाली जगहों में ज्यादा होता है, इसलिए ऐसे स्थानों पर जाने से बचें। मास्क लगाना, हाथों की स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग या फिर गर्भवती है तो अतिरिक्त सावधानी बरतें। उनसे मिलने से पहले हाइजीन का विशेष ध्यान रखें और खास तौर पर कहीं बाहर से आने के बाद अपने हाथों को सैनिटाइज करें।
1: सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि इस मुश्किल घड़ी में बताए गए सभी नियमों का पालन अगर अच्छे से करेंगे तो ये मुश्किल घड़ी भी आकर चली जाएगी। जरूरत है तो इस समय धैर्य और संयम की। आकाशवाणी हमेशा आपके साथ है।
3: हां जी चाचा जी, ए रेडियो गीतां भी सुनांदा, कहानियां भी सुनांदा, कने रोज नोईयां नोईयां उम्मीदां भी जगांदा।
4: सावास मेरा बच्चा सावास, तू समझिए इसका मतलब है ना जी, तो रेडियो पढ़ांदा भी कने रेडियो सिखांदा भी।
5: कोरोना दे तिना कठिन दिना च जाली दुनिया रुकी गई थी, रेडियो चलदा रहा, खबरां लेके सलाह लेके हिम्मत लेके 90 साल ते हर मुश्किल च साथ निभांदा आकाशवाणी साडे दिलां दी आवाज।
6: आकाशवाणी दे 90 साल पूरे होने दे मौके च सारियां श्रोतियां दा बड़ा बड़ा धन्यवाद।
5: 90 साल, अनगिनत आवाजां, लखां कहानियां, टाइम बदलिया, साधन बदले, पर एक रिश्ता आज भी कायम है, रेडियो कने साड़े श्रोतियां दा। आकाशवाणी जेड़ी बोलदी रही कने सांझो जोड़दी रही।

0: आकाशवाणी दे 90 साल साड़ियां दिला देनाल। रेडियो बोल दाई रिया।
1: किसान साथियों, आकाशवाणी दे 90 साल पूरे हो अगर दिन कि 90 साल पूरे होने के उपलक्ष्य विच यह था एक छोटा जिहा पहाड़ी नाटक। उम्मीद करते हैं तुहानू यह नाटक पसंद आया होना है। तो हुण सैकटरी दी इजाजत। अच्छा जी, जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजा ग्राइंदियां FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7 बजने को है और पहले हिंदी में समाचार व शाम 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। श्री अमित शाह ने कहा कि घुसपैठ और अन्य कारणों से अस्वाभाविक जनसांख्यिकी बदलाव हो रहा है। गृहमंत्री ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल लाल किले से स्वतंत्रता दिवस संबोधन में जनसांख्यिकी बदलाव पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अगले 6 महीनों के भीतर ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि जहां सीमा पार से आने वाले खतरे महत्वपूर्ण बने हुए हैं, वहीं देश के भीतर ऐसे खतरों में मदद करने वाले आंतरिक तत्वों पर भी उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा तथा पारदर्शिता बढ़ाने के लिए समुद्री निगरानी को मजबूत करने और गतिविधियों की एक साझा तस्वीर तैयार करने की पहल पर सहमति जताई। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा तथा फिजी में एक प्रायोगिक आधार पर बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। क्वाड देशों ने भारत अमरीका महत्वपूर्ण खनिजों की रूपरेखा पर भी हस्ताक्षर किए। बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। उन्होंने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की भी निंदा की है।
2: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।

0: इस कार्यक्रम दे प्रायोजक
1: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे किसान साथियों जो कने बाकी सुनने वाले श्रोतियां जो सेक्रेटरी दी राम राम कने किसान साथियों क्या हाल चाल हैं कने आज जड़ी यहां गल तो हां कने करनी है सह नर्सरी प्रबंधन परीक्षण दे बारे विच ता ओ तो हां जो ले चल देना हां अपने ग्रां दी तरफ कर दिख देन कौन-कौन किसान किन्या-किन्या क्या-क्या काम करा करदे नी सी वेले
2: ए मेरे बैंगणा दी पनीरी तां चली ओ खरी मिर्चां दी कने ए शिमला मिर्च कहन लगी होंगी सुकना ए क्या होया होगा कने भाई भिंडी भी लगी है निकलना पर ये टुक्की खा दा के की क्या टुक्का दाऊंगा ये
1: और नमस्कार नमस्कार ग्राम सेवक जी क्या हाल चाल है
2: ओ राम राम राम राम सेक्रेटरी जी राम राम हाल चाल तो देखा हूँ मैं ना ये अपने पनीरिया देखा था भाई नर्सरी देखा था ना ता ओल पई आ भाई दिखा कुछ बूटे तो खरे लगे कने कुछ तो भाई खराब ही लगी पे होना
1: अच्छा ता ही तो नर्सरी च बड़े समझा भी है
2: ता देखा जी आज थोड़ा मौसम सुहावना था ना ता मैं भी सोचा भाई अपने पौद्या का थोड़ा जहा हाल चाल दिखी लीए कने वैसे साढ़े ग्राएं की गल की जाए तो मैं ग्राएं च किसान काफ़ी अच्छी नर्सरी तैयार की थी यो।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल मैं भी देखा कि भाई पौधे की बढ़वार जी बड़ी अच्छी हुई हो है कने ये जड़े हरे भरे पौधे ना इन्हें दिखे कि मन जो ऐसा इं भी खुश हो जाता
2: बिल्कुल तुहां ठीक गलाया कने दिखा किसान की असली उम्मीद तो इतों ते ही शुरू होंगी अगर नर्सरी मजबूत हो ना ताई जड़ा ऐसा साड़ी फसल भी खरी हुंदी
1: बिल्कुल ठीक लाया तो हाँ कहने दिखा जी अहां दे कई किसान हैं जड़े नर्सरी बनाई तो लेंदे पर इसके बाद परीक्षण करैती दी जड़ी देखभाल है ना तिहा पर ज्यादा ध्यान जड़ा ऐसा नहीं दिंदे ना
2: यही तो गल जड़ी ऐसा नुकसान कर दी सेक्रेटरी जी कहने दिखा नर्सरी च हर दिन पौद्या का निरीक्षण करना जड़ा ऐसा बड़ा जरूरी है
1: दिखा ना अगर ये पौधे जड़े न सीधे मजबूत होंगे ता ही ये मजबूत किने खड़ूंगे ता निरीक्षण तो करना बड़ा जरूरी है
2: जी बिल्कुल तुम ठीक लाया कने दिखा यही टाइम है इस पर पानी कने सही पोषण साड़ी नर्सरी मिले तो साड़ी पौध जड़ी ऐसा स्वस्थ होनी कने स्वस्थ पौध की पहचान ही जड़ा ऐसा हरा रंग मजबूत तना कने अच्छिया जड़ा
1: दिखा जी कुछ किसान तो हाँ ऐसे भी हैं जो चलो पौधा पीड़ा पी जाता है तो इस पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे
2: पर दिखा ना तैलू तक जेडे असें देर हो जाती ना जैलू पौधा पीड़ा पी आया तो फिर साढ़े फसल जेडी असें नुकसान लगता होना कने अगर शुरुआत च ही पत्तियां दा रंग बदलता दुसना लगी पोए ना या पौधे कमजोर लगना लगी पौन तो इसकी तुरंत जांच जी असें करवाई लेना चाहिए है
1: दिखा जी बिल्कुल ठीक गलाया कहीं दिखा अजकल जरा मौसम है ऐसा भी अचानक बदलता है कने कभी बारिश कने कभी तेज धूप तो इसका भी बड़ा भारी प्रभाव रहा
2: बिल्कुल तो हाँ ठीक गलाया बई मौसम का तो साड़ी पौध पर साड़ी नर्सरी पर बड़ा असर पाँगा कने मौसम के अनुसार ही जरा असें सिंचाई कने छायांकन जरा असें जरूरी है
1: बिल्कुल ठीक जी सिंचाई की गल की है तो एक गल दसा कई किसान जरा ज़्यादा पानी देंदे तो ये भी कोई गल समझदारी है भला
2: ये तो भाई बड़ी बड़ी गलत फहमी है सेक्रेटरी जी दिखा नर्सरी च जरूरत से ज़्यादा पानी देना भी जड़ा ऐसा नुकसानदेही हो सकता कने साढ़े पौद्या की जड़ा ऐसा सड़ाई दिता
1: कने जड़ा घट पानी इंदे पौधे सुकना लगते तालू
2: तालू भी महाराज दिखा एक हल्की कने संतुलित सिंचाई ही सांझो करना चाहिए कने सब ते बड़ी गल ये है कि सिंचाई जड़ी ऐसा भ्यागा कने संझा दे वेले ही करना चाहिए
1: दिखा जी मैं तो कुछ किसाना जो जड़ा स्प्रिंकल होंदे ना जिहदा भी उपयोग करते दिखिया है
2: हाँ भाई ये तो ठीक बोला दे इसते क्या होंदा कि पानी की बचत भी होंदी कने पौद्या च बराबर नमी बनी रहती है
1: जी ग्राम सेवक जी अजकल दिखा जैविक खेती की भी खूब सारी चर्चा जी

0: दवाइयां जड़ियां सब पाई लैंदे न फ्री
1: ये
0: दी।
1: तां भाई बड़ा नुकसानदेही हो सकदा ना। कहे कि दवाई दा उपयोग कृषि विशेषज्ञ दी सलाह ते ही करना चाहिदा, अपनी मर्जी आ जे अगर तुहां सलाह करगे ना तां फिर इसे नुकसानदेही हो सकदी।
0: देखो पिछले साल भी यहाँ दे कई किसाना जड़ा है नर्सरियां विच जिहड़ी फफूंदी लगी गई ही,
1: जी
0: तां इस
1: जी
0: दा भी कुछ ना कोई कारण मुझे लगदा कि कहां दी कुछ गलतियां होनियां न।
1: बिल्कुल, इसका मुख्य कारण जड़ा ऐसा जल भराव कने गंदगी रहिंदा आसपास, कने नर्सरी दे आसपास जड़ी इसे अगर साफ सफाई होंगी कने साड़ी फसला दे जेखा ठीक तरह ने सहयोग होगा ना, ते ना गंदगी जड़ी नहीं होंगी तो फसल खरी होनी।
0: बिल्कुल, कने जे खरपतवार भी यहाँ समय समय पर हटाते रहेंगे ना, तो यह भी यहाँ एक बड़ा जरूरी काम है।
1: बिल्कुल, पौद्या जो पोषण कने नमी जड़े ने सह ये खरपतवार ही छिंदे ने, जिसकी वजह ने साड़ा पौधा जड़ा सह बड़ा नहीं हो
0: कने
1: पाता।
0: जे कीटा का हमला भी इस करके बड़ी जल्दी होंगे मैं सुनिया।
1: बिल्कुल भाई, ताई तो बोलते कि अहाँ यो अपनी नर्सरी दी लगातार निरीक्षण जड़ा सह करना चाहिए, कने जे अगर निरीक्षण के दौरान सानू लगता है कि पत्तियां च छेद धब्बे या कोई कीट दुसना लगी पौना तो इसका तुरंत उपचार जड़ा सह करना चाहिए है।
0: बिल्कुल, दिखा कृषि विभाग भी किसाना जो समय समय पर जड़ा है जानकारी जड़ा सा दिंदा रहता है।
1: बिल्कुल, तो दिखा कृषि विज्ञान केंद्र कने कृषि अधिकारियों ने सांझ जुड़ी के रहना चाहिए।
0: ग्राम सेवक जी हाँ यूँ ध्यान देना चाहिए कि जड़ा किसान दे पौधे ना सर
1: जी
0: जल्दी खेते विच लगी आना चाहिए मेरे हिसाब से।
1: बिल्कुल जी, पौद्यां दा पूरी तरह तैयार होना जरूरी है। जल्दू पौधा चार पांच अच्छी पत्तियां देना लगी पोया ना कने जड़ा मजबूत हो जान तो इस दी रुपाई जिहड़ी इसे करी देना चाहिए है।
0: कने रुपाई ते पहले पौद्या जो थोड़ा खुले वातावरण का आदि भी अहें बनाना चाहिदा।
1: जी इसी अहां हार्डनिंग गलांदे हैं ना, और इस प्रक्रिया ते पौधे जड़े इनसे खेतों च जल्दी जमी आंदे।
0: मतलब कि नर्सरी ते खेते दा हर एक कदम जड़ा है ना सा बड़ा महत्वपूर्ण होंदा।
1: बिल्कुल, छोटी छोटी सावधानियां जड़ियां ना ये बड़ी सफलता देनियां।
0: किसान भाइयों कने बहनों, स्वस्थ नर्सरी ही अच्छी खेती की जड़ी पहचान है।
1: बिल्कुल, और ये सही परीक्षण, संतुलित सिंचाई, उचित पोषण, टाइमे पर रोग नियंत्रण अगर अहाँ कर दें तो उत्पादन च कई गुणा तक जड़ा सह बढ़वार हो सकती है।
0: कने इसके कारण जड़ा ऐसा खेती का खर्च भी जड़ा ऐसा अदा किया जा सकता।
1: कन्ने ही जैविक कने आधुनिक तकनीकां जो अपनाई करी किसान अपनी आय जो भी बढ़ाई सकते हैं,
0: ता ओवा जागरूक बना,
1: कने दिखा वैज्ञानिक तरीके ने नर्सरी प्रबंधन करा,
0: सही
1: सही
0: नर्सरी
1: नर्सरी
0: प्रबंधन
1: प्रबंधन
0: अपनाएं,
1: अपनाएं,
0: खेती
1: खेती
0: को
1: को आधुनिक
0: आधुनिक
1: और
0: और लाभकारी
1: लाभकारी बनाएं।
0: बनाएं।

0: जी सेक्रेटरी जी, दिखा कितना बांका लोकगीत था है ना।
1: जी बिल्कुल
0: और लोकगीत के बाद अगला पड़ाव साड़ा जानकारी दा है,
1: जी
0: ता ट्याली पर उन्नत किसान आयो न ता सुन लीजिए ना दी गल बात।
1: जी बिल्कुल वो सुन दे कि हाँ किसान साथी जेडे से किन्या कने कैस दी खेती करा कर दे।
0: जी
2: किसान साथियों, किसान वाणी दे ट्याले पर नित नई जानकारी जेड़ी से तुहाड़े कन्ने हां सांझा करदे रहंदे। अज असां एक उन्नत किसान कन्ने तुहाड़ी गलबात करवा करदे। आवा इन्हां ते पुछदे कि ये कुत्थे दे रहने वाले हैं, कन्ने इन्हां दा क्या नां है। तुहाड़ा साडे ट्याले पर स्वागत है जी।
3: किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम गोविंद सिंह, गांव रजोल, तहसील शाहपुर।
2: जी
3: मैं काफ़ी साल पहले आर्मी से रिटायर होने के बाद खेती बाड़ी में लगा रहा।
2: अच्छा जी।
3: खेती बाड़ी के लिए सबसे पहले मैंने पालमपुर यूनिवर्सिटी कांगड़ा KVK यहाँ पर काफ़ी ट्रेनिंग की हुई है। उसके बाद मैंने तकरीबन सभी फसलें
2: जी
3: उगाई हैं, जिसमें से पीली और लाल शिमला मिर्च, मेरे पॉली हाउस थे बड़े बड़े, तकरीबन 1.5-2 कनाल का एक पॉली हाउस और एक और पॉली हाउस,
2: जी
3: जिस पे बाद में मैंने फूलों पे भी काम किया। और अभी जो है काफ़ी समय हो गया है, परंतु मेरे अभी भी पॉली हाउस 2 है।
2: अच्छा जी।
3: जिसमें एक अभी भी फंक्शनल है, जिसमें मैं अभी सब्जियां उगा रहा हूँ उसमें।
2: जी बड़ी अच्छी गल है जी। भई तो हाँ फौजा तेरे रिटायर होने के बाद भी खेती बाड़ी च रुचि दसी, कने पूरे ट्रेनिंग वगैरह तो हाँ लेइया, तो इस वेले तो हाँ दसा भी अजकल, पहले तो ये दसा भी जमीन कितनी है थोड़ी।
3: मेरी जमीन को 12 एकड़ आनी है।
2: अच्छा जी।
3: तकरीबन जमीन जो पहले नड हुआ करता था वो भी आजकल नड नहीं रहा।
2: अच्छा जी।
3: इसमें भी मैंने इस बार गेहूं बिजाई की और बहुत बढ़िया निकली।
2: अच्छा बड़ी अच्छी गल है जी।
3: और उसमें एक घास का एक तिनका नजर आ रहा, नहीं तो पहले वो घास ही भरा होता। तो अभी ऐसा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो डेमोग्राफी वो चेंज हो रही है जमीन की, तो आपको उसी हिसाब से फिर अगर फसल बीजते रहे तो घास वगैरह नहीं होगी और आपको कुछ ना कुछ देख रखे ही जाएगी।
2: जी बिल्कुल। तो अजकल तुसा कणक कुसा किस्म की कणक बाही है थी?
3: मैं कणक बाही है थी, ब्लॉक का बीज बहुत बढ़िया बीज है।
2: अच्छा जी।
3: और मैं एक और दसा तो मैं काली गेहूं भी बाही है थी।
2: अच्छा जी। अच्छा बड़ी अच्छी गल है जी। तो मतलब अलग अलग तरह का शौक जड़ा सा तैयार करने का थोड़े च है, तो इस कन्ने कन्ने अपनी खेतीबाड़ी तुसा फलदार पौधे भी लगाए हो?
3: हाँ जी, मैं सेब लाया 100 के पौधा।
2: अच्छा जी।
3: आड़ू लगाए हो, कीवी लगाई हो, लीची लगाई हो।
2: अच्छा जी।
3: ये सारे पौधे मैं लगाए हो और ठीक ठाक उत्पादन ठीक है।
2: अच्छा जी।
3: और आड़ू तो अभी मेरा 2 साल का हुआ और बहुत बढ़िया आड़ू निकले हैं उसमें।
2: अच्छा जी।
3: आड़ू की फसल अच्छी थी।
2: बिल्कुल बड़ी अच्छी गल है जी। भाई फलदार पौधे से भी तो कम कर रहे, मैं भी जानना चाहूँगा कि पॉली हाउस से तो क्या क्या लगाया इस टाइम?
3: देखिए पॉली हाउस में जो है, अगर पॉली हाउस हो तो अपने घर की सब्जी बहुत इजीली निकल जाती है।
2: अच्छा जी।
3: मैं खुद इस बार हैरान था कि जो मैंने पालक धनिया का जो बीज लगाया था, वो मैं पालक को कितनी बार काटा मुझे याद नहीं है।
2: ठीक बड़ी अच्छी गल है।
3: वो बीज इतना बढ़िया था। उसके बाद अभी तो दुनिया बहुत उन्नति कर गई है, अभी तो ऐसी मेरे को ध्यान में आ रहा है कि मिर्ची आ गई है कि जिसमें बैक्टीरिया बिल्ट आती नहीं है।
2: अच्छा जी।
3: नहीं तो हमारा दुर्भाग्य ये था कि जब भी प्लांट तैयार हो जाता था तो वो बैक्टीरिया बिल्ट से पूरे के पूरे प्लांट जो है, टमाटर हुआ, शिमला मिर्च हुई, हरी मिर्च हुई, एक तो। पर अभी तो वैज्ञानिकों ने इतनी तरक्की कर ली है कि ये जो मिर्ची है इसके लिए तो बैक्टीरिया बिल्ट मेरे का 3 किस्में पालमपुर यूनिवर्सिटी ने निकाल दी है।
2: चलो बड़ी अच्छी।
3: और मैं उनका बहुत बहुत इसके बारे में आज भी मैं अखबार में पढ़ रहा था कि 3 मार्केट में आने वाली हैं 3 वरायटी जो पालमपुर की हैं।
2: जी जी। गोविंद जी ये भी जानना चाहेंगे तुम्हारे ते भी ये जो बीज जो इनसे कुत्ते लेंगे?
3: मेरी तकरीबन कोशिश होती है पालमपुर यूनिवर्सिटी या ब्लॉक में जो आता है उसी बीज को यूज़ करता हूँ।
2: अच्छा जी।
3: या बाहर किसी से अच्छा बीज मिल जाए तो उसको भी ट्राई कर लेता हूँ, परंतु पालमपुर यूनिवर्सिटी में अगर आप उससे मिलते रहेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा जानकारियाँ देते हैं। जानकारी लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा, पालमपुर जाइए, KVK कांगड़ा जाइए
2: जी,
3: और बिना गुरु ज्ञान नहीं मिलता।
2: बिल्कुल। ये तो बड़ी अच्छी गल गलाई कि बिना गुरु ज्ञान नहीं है। तो साढ़े वैज्ञानिक दिन रात जड़े से इस कोशिश से लगे हो कि कियां अपने किसान की आर्थिकी उपर उठाया जाए, कने अच्छी से अच्छी किस्म कने अच्छी से अच्छी गुणवत्ता इन्हों की तैयार करा करते। तो जी तो सलाह दी है भी जरूर इसका इस्तेमाल साढ़े किसान भाइयों करना चाहिए। इस कने गोविंद जी अहें भी जानना चाहेंगे भी तुम ट्रेनिंग भी की इस क्षेत्र च?
3: जी जी, मैंने एग्रीकल्चर में बहुत सी ट्रेनिंग की।
2: अच्छा जी।
3: तकरीबन 2-3 दिन की जांच में की, पालमपुर यूनिवर्सिटी में की, मैं फूलों पे ट्रेनिंग की 3 दिन की पालमपुर में, और मशरूमों की ट्रेनिंग की है 10 दिन की मैंने।
2: अच्छा जी,
3: वैज्ञानिकों से जुड़ेंगे तभी आपको नॉलेज होगी, ऐसे तो बात नहीं बनेगी
2: जी। बिल्कुल, तो ये जरूर गल जी संगठा बनना चाहिए कि भाई जी वैज्ञानिकों के मिली जुली के खेतीबाड़ी कर अच्छा हाँ मुनाफा जरा ले सकते हैं जी। चलो मुर्गी पालन च भी कुछ हादसा बीमार कर दे लगा।
3: हाँ, मैंने सुना था कि कड़कनाथ जो है वो मैंने पाले हुए।
2: अच्छा जी,
3: पर कड़कनाथ में चर्बी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, काला खून काला सब कुछ है।
2: अच्छा जी,
3: और उसका जो मुर्गे का बेटा वो 900 ग्राम से 900 KG से ऊपर नहीं होता।
2: अच्छा जी,
3: और मुर्गी 500-600 ग्राम होती है, अंडा भी बहुत बढ़िया होता, कोई भी चाहे वो हार्ट का मरीज हो, सुना है मैंने, मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, इसको जो है कोई अच्छा कुदरती बात है जिसमें चर्बी होगी नहीं
2: जी,
3: और वो फ्रूट वगैरह फल जो भी है सब्जी सुब्जी वो खुद खा लेते हैं कड़कनाथ
2: जी।
3: और ये इनका जो मीट होता है तो वो हड्डी तो इतनी स्ट्रांग होती है जैसे बकरी की भी नहीं है।
2: अच्छा जी,
3: बहुत इस पर भी दुनिया ने बहुत साइज स्टडी भी की होगी, तो जो मरीजों को इसके अंडा जो अंडा तो इसका कॉस्टली बिकता है।
2: अच्छा जी, तो कितनी मुर्गियाँ पाली हैं?
3: मैं कोई 50 ही पाली हैं पहले।
2: तो इस भी तो हाँ मतलब अपना आर्थिकी इस कन्ने भी थोड़ा बहुत सुधार करते हैं, है ना जी?
3: जी जी।
2: तो इस कन्ने कन्ने हाँ जड़ा तो हाँ पोलियोस जल तो हाँ खोले, तो पोलियोस की ट्रेनिंग भी ली थी?
3: जी बिल्कुल, पोलियोस की ट्रेनिंग में पालमपुर में बहुत बार गया और बहुत बार ट्रेनिंग ली हुई।
2: अच्छा जी,
3: देखिए दुर्भाग्य ये हमारा कि जब पोलियोस बनाते हैं तो ये मार्च अप्रैल मई महीने में जब तूफान आते हैं तो वो उड़ जाते हैं।
2: अच्छा जी,
3: उसके बाद जो है इतना खर्चा करना किसान के लिए बस की बात नहीं होती।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: ठीक है। तो मैं थोड़ा ट्रेनिंग ली थी तो मैं तो उसको कर लेता हूँ थोड़ा बहुत गठजोड़ कर करके। मेरा एक पोलियोस टोटली उड़ा हुआ है, एक अभी उड़ गया था, पूरा उड़ गया था।
2: अच्छा जी,
3: पर मैंने उसको फिर और अपने पैसे लगाए क्योंकि मेरी अंदर सब्जियाँ लगी हुई हैं।
2: जी जी,
3: सब्जियाँ आप यकीन नहीं करोगे कि जो पोलियोस की सब्जी है उसका कोई जवाब नहीं।
2: कई किसान इस पर अच्छा उत्पादन लिया कर दे ना, व्यापारिक स्तर पर भी इन्हें पोलियोस रखा कर दे, तो तुसा भी बड़ी अच्छी मतलब इस विच उन्नति की। जो दसा करते थे भी इस पोलियोस बर्मी कंपोस्ट भी इस्तेमाल करते या रसायनिक खादों का इस्तेमाल?
3: मैं तकरीबन मैं कंपोस्ट बर्मी कंपोस्ट बोल लो या गोवा जो पुराना है
2: जी जी
3: उसको यूज़ करता हूँ, और मैं इसके साथ में ये जो नीम खड़ी है ना।
2: अच्छा जी,
3: ये मैंने पूरी बोरी मंगाई होती है और उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, उससे क्या होता है कि कीड़ा कम लगता है।
2: अच्छा जी,
3: और उसका स्प्रे भी करता हूँ, उसको अगर आप भिगो के रख दें तो उसका जो निकलता है उसमें
2: पानी का रस जड़ा है
3: हाँ उसको डाइल्यूट करके उसको भी स्प्रे करते हैं तो जो है वो कीड़े मकोड़े ज़्यादा नहीं आते हैं।
2: अच्छा जी,
3: हाँ तो इससे मेरे को पोलियोस में मेरे को अच्छी प्रोडक्शन लगी है। ये देसी खादें जो है ना हमारी पुरानी मिल जाए क्या बोलते हैं
2: नीम खड़ी
3: जी, तो फिर आप ये सोच लो कि बहुत बढ़िया प्रोडक्शन पोलियोस में है।
2: बिल्कुल गोविंद जी, वैसे तो नीम जड़ा साढ़े इलाके घट हुंदा है पर फिर भी कुछ लोग आज तो देखा भी जाच जड़ा हाड़ा अनुसंधान केंद्र है तिथु भी जहाँ बोलिए ना आह दरेक बोलते दरेका पर ना नीम तैयार करना शुरू करती है, तो हूँ कई किसान जड़े ना साढ़े इतू भी नीम का पौधे जड़े तैयार करा करते कर जी। तो नीम खाली दसी है तो मतलब इसके माध्यम करने से इस्तेमाल किया जा सकता है इस है ना?
3: देखिए नीम का तो कोई जवाब ही नहीं। जांच में तो आप जाइए, अगर आपने अमरूद देख लो आप उनके कितना बढ़िया लगता है यार कैसे लगाया उन्होंने
2: जी जी,
3: वो बहुत स्टडी कर रहे हैं उधर।
2: बिल्कुल,
3: जांच में मैंने 2 दिन और 3 दिन कई बार ट्रेनिंग की हुई है जांच में रहा हूँ
2: जी। बिल्कुल,
3: काफी रिसर्च भी चल रही है।
2: बिल्कुल मतलब काफी किसान जरा सा इससे फायदा लिया कर दे
3: जी जी।
2: कने तो हाँ दिखा आरड़ पेड़ा आंवला ए दी चीजा मतलब काफी अहां दिखने मिली, जामुन दे पौधे या नीम ए दिया जड़े हाड़े पुराने पौधे हैं सभी काफी तिना लगाए हुए हैं, कने काफी किसान तिना फायदा लिया करते हैं। हूँ भी दिखा तो बरसात आने वाली है तो अहां भी चाहेंगे कि साढ़े किसान भाई जड़े अच्छी जी अहां लीची तो दिखा गोविंद जी अहां एक ही तरह ही लीची जानते भी लीची का फल है, लेकिन इस भी एक अगेती लीची आँगी एक मौसमी लीची आँगी कने एक पछेती लीची आँगी, तो फिर इस भी एक होंगी बीजे बाजी वाली, तो कई तरह दिया लीचिया के पौधे जोड़े इतों तैयार किए जाते कने आने वाले टाइम में अगर लगाना चाहन तो साढ़े किसान भाई इस भी अपनी आर्थिकी जी सुदृढ़ कर सकते। अच्छा हुन अंत च अहां तुहाडे ते जानना चाहांगे गोविंद जी की बई जड़े साढ़े युवा साथी है तिन्हें तुहां क्या सलाह देना चाहांगे जियां तुहां दिखा बई फौजा की नौकरी करने के बाद बोलते कि भी क्या कि गोडे कसे होंगे तो पैसे मिलते हैं ना जी, लेकिन फिर भी तुहां खेतीबाड़ी अपनाया तो इस विच तुहां क्या सोची के अपनाया कने युवा साथियों क्या सलाह देना चाहांगे?
3: देखिए ऐसा है कि मैंने एग्रीकल्चर में तो मैं शिमला मिर्च की मेरे को काफ़ी पीली और लाल उगाई थी।
2: अच्छा जी।
3: तब लोगों को पता नहीं था ये कि शिमला मिर्च है कि स्पीड पेपर है
2: जी।
3: उसके बाद मैंने कोशिश की और मैंने हॉर्टिकल्चर विभाग ने मेरी बहुत मदद
2: जी
3: और मैं उनका बहुत बहुत आभारी रहूंगा जिन्होंने मुझे, मैंने जरवेरा फूल लगाया था
2: जी,
3: मैंने लिली फूल भी लगाया हुआ, ग्लैडियस लगाया हुआ था
2: जी।
3: देखिए ग्लैडियस लगाया हुआ था और पालमपुर से ही मेरे पास वैज्ञानिक आया और बोला यार तैयार और उसको बेच दो और मैंने बेचा। मैंने फूलों की खेती भी की और फूल मैंने दिल्ली भेजे, अमृतसर भेजे, जम्मू भेजे, शिमला भेजे
2: जी।
3: और तकरीबन तक शिमला शिमला जो भेजे तो वो फर्स्ट आते थे मेरा जो फूल थे वो
2: जी।
3: और जरवेरा तो मैंने कई साल तक जरवेरा जो है वो मैंने बेचा है, परंतु जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे, ग्रुप नहीं बनेगा
2: जी,
3: तो वहां पर लुटते रहोगे। उसका कारण ये होता है कि उनको माल चाहिए, पैसा ब्लॉक हो
2: जी जी।
3: आप संगठित हो जाओगे तभी बात बनेगी। सरकार बहुत कोशिश कर रही है, सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि आप लोग जो है वो यहाँ पर शाहपुर में खुलने वाली है, यहाँ कांगड़ा में कचहरी में भी सब्जी मंडी की ऐसी खुल जाए तो काफ़ी किसानों को फायदा होगा, अपना माल वो अपना बेच सकता है। बड़ी हैरानी की बात है कि जो बाहर से माल आ रहा है वो सारा का सारा केमिकल ट्रीटेड होता है।
2: बिल्कुल।
3: हिमाचल में थोड़ा बहुत है परंतु इतना ज़्यादा नहीं है कि वो सारा केमिकल में हो
2: जी।
3: हिमाचल का क्लाइमेट थोड़ा अभी भी ठीक है
2: जी। बिल्कुल बिल्कुल। हूँ भी गोविंद जी पंजाब दे लोग जीपा कने ना लेके साढ़े पहाड़ दा कणक कने पहाड़ दे चौल ले जा करते, कने महंगे करके अपने इलाके च बेचा करते, लेकिन हले भी अगर अहाँ किसान सारे साथ जैविक तरीके ने अपनी खेतीबाड़ी जो करन तो अहाँ कई बीमारियों अपने इलाके कने अपने आप पर बचाई सकते। लेकिन मैं एक और तुहाडे संदेश चाहूँगा कि भाई युवा साथी है तो क्या संदेश देना चाहेंगे?
3: युवा साथी अजकल पेशेंस नहीं है किसी में भी
2: जी।
3: थोड़ी देर काम किया उसके बाद फिर उसको

0: वो उसके दिमाग से वो पता नहीं क्यों उतर जाता। आप एक मछली के जो बोला ना आँख का, आपने जो करना है उसको आप लगे रहो,
1: जी
0: आपको पक्का सफलता मिलेगी। ये कहते हैं ना, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, कभी ऐसा नहीं होता है।
1: जी
0: बाहर वाले आकर के कमाई कर रहे हैं, मुझे हैरानी होती है
1: जी जी
0: कि लोगों ने लीज पे जमीन नहीं और सब्जी बेच रहे
1: बिल्कुल
0: हैं,
1: ठीक
0: ठीक है
1: बोले
0: ना। और हमारे यहाँ पर कमाना कोई नहीं चाह रहा है,
1: जी।
0: उनको चाहिए कि यार खेती बाड़ी में वो तो कुछ नहीं रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार कितना लोन तक दे रही है आपको, आपको किस क्रेडिट कार्ड से आप लोन लो सब्जियां या जो कुछ भी करो आप,
1: जी
0: तो उसका आपको ऐसा सरकार खरीद भी रही है,
1: बिल्कुल
0: परंतु करना तो आपको ही है। ऐसे अफसोस होता है कि सब आदमी जो है वो मोबाइल में लगे रहते हैं और खेती बाड़ी की ध्यान कम देते हैं।
1: बिल्कुल
0: अच्छा,
1: बिल्कुल
0: और हमें तो, मेरे ख्याल जो पुराने आदमी हैं इनको तो खेती में ही मज़ा आता है, बाकी चीज़ें तो बाद की बात है।
1: बिल्कुल सोड़ा ने गल गलाई तो हाँ कने दुआ ही कोर में बड़ी अच्छा। अगर युवा साथी हग ले हो अपनी गट्ठी बनी लैन तां भटकने की जरूरत कोई नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: अपनी खेती बाड़ी जो हरा भरा करा, जड़े भी चार पैसे आते हैं, आपू भी शुद्ध भोजन खा कने लोगों भी शुद्ध भोजन करा, है ना
0: बिल्कुल
1: जी। हाँ आशा कर दे गोविंद जी की साढ़े किसान भाई तुड़ियाँ नस्लाई तो अपनी खेती बाड़ी जो जरूर हरा भरा कर गए। तुड़ा टियाले पर आने तीन बड़ा बड़ा धन्यवाद।
2: किसान साथियों, अहाँ सुनी किसान साथियों कने कीती गलबात कने टियाले पर हुण वक्त है फिरी ते जानकारी दा कने समय हुई है सब्जी मंडी दे थोक भाव दा, तां ओ सुन दे अज के भाव क्या थे।
3: जी बिल्कुल, स्थानीय कांगड़ा सब्जी मंडी दे थोक मूल्य भाव दी गल करिए तो देखा जालू रे 8 ते 10 रुपए प्रति किलो, प्याज 18 ते 22 रुपए, टमाटर 12 ते 16 रुपए, लसन 100 ते 120 रुपए प्रति किलो, अदरक 110 ते 120 रुपए, शिमला मिर्च 15 ते 20 रुपए, अरवी 32 ते 35 रुपए, खीरा 16 ते 30 रुपए, मटर 48 ते 50 रुपए, फुलगोभी 35 ते 40 रुपए, बंद गोभी 12 ते 14 रुपए, बैंगन 20 ते 30 रुपए, कद्दू 12 ते 14 रुपए।
2: कने गल की जाए फलों की तो केला रहा 40 ते 50 रुपये किलो, सेब 120 ते 140 रुपये किलो, अनार 140 ते 150 रुपये किलो, अनानास 40 ते 50 रुपये किलो, अमरूद 90 ते 100 रुपये किलो, मौसमी 70 ते 80 रुपये किलो, पपीता रहा 35 ते 40 रुपये किलो, कने खरबूजा रहा 20 ते 30 रुपये किलो।
3: जी कने मौसम च अज जड़ा ऐसा दिन भर धूप खिली रही, कने चंबा दा ज़्यादा तापमान 37 डिग्री घट रहा 15 डिग्री, धर्मशाला ज़्यादा तापमान 30 डिग्री घट रहा 19 डिग्री, कुल्लू ज़्यादा तापमान 36 डिग्री घट रहा 14 डिग्री, और सुंदरनगर 39 डिग्री ज़्यादा घट रहा 19 डिग्री, ऊना 42 डिग्री और 20 डिग्री रहा, शिमला 29 डिग्री और 18 डिग्री रहा।
2: जी बिल्कुल, कहने इसके बाद फिर ते वक्त है यहाँ के टियाले पर एक प्यार दे लोक गीत का, तो
3: जी
2: सुन दे एक प्यार दे लोक गीत।

0: किसान साथियों, इसी लोकगीत कन्ने अहां दे जाने दा वक्त होई है। हुण जाने दे पहले तुहानू दस दईए कि कार्यक्रम दे प्रस्तुत करता थे जितेंद्र पाल सिंह, कने कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग रहा सुरेंद्र कपूर दा। तां हुण आदुनी दिया इजाजत।
1: अच्छा जी, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसानवाणी FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:42 होने को हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 7:45 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला के केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
1: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
0: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश

0: में पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न, रिकॉर्ड 78% से अधिक मतदाताओं ने डाले वोट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अधिकारियों को MIS के तहत खरीदे फलों का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से करने के निर्देश। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवास और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए गठित की उच्च स्तरीय समिति। प्रदेश सरकार ने संजय गुप्ता को मुख्य सचिव पद पर दी नियमित नियुक्ति। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, 28 मई से झमाझम बरसेंगे बादल। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण के लिए आज चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। पहले चरण के तहत आज प्रदेश की 1293 पंचायतों और जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य के लिए वोट डाले गए। पहले चरण में रिकॉर्ड 78% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पिछले पंचायती राज चुनावों में प्रदेश में 77% मतदान हुआ था। मतदान संपन्न होने के बाद पंचायत प्रधानों, उप प्रधानों व वार्ड सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती जारी है और कई स्थानों पर नतीजे भी घोषित कर दिए गए हैं। इस बीच आज पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। पहली बार मतदान करने वाले युवाओं से लेकर उम्रदराज मतदाताओं तक ने लोकतंत्र के इस महापर्व में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। बिलासपुर जिला के घुमारवीं विकास खंड की सेऊ ग्राम पंचायत के पिंक बूथ पर प्रदेश की सबसे उम्रदराज मतदाता 113 वर्षीय मंगलू देवी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसी तरह शिमला जिला की ननखड़ी तहसील की ग्राम पंचायत खमाड़ी के करोली गांव की 100 वर्षीय रामपति और हमीरपुर जिला की टिक्करी मिनहासा पंचायत के वार्ड नंबर 1 में समलोग गांव की 100 वर्षीय रेशमो देवी भी वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंची। अधिकांश मतदान केंद्रों पर गर्मी के चलते सुबह के वक्त मतदाताओं की जोरदार भीड़ उमड़ी और लोग कतारों में खड़े होकर मतदान के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। कई ग्राम पंचायतों में मतदान की समय सीमा खत्म होने के बाद भी मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखी गईं। इस बीच कुल्लू जिला में 80% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। सिरमौर जिला में 75.52%, जबकि सोलन जिला में लगभग 80.90% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ऊना जिला में 78.25% और बिलासपुर जिला में 75.61% मतदान हुआ। हमीरपुर जिला में 72.17% मतदान दर्ज किया गया। इस बीच 28 मई को होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दूसरे चरण के लिए सक्रिय चुनाव प्रचार आज दोपहर 3 बजे समाप्त हो गया। दूसरे चरण में 1274 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निर्देश दिए हैं कि मंडी मध्यस्थता योजना के तहत खरीद पर बागवानों को भुगतान के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की संभावनाएं तलाशी जाएं। मुख्यमंत्री शिमला में बागवानी विभाग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मौजूदा भुगतान प्रणाली में बागवानों को मंडी मध्यस्थता योजना के तहत की गई खरीद पर नकद राशि के स्थान पर विभाग द्वारा अन्य सामग्री प्रदान कर भुगतान किया जाता है। उन्होंने भी निर्देश दिए कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम से छोटे और सीमांत सेब उत्पादकों की आर्थिकी में सुधार होगा। भारत सरकार ने अवैध अप्रवास और अन्य असामान्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से निपटने के उपायों पर सुझाव देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को इस कार्य के लिए हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2025 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर होंगे। जनगणना आयुक्त के अलावा 3 प्रतिष्ठित विशेषज्ञ दुर्गाशंकर मिश्रा, बालाजी श्रीवास्तव और डॉक्टर शमिका रवि इस समिति के सदस्य होंगे। संयुक्त सचिव गृह को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है। ये समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के राजनीतिक सलाहकार सुनील बिट्टू ने कहा है कि हमीरपुर शहर के व्यापारियों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। सुनील बिट्टू ने आज उनसे मिलने आए हमीरपुर व्यापार मंडल के एक प्रतिनिधि मंडल को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखकर उनका समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार हमीरपुर शहर के व्यापारियों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने देगी। प्रतिनिधिमंडल ने सुनील बिट्टू को सौंपे ज्ञापन में मांग की है कि हमीरपुर बाजार में स्थित मुख्य बस अड्डे को निर्माणाधीन बस अड्डे में स्थानांतरित करते समय हमीरपुर के लोकल रूट नए बस अड्डे को स्थानांतरित न किए जाएं। व्यापारियों ने अपने अन्य मुद्दे भी सुनील बिट्टू के समक्ष रखे। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR_News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कार्यवाहक मुख्य सचिव संजय गुप्ता को इस पद पर नियमित नियुक्ति दे दी है। संजय गुप्ता को मुख्य सचिव के पद पर ये नियमित नियुक्ति उनकी सेवानिवृत्ति से 5 दिन पूर्व दी गई है। वे 31 मई को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। उनकी पदोन्नति संबंधी अधिसूचना आज कार्मिक विभाग द्वारा जारी कर दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अधिकारियों के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं और पूरी तरह कंप्रोमाइज्ड हैं। जयराम ठाकुर ने आज सरकार द्वारा वर्तमान कार्यवाहक मुख्य सचिव को स्थायी नियुक्ति दिए जाने के फैसले की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मौजूदा मुख्य सचिव की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। ऐसे में उन्हें स्थायी मुख्य सचिव बनाना सरकार की नीयत पर कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने पंचायत चुनाव के पहले चरण में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को भारी जनसमर्थन मिलने का दावा भी किया। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव इस बार नए तेवर, व्यापक स्वरूप और जन भागीदारी के बड़े विजन के साथ नजर आएगा। ग्रीष्मोत्सव कमेटी के अध्यक्ष व उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने आज एक पत्रकार वार्ता में कहा कि अब तक रिज मैदान की सांस्कृतिक संध्याओं तक सीमित रहने वाला प्रतिष्ठित उत्सव इस बार स्कूलों, खेल मैदानों, साहित्यिक मंचों और शहर के अलग अलग हिस्सों तक अपनी पहुंच बनाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव की तिथियों में इस बार बदलाव किया गया है और इसका आयोजन 8 से 12 जून तक होगा।
1: तो एक बड़े ब्रॉड लेवल पर जो हमारा पदमदीप कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर हमने ये तय किया है कि डिफरेंट कॉलेजेस, फाइन आर्ट्स कॉलेजेस, आम पब्लिक, पेंटिंग और डिफरेंट क्रिएटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेगी। उसके लिए हमने टाई अप किया है कि वहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज कराई जाए ताकि एक आम आदमी का कनेक्ट जो है वो किसी एक्टिविटी में बना रहे और रोड सेफ्टी की जो और भी जितनी भी चीजें हैं उसमें डायरेक्ट इंटरवेंशन बच्चों की बनी रहे। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है कि किस तरीके से हम एक साथ में मिला करके उनका इंटरेस्ट बना के उनको एक मैसेज भी फेस्टिवल के तरीके से दे और ताकि वो एंजॉय भी कर सके कि एक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करें।
0: प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। राज्य के ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर जिला के कई हिस्सों में आज लू जैसे हालात बने रहे। ऊना में अधिकतम तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। इसके चलते लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने कल 27 मई को राज्य के 8 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में अलग अलग स्थानों पर लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 28 मई से हिमालय क्षेत्र में ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से 28 मई को राज्य के 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में मौसम विभाग ने ओलावृष्टि, अंधड़, आसमानी बिजली गिरने और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी तूफान चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति ने वन विभाग से बांध प्रभावित क्षेत्र में निष्पक्ष तरीके से पेड़ों की गिनती करवाने की मांग की है। रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति के प्रेस सचिव योगी ठाकुर ने आज नाहन में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि यदि इस कार्य में पारदर्शिता नहीं बरती गई तो समिति मामले को न्यायालय में ले जाएगी। समिति ने चुने हुए जनप्रतिनिधियों से भी इस मुद्दे को गंभीरता से उठाने और प्रभावित लोगों की आवाज बुलंद करने की मांग की है ताकि विस्थापितों को न्याय मिल सके।
2: जब वो काउंटिंग वहाँ पे कर रहे थे, वो वहाँ पे काउंटिंग कर रहे थे जहाँ पे पेड़ कम थे। उसका मतलब ये हुआ कि वो एक रिपोर्ट बना चाहते हैं कि जिसमें कम से कम पेड़ आए। तो विस्थापित जो हमारे भाई लोग हैं वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो है जो भी कार्य हो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। उन्होंने जो उतना बड़ा पहाड़ बिना किसी परमिशन के काटा है, वहाँ जो जेसीबी में लगी है, ना तो उसके ऊपर कोई एफआईआर हुई है। और मैं जो सिरमौर के अंदर जो हमारे प्रभावशाली नेता है, मेरा इन सभी नेताओं से भी एक निवेदन है कि इसमें आप जो है थोड़ा अपना भी भागीदारी जरूर रखें ताकि विस्थापित भाइयों को जो है कम से कम उनका जो एक हक है वो मिल सके।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न। रिकॉर्ड 78% से अधिक मतदाताओं ने डाले वोट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अधिकारियों को MIS के तहत खरीदे फलों का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से करने के निर्देश। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवास और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए गठित की उच्च स्तरीय समिति। प्रदेश सरकार ने संजय गुप्ता को मुख्य सचिव पद पर दी नियमित नियुक्ति। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, 28 मई से झमाझम बरसेंगे बादल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:30 पर। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं देशगान।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हैं हम कार्यक्रम सबरस लेकर, और ये रही कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

अभी आपने सुनी जगजीत सिंह की आवाज में गाई ये गजल। अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्रों से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति गुरदास मान की आवाज में गाया ये पंजाबी गीत।

अभी आपने सुना गुरदास मान, दिलजीत दोसांझ व साथियों की आवाज़ों में गाया ये पंजाबी गीत, अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सरप्रस। इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, और ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर और साथियों की आवाज़ों में गाए ये गीत। अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सवरस से समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला के केंद्रों से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

अभी आपने सुना उदित नारायण और पूर्णिमा की आवाज़ों में गाया ये गीत, और ये रही कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

यो यो हनी सिंह व साथियों की आवाज़ों में गए इसी पंजाबी गीत के साथ हमारा आज का अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सब्र सब यहीं पर संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं देशगान।

अभी आपने सुना महेंद्र कपूर, मनहर उदास व हेमलता की आवाज़ों में गाया ये देशभक्ति गीत। देशभक्ति गीत इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से। ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति महेंद्र कपूर व साथियों की आवाज़ों में।

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब पहले समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई U23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
3: मैं आज देश के सामने एक चिंता चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
2: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
4: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
5: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
6: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
7: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ
8: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
7: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्रों में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बतूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को राईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

जी हाँ श्रोताओं, इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं गायिका ममता शर्मा द्वारा गाए कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत, और ये कार्यक्रम आप एंजॉय कर रहे हैं वर्षा टोश के साथ। श्रोताओं, ममता शर्मा द्वारा गाया हाउसफुल टू, जो कि मलाइका अरोड़ा का ये आइटम सॉन्ग ममता शर्मा के सबसे प्रसिद्ध

0: इस समय श्रोता सुन रहे हैं गायिका ममता शर्मा द्वारा गाए कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत।
1: Ready? One, two, one, two.

इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम धाम गीतांदी। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हम हाजिर हो गए हैं लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम धाम गीतांदी लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ, जिसे गाया है मंजू चेष्टी व साथियों ने।

अभी आपने सुना मंजू चिश्ती व सखियों की आवाज़ों में गाया ये लोकगीत। लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम धाम गीतांदे इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं पिंको देवी की आवाज़ में कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

अभी आपने सुना पिंकू देवी की आवाज में गाया ये लोकगीत। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं ज्वाला प्रसाद की आवाज में गाया कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम धाम गीतां दे इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब हम आपको सुनवा रहे हैं ओम प्रकाश व साथियों की आवाजों में गाया कार्यक्रम का ये अगला लोक भजन।

अभी आपने सुना ओम प्रकाश व साथियों की आवाज़ों में गाया ये पहाड़ी भजन लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम धाम गीतां दी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति सुरेश चौहान की आवाज़ में।

अभी आपने सुना सुरेश चौहान व साथियों की आवाजों में गाया ये लोकगीत। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति शकुंतला व साथियों की आवाजों में।

अभी आपने सुना शकुंतला देवी व सखियों की आवाजों में गाया ये लोकगीत। लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम धाम गीता दी इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति बलवीर सिंह की आवाज में।

अभी आपने सुना बलवीर सिंह की आवाज़ में गाया ये लोकगीत। अब हम आपको सुनवा रहे हैं तरसेम पाल शर्मा की आवाज़ में कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

अभी आपने सुना तरसेम पाल की आवाज में गाया ये लोकगीत। लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम धाम गीतां दी इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति कृष्ण लाल शर्मा की आवाज में।

अभी आपने सुना रवि रघुवंशी की आवाज में गाया कार्यक्रम का ये लोकगीत। लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम धाम गीतांदी इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब हम आपको सुनवा रहे हैं रोशनी देवी की आवाज में गाया कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

अभी आपने सुना गंभरी देवी की आवाज में गाया ये लोकगीत। लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम धाम गीता दी इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति श्याम मान्याल की आवाज में।

श्यामा ने हल्की आवाज में गाए इसी लोकगीत के साथ हमारा आज का लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम धाम गीता दी अब यहीं पर संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम धाम गीतांदी FM बैंड 103.4 MHz पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

0: कभी तो हंसाए
1: कभी ये रुलाए। अभी आपने सुना आनंद फिल्म का यह गीत जिसे गाया था मन्ना डे ने। शब्द रचना योगेश की थी और संगीत दिया था सलील चौधरी ने। कार्यक्रम चित्रपट संगीत इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और अगली प्रस्तुति आपकी कसम फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में।

अभी आपने सुना आपकी कसम फिल्म का यह गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, संगीत दिया था आरडी वर्मन ने। कार्यक्रम चित्रपट संगीत इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला के इंद्र से, और इसमें आप सुना करते हैं पुरानी फिल्मों से कुछ गीत। अब हम आपको सुनवा रहे हैं मासूम फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, संगीत निर्देशन आरडी वर्मन का।

अभी आपने सुना ये गीत जिसे हमने लिया था मासूम फिल्म से। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं अनु मलिक के संगीत निर्देशन में मर्डर फिल्म का ये गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में।

अभी आपने सुना मर्डर फिल्म से यह गीत, जिसे गाया था अनुराधा पौडवाल ने। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं अपना देश फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज़ों में।

0: ममता फिल्म के इसी गीत के साथ हमारा आज का चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रपट संगीत, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजने को है और पहले हिंदी में समाचार और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये बात कही।
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। NIA के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के CCTV फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटीश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Nilokar. Census Commissioner, along with the former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1, in the Home Ministry will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty, but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. Union Home Minister Amit Shah today said that the government is in a process of installing anti-drone system within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sanshu border outpost in Rajasthan's Bikaner district, the Home Minister said, while threats originating across the border remains crucial, equal attention must be paid to internal elements aiding such threats within the country.
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार
4: द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू रोल आउट एंटी ड्रोन सिस्टम फॉर ड्रोन्स एंड सिमिलर एरियल थ्रेट विद इन द नेक्स्ट 6 months. However, since these drones eventually land on Indian territories, we must remain highly vigilant about those who may use the materials carried by them for anti-national activities. Effective neutralization will require strong coordination with civil authorities and district police, along with prompt and result-oriented action at every level.
2: परिणामलक्षी कार्यवाही ही भी हमने करनी पड़ेगी।
3: Mr. Shah said strict legal action should be taken against those involved. He stressed that since the drones land in the Indian territory, close coordination with the local police and civil administration is essential to identify those receiving such consignments and to neutralize the threats effectively. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chaired the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and U.S. Secretary of the State Marco Rubio attended the meeting. Addressing a joint press conference after the meeting, Dr. S. Jaishankar emphasized on further strengthening cooperation among the Quad nations in addition to assisting others. He said that the Quad nations are open societies who foster innovation and creativity in the quest of growth for prosperity. He also laid emphasis on zero tolerance for terrorism. Foreign Affairs Minister of Australia Penny Wong today called on Prime Minister Modi in New Delhi. In a social media post, Mr. Modi discussed the growing India-Australia comprehensive strategic partnership in areas such as defence, trade, technology and ensuring supply chain resilience. The Prime Minister said India and Australia will work together to continue for the work for free, open, secure and prosperous Indo-Pacific. The Ministry of Railway has given its nod to start operations of the country's first hydrogen-powered 10-coach demo train. It will run at a maximum speed of 75 km per hour between Jind and Sonipat under the Northern Railway Zone. The train will use hydrogen fuel cells to generate power instead of diesel or electricity-based traction. The government has revised the minimum assured procurement price, MAPP, of onion stocks from 1,270 rupees to 1,580 rupees per quintal. In IPL cricket, Royal Challengers Bangalore have set a target of 255 runs against Gujarat Titans in qualifier 1 in Dharamshala. In reply, Gujarat Titans were 106 for 8 in 12.4 overs when reports last came in. And Gujarat Titans won the toss and elected to bat. And that's the end of the news bulletin.
0: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारा ये प्रसारण यहीं पर संपन्न होता है। अपने कल प्रातः के प्रसारण के कार्यक्रमों के साथ कल प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।

यहीं पर संपन्न होता है अपने कल प्रातः के प्रसारण के कार्यक्रमों के साथ। कल प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।